0: उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी
1: हेलो हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ,
0: फिर क्या बोली? बोली मेरे घर में पार्टी है, आओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवाय कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था, वो थी, मैं

0: Radio Musty.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: एक बात बताऊं दोस्त?
1: बता बता जल्दी बता।
0: एक बार वो मुझे मिलने आई।
1: अच्छा?
0: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: ही एक दिन उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी
1: हेलो हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ,
0: फिर क्या बोली? बोली मेरे घर में पार्टी है, आओ। हाँ? जब मैं वहाँ पहुँचा हाँ? तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था, वो थी,
1: मतलब
0: मैं था,
1: तन्हाई थी।

0: RM2 Radio Musti. Feel the musti.
1: पास रहते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: लवली गुड मॉर्निंग टू लव यू. घर ही मिलाते चलिए. सुबह की ठीक 5 बजे है. इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन.
0: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन.
1: आरएम2
0: रेडियो मस्ती.

0: 9. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सावन का तो पता नहीं, लेकिन विंटर सीजन जरूर आया है और आई गेस विंटर सीजन आया है बस थोड़ा और देर टिकने के लिए. एंड इट्स अमेजिंग नोइंग दैट विंटर सीजन है, इट्स चिल्ड आउटसाइड. लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह सवेरे उठकर काम पर जाने के लिए. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वी लव विंटर सीजन, और कुछ लोगों को बस यही डर है कि ये समर सीजन जल्दी ना आ जाए. चलिए देखते हैं, अभी क्लाइमेट चेंज का ज़माना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की तरह हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारा नाम तो ना ही मौसम है और नेचर भी बिल्कुल वैसा नहीं है. सुबह के 5:06 हो चुके हैं. इट्स अ वंडरफुल सैटरडे मॉर्निंग और अलार्म बनकर आपको हम मीठी नींद से उठाने आए हैं. एंड बहुत ही प्यार से दिव्या का साथ है अभी से लेकर सुबह के 7 तक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. एंड वंस अगेन आप सभी को हम विश कर रहे हैं लवली गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन. सुप्रभात. एंड आई जस्ट होप कि ये सुबह आप लोगों के लिए सुरीली हो, सुहानी हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो. एंड कभी ऐसा होता है ना कि सोने से पहले हम बहुत कुछ अपने दिमाग में लेकर सो जाते हैं कि कल उठना है, ये करना है, वो करना है. और काफ़ी रीजन्स में आज तो बाज़ार भी है और सुबह सवेरे जितने भी सारे लोग वेजिटेबल्स सेल करते हैं, आप लोग शायद उठ गए होंगे. तो आपको बों को आज टू ऑल दोज जिनका शॉप भी है, शायद आप इस वक्त शॉप खोल रहे हैं ब्रेड बेचने के लिए. एंड बस आप ये दिमाग में बिठा कर रख दीजिए कि मेहनत का फल सच में बहुत बहुत ही मीठा होता है. आगे चलकर इसका जो रिज़ल्ट है आपको ज़रूर मिलने वाला है. वेल वी आर हियर फॉर यू, ताकि आप बिल्कुल अकेले फील ना करें. सुबह सवेरे अगर आप लोग उठ चुके हैं तो हम भी उठ चुके हैं आप लोगों का साथ देने के लिए. तो चलिए आपके मैसेजेस का भी हम इंतज़ार करेंगे ऑन 5499 1294. डोंट फॉरगेट इट्स योर राइज एंड शाइन, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 7 AM.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: से हमने भी अपने आप में कसम खाई है कि विल मेक श्योर कि आपका ये मॉर्निंग हमेशा हमेशा एंटरटेनिंग रहे. एंड सुबह की 5:21 हो चुके हैं. जितने भी सारे लोगों का आज बिल्कुल काम नहीं है और आप सोच रहे थे कि आज देर से सोना होगा, लेकिन फिर भी आप सुबह उठ जाते हैं हमारा साथ देने के लिए, या फिर आपको आदत हो गई है, आप जॉगिंग जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर सुबह से वेरी आपको किचन में एंटर करना पड़ता है क्योंकि दिन के दौरान आपको टाइम नहीं मिलता है. तो आपके बारे में वी हैव अ स्पेशल थॉट. बिल्कुल हम यहाँ पर साथ देने के लिए आ चुके हैं. कभी ऐसा होता है ना कि आप सुबह सवेरे कभी कभी उठ जाते हैं खुद के लिए, टाइम निकालने के लिए, क्योंकि दिन भर को आपको टाइम नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है. तो चलिए, आई जस्ट होप कि आप इस गुड म्यूज़िक का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, पूरा फ़ायदा उठाएंगे. एंड सुबह सवेरे गुड म्यूज़िक का साथ देकर यू विल फील एनर्जाइज्ड. और आई जस्ट होप कि ये जो हमारी म्यूज़िक है ना, आपके लिए बूस्टर बनकर आपके एनर्जी को बूस्टअप ज़रूर करेगा. एंड वी जस्ट होप कि ये सैटरडे मॉर्निंग आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही खास रहे. चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर जो आपने हमें बहुत ही प्यार से भेजे हैं. गुड मॉर्निंग जी, आज है 4th July और ऐसे में आपने हमें एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है. सैटरडे इज ऑफ फॉर स्लोइंग डाउन, अप्रिशिएटिंग द लिटिल थिंग्स एंड गेटिंग रेडी फॉर अ ब्यूटिफुल वीकेंड अहेड. ये आपने बिल्कुल सही कहा है. एंड साथ में आप डेडिकेट करना चाहते हैं द नेक्स्ट वन टू एवरीवन वर्किंग एट द हॉस्पिटल. एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर जयशन, तेम्बा, जीबन, ओमिरन, अंगोतिया, आकाश, शर्वन, रामदेव, ओमेविन एंड रेडियो मस्ती टीम के लिए. थैंक यू सो मच जयशन जी. एंड यहाँ पर आप कहते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग, आज मेरे पोते कृष्णव प्रयाग का बर्थडे है. ये तो हमने कल पढ़ लिया था और थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कि बर्थडे कब है, कल था, आज है, लेकिन कोई बात नहीं. वंस अगेन उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मामू अवीश. ममा है अवीशा, अविनाश, आदुकरण, नानी लीना एंड दौलत फैमिली ऑफ प्रेंदे बापाई. और साथ में यहाँ पर आप कहते हैं नमस्ते टू ऑल द रेडियो मस्ती टीम, दिस इज़ माई फेवरेट सहारा टू वेक अप एंड द नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट फॉर पति लाल देव, बेटा विकी, बहु कीर्ति, अवनी एंड क्यूट वंश फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा. थैंक यू सो मच सुया जी, हमेशा हमारा साथ देने के लिए. नमस्ते माई स्वीट दिव्या, लॉन्गिंग टू हियर यू फ्रॉम साधना मुकेश, हैविंग गर्मा गर्म कॉफी फ्रॉम लाल माची. साधना जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. इट मीन्स लॉट कि आप लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारी प्यारी सी साधना जी और मुकेश साहब. चलिए अपनी इस गर्मा गर्म चाय या फिर कॉफ़ी की चुस्कियों को आप एंजॉय करते रहिएगा और हमारी गुड म्यूज़िक का भी पूरा पूरा फ़ायदा उठाते चलिए.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: आप लोग भी इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं कि बस आपके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और इस तरीके से सोचते हैं कि हमेशा नजराने के तौर पर गाने ही पेश करते हैं आप लोगों के लिए। आई जस्ट होप कि सुबह का ये अर्ली मॉर्निंग गिफ्ट आपको पसंद आ रहा है एंड गिफ्ट के तौर पर कुछ गुड म्यूज़िक आपको दे रहे हैं ताकि दिन भर आपका ये सैटरडे मॉर्निंग बहुत ही अच्छे से स्पेंड आप कर पाएँ। एंड चलिए कुछ ही देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके डेली हॉरोस्कोप। फिलहाल के लिए ये अगला गाना गोज़ आउट टू ईच एंड एवरीवन कनेक्टेड विद रेडियो मस्तिया द मोमेंट।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए अभी के लिए हम बढ़ेंगे आपके डेली हॉरोस्कोप की ओर। शुरुआत करेंगे एज यूजुअल एरीज के साथ। मेष राशि, फंसी हुई कोई पेमेंट मिल सकती है, किसी भी गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी लेना मुसीबत में डाल देगा और कारोबार में कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे और वर्तमान मौसम और पोल्यूशन से अपना बचाव रखें। टॉरस वृषभ राशि, लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से आज राहत मिलेगी। घर परिवर्तन को लेकर चल रही गतिविधियों में कुछ रुकावट आएंगी। प्रॉपर्टी के व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील होना संभव है और जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव रह सकते हैं। कुछ समय किसी शांत स्थल पर जरूर व्यतीत करें। जेमिनी मिथुन राशि, अपने सपने और कल्पनाएं साकार करने का उत्तम समय है। भाई बहनों से अपने रिश्तों को मजबूत अधिक संभाल कर रखें। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को किसी के समक्ष जाहिर ना करें और पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी। और विपरीत परिस्थितियों में अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। कैंसर कर्क राशि, कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में आज कुछ सुधार आएगा। परिवार में खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी। परिजनों के सहयोग, घर में अच्छी व्यवस्था रहेगी और अपने खान पान संबंधी आदतों में सुधार लाएं। लियो सिंह राशि, कुछ चुनौतियां रहेंगी परंतु साथ ही हल भी मिलेंगे। विद्यार्थी मौज मस्ती में आकर अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। कारोबार में कुछ नई उपलब्धियां और ऑर्डर हासिल होंगे। परिजनों की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी और व्यक्तिगत कारणों की वजह से तनाव हावी हो सकता है। वर्गो कन्या राशि, पुराने मतभेदों तथा समस्याओं का निवारण होगा। निवेश करने से पहले उचित जानकारी अवश्य हासिल करें। कारोबार में जो स्टाफ की वजह से कुछ समस्याएं चल रही हैं, आज वो जाकर थोड़ा क्लियर हो सकता है। प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर रखें और शारीरिक मानसिक थकान हावी रहेंगी और जितना हो सके आप खुद के लिए थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालें और मी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिब्रा तुला राशि, प्रभावशाली लोगों से मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। कारोबार में परिवर्तन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कोई रुका हुआ मामला हल करने का उचित समय है। अकारण ही किसी के साथ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेन देन पक्के डील से ही करें वरना पैसा फंस सकता है। विवाहेतर प्रेम संबंध बदनामी का कारण बनेंगे। आपसे सलाह दी जा रही है कि आप थोड़ा बचकर रहें और अपच और गैस की समस्या बढ़ेगी, सो जितना हो सके खान पान का भी ध्यान रखें। सजिटेरियस धनुराशि, आर्थिक मामलों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। क्रोध और आवेश में कोई बनता काम अटक सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा और घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। खान पान में लापरवाही आपको बरतनी चाहिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, दूसरों के समस्याओं को सुलझाने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। किसी भी असमंजस की स्थिति में घर को भारीपन महसूस करा सकता है और जितना हो सके किसी अनुभवी

0: का की सलाह जरूर लें और वर्किंग महिलाएं अपने काम में कामयाब रहेंगी, पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा और सिर दर्द और पेट खराब होने जैसी समस्या होगी। और आपको भी सलाह दी जा रही है कि आप खान पान का पूरा पूरा ध्यान रहे। अक्वेरियस कुंभ राशि, हर काम को बहुत अधिक सोच विचार कर करना आपको सफलता देगा। बेवजह के तर्क वितर्क से दूर रहें। कामकाज को लेकर कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। पारिवारिक में कोई शुभ कार्य होने की संभावना है। आखिर में वी हैव पाइसेस, मीन राशि, किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में उनका सहयोग करें। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने की संभावना है और किसी मित्र द्वारा कोई सरप्राइज मिल सकता है और पुरानी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी दोबारा उठ सकती है। सो लापरवाही बिल्कुल ना करें और जितना हो सके आप खान पान पर ध्यान दें। सो ये था आपका डेली होरोस्कोप। हैव अ गुड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: Well friends, it's 5:52 already and चलिए इसी गाने के बाद हम बढ़ने जा रहे हैं 6 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। जुड़े रहिए हमारे साथ, it's your rise and shine, जहां पर दिव्या का साथ है till 8 AM. Once again, आप सभी को हम विश कर रही हैं लवली लवली गुड मॉर्निंग।

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: घर मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज टीना से। नमस्कार आपको।
6: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। जरूरी चीजों पर नई छूट लागू होने के बाद 3 दिन बाद, जो कि बजट 2026-2027 की परचेसिंग पावर शील के तहत दी गई है, इसके शुरुआती असर दिखने लगे हैं। डिब्बाबंद मछली यानी कान चूना, कोन बीफ, कोन मटन, लचन मीट, अनाज, स्पैगेटी, सैनिटरी पैड और बच्चों के सामान जैसी चीजें इस छूट में शामिल है। और सुपरमार्केट में सामान्य से अधिक भीड़ देखी जा रही है, खासकर डिब्बाबंद चुना मछली के सेक्शन में, जो नई सब्सिडी उपाय

0: से प्रभावित है। मंत्रिमंडल ने नोट किया कि प्रधानमंत्री ने सेशल्स की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान मॉरिशस और सेशल्स के बीच मौसम परिवर्तन, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दोनों देशों में हाई कमीशन खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। साधारण वीडियो अब बड़ी कमाई का जरिया बन सकती है। सोशल मीडिया आज कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक असली आय यानी इनकम का स्रोत बन चुका है। इस तेजी से बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए सरकार इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नई टैक्स संबंधी व्यवस्थाएं लागू कर रही है। और विदेश में दुनिया भर में ड्रग्स तस्करी पर बढ़ती सख्ती के बीच माफिया ने नया रास्ता तलाश किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य क्रू सदस्यों को अपने नेटवर्क में फंसाकर उन्हें तस्करी के लिए कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और अंत में मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: हमारे इलाके पर हल्की एवं अस्थिर हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और रात्रि के समय भी आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के बड़े समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। सूर्योदय आज 6:46 पर और सूर्यास्त शाम के 5:42 पर।
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
3: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: भाई देखिए, जिंदगी थोड़ी ना आपसे आकर ये कहने वाली है कि देखो तुम अपनी ज़िंदगी जी भर के जियो एंड टुमारो इज़ नेवर प्रॉमिस्ड, इसीलिए अपनों को स्पेशल फील कराओ एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि जो है आज है और इसी में जीना सीख लीजिए। कभी ऐसा होता है ना कि हम फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं और 6 महीने की प्लान्स हम बना लेते हैं, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारा आज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट्स योर प्रेजेंट मोमेंट, इसीलिए तो इसका नाम प्रेजेंट दिया गया है, क्योंकि आपका प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए एक गिफ्ट है। तो ये गिफ्ट आपको मुबारक हो। लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, इसको सेलिब्रेट कीजिए और इस तरीके से इसको खुलकर बाहें पसारे जिए कि जी बस लोग कहे कि वाह क्या जिंदगी जी रहा है। 6:08 हो चुके हैं। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ लवली लवली गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। दिव्या का साथ है भी से लेकर सुबह के 8 बजे तक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। चलिए कुछ आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुंच रहे हैं, एक बार फिर से बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर। यहाँ पर अगला गाना खास तौर से आपके नाम, आपने हमें हैप्पी सैटरडे विश किया है और गुड मॉर्निंग भी आपको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आप कहती हैं वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या जी। अगला गाना गोज आउट फॉर धनेश्वर साहब, पत्नी सुनीता के लिए, रेखा, संजीव, निशा फ्रॉम देवदास फैमिली, थैंक यू आपको एंड आपको भी बों कुआज आज के दिन के लिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैटरडे, रेडियो मस्ती, बेस्ट मेमोरीज विद ब्यूटिफुल सॉन्ग तेरे मेरे सपने। एंड चलिए ये गाना गोज आउट स्पेशली फॉर सरोज, राजन, मोनिका, पूनम, श्रेया, उमेश ऑफ काट्रबोन एंड थैंक यू। एंड आप हॉरोस्कोप का इंतजार कर रहे थे, हमने तो कर लिया एंड आई जस्ट होप कि आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा। गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर ऑल द सॉन्ग्स टू RM2 टीम। हेमलता भजन आप हैं पोएटो पीमा से, विशिंग ऑल ऑफ अस अ वंडरफुल डे अहेड एंड एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू सो मच हिमलता जी, इट मीन्स अ लॉट। एंड यहाँ पर अगला गाना गोज आउट स्पेशली आपके नाम, कहती हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर बहन कामिनी जो रहती हैं सेवास्तोपोल। आज उनका स्पेशल डे है, यानी कि आज उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, लोड्स ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम रेश, मानवी, राज, बॉबी, किशन, सचिन, लवीश, ओजस्वी, रति, दीप की तरफ से बहन कामिनी को विश किया जा रहा है अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। एंड चलिए यहाँ पर छोगालाल फैमिली कनेक्टेड है फ्रॉम गुडलैंड्स और साथ में आप कहती हैं हाई दिव्या, गुड मॉर्निंग, प्रेमिला जी आप हैं प्रेंदी पापाई से, थैंक यू फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शन। नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर हबीब रंजीत, चाची पिंकी और पिचे काफ़े एंड आपको भी हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। किसी ने हमें मैसेज भेजा सागर किनारे, वाह लगता है कि आपने इस गाने को बहुत बहुत ही एंजॉय किया होगा। कुबलाल फैमिली और भैया जहाँ पर कनेक्टेड हैं हमारे साथ और साथ में यहाँ पर वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी और आप है कौन,

0: कविता जी, थैंक यू सो मच आपके इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विश के लिए। एंड चलिए एक बार फिर से उन हमारे तमाम लिसनर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। एंड धीरे धीरे ऐसे ही प्यार को बढ़ाना है और ऐसे ही धीरे धीरे जिंदगी को जीना है और धीरे धीरे जिंदगी से प्यार करना है।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: भाई सही बात है, जिंदगी के इस दो पल में क्या किसी से गिले शिकवे करना वो छड्डो जी, अगर किसी से टकरार भी हो गई है ना बस जाने दो। कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को माफ करने में इतना कतरा जाते हैं कि वी टेंड टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो, और जब हम लेट गो नहीं करते हैं तो कभी कभी हमें ज़्यादा दर्द होता है। सो यू हैव टू लेट गो ताकि आप इससे छुटकारा पा सके, ताकि आप अपने आप में ही फ्री महसूस कर सकते। और वैसे फ्रीडम रियली नीड्स टू लुक लाइक दिस, जहाँ पर किसी का ओपिनियन, किसी का वैलिडेशन डजंट रियली मैटर। और अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो खुद के लिए ही करके दिखाइए, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि आप चाहे किसी भी मकाम पर क्यों ना पहुँच जाए, बस आपको दाद देने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट एंड डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। जिंदगी में आप खुद की बेस्ट फ्रेंड बनिए और ट्राई टू एनकरेज योरसेल्फ। मोटिवेशन कभी कभी दूसरों से नहीं मिलता है, अपने आप से ही मिलता है। एंड जस्ट ट्राई टू सी योरसेल्फ इन द मिरर, अपने आप को आईने में देखिए और अफर्म कीजिए कि आप ज़रूर ये कर सकते हैं। चलिए, ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो हाँ बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आपके कुछ और मैसेजेस की ओर। हाय नमस्ते, आज कामिनी शंभू का बर्थडे है, सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स, एंड वो रहती हैं अमोही। बेस्ट विशेज फ्रॉम दीदी रूमा, विद्या, विक्रम, वशिष, सभी मोदो फैमिली ऑफ पॉइंटलास्को की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार। नमस्ते डियर दिव्या, प्लीज़ प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर माई लवली डॉटर निष्ठा। आज सेलिब्रेट कर रही है अपना बर्थडे, 30 ईयर्स ऑलरेडी। बेस्ट विशेज फ्रॉम पापा निर्मल, मामा है माया, चुकालाल फैमिली ऑफ मेलविल गांव की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार। हाय दिव्या जी, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट विशेज टू भाई महेन, जिन्होंने हमें याद किया है फ्रॉम पालमा। एंड एज यूजुअल हैव अ वंडरफुल डे एंड एंजॉय। आप कहते हैं कि बाय द वे गाने सुपर चल रहे हैं, सो नाइस, थैंक यू सो मच महीन जी फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शन, इट मीन्स अ लॉट। जब आपके मैसेजेस आते हैं तो हमें बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर आप कहती हैं, गुड मॉर्निंग डियर संध्या, हियर फ्रॉम लॉन्ग माउंटेन, वर्किंग नाइट शिफ्ट एट नोथोदाम इन चिल्ड्रन फाउंडेशन RCI विद माई फ्रेंड शर्मिला, एंड वॉन्ट टू डेडिकेट अ ब्यूटिफुल गाना For all friends working here and to all friends जो इस वक्त रेडियो सुन रही है, it means a lot। And चलिए ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए। And यहाँ पर आप कहती हैं, good morning Divya, Priya here from Mont-Saint-André, already आप उठ चुकी हैं and still in bed enjoying the song selection, thank you so much Priya हमारा साथ देने के लिए। Next गाना जाएगा for हबी ईश्वर, आपको भी हम कहेंगे have a nice day ahead, और ऐसे ही हमारा साथ आप लोग देते रहिए। And चलिए, we will definitely proceed with the next गाना, और ये अगला गाना हमें लेकर जाएगा 6:30 के समाचार बुलेटिन की ओर। वक्त ने जरूर इजाजत दी तो एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे, या तो 7 बजे से पहले या 7 बजे के बाद एक बार फिर से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक वंडरफुल सा शो, जहां पर हमारा और आपका साथ रहने वाला है टिल 8 AM। सो स्टे वाइट कनेक्टेड।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

सुबह के 6:30 बजे हैं। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। बजट 2026-2027 के परचेसिंग पावर शेल के तहत सब्सिडी लागू होने के बाद सुपरमार्केट में खरीदारी बढ़ी है। कुछ जरूरी सामान सस्ते हुए हैं, लेकिन अन्य उत्पादों के दाम बढ़ने से कुल असर मिला जुला है। सोशल मीडिया से कमाई बढ़ने पर सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था पर नया टैक्स लागू करने की तैयारी कर रही है। फाइनेंस बिल को फाइनलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी, जिसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी। विदेश में ड्रग्स तस्करी गिरोह अब एयरलाइन क्रू मेंबर्स को निशाना बना रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें फंसाकर कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

और अब समाचार विस्तार से। जरूरी चीजों पर नई छूट लागू होने के तीन दिन बाद जो कि बजट 2026-2027 की परचेसिंग पावर शेल के तहत दी गई है, इसके शुरुआती असर दिखने लगे हैं। डिब्बाबंद मछली यानी कान चूना को

0: की जा रही है, खासकर डिब्बा बनर चुना मछली के सेक्शन में, जो नई सब्सिडी उपाय से प्रभावित है। ग्राहक अब पहले की तुलना में अधिक मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। जहां पहले एक यूनिट ली जाती थी, अब दो ली जा रही है। हालांकि असर मिला जुला है, कुछ उत्पाद सस्ते हुए हैं, लेकिन जो सब्सिडी में शामिल नहीं है उनके दाम बढ़ने से कुल मिलाकर कीमतों में बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। इसी बीच खरीदारी में जो बढ़ोतरी देखी जा रही है वो अस्थायी भी हो सकती है या आगे चलकर स्थिर भी हो सकती है। सुपरमार्केट में चंद ग्राहकों की प्रतिक्रिया सुनते हैं।
1: C'est une demande première qui me félicite sa gouvernement. Pour pas demander son pareil, surtout quand nous connaissons une devise une très dépréciée vis-à-vis de foreign currency. Et qui se continue pareil et pas les détracter pour certaines personnes.
2: Pour moi, franchement, il y a une banque qui est 1014 roupies par tout le monde qui sert à une banque.
3: Un prix l'an prochain. Et les variés de supermarché à supermarché. Donc, elle a encore beaucoup à faire.
4: Du 1917 roupies. Dire nous quoi nous pouvons vivre nous-mêmes. Qui dit BBC et du BBC pour ici pour y commander de l'autre côté. Maurice, on n'est pas mangé au bâton, boîte sordide. Nous comptons un bout de la viande, poule, nous faisons l'effort aussi. Mais ça ne fait pas autrement qu'il se.
0: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामग्राम कल शाम अपने चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद थे, जहां उन्होंने ट्रियोली स्थित रविंद्रनाथ गाबागन स्टेडियम के पुनः उद्घाटन का आधिकारिक शुभारंभ किया। स्टेडियम के दोबारा खुलने के अवसर पर एक गाला मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन समारोह के दौरान सबसे अधिक ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर गया जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा है। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लंबे समय तक मॉरिशस में लागू रही पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी। इस बार उन्होंने 2015 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि यही व्यवस्था जारी रहती तो 2050 तक पेंशन पर होने वाला खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 8% हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार IMF का ये अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि मॉरिशस में पेंशन पर होने वाला खर्च आज ही GDP के 8% के आंकड़े को पार कर चुका है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
5: Vous savez, moi, quand vous amenez un dictionnaire, moi, qui veut dire insoutenable. Vous connaissez qui a IMF dire en 2015, il y a ça, hein, il dit qu'en 2050, si continue comme ça, nous vous payez 8% du PIB, juste nos pensions. Il dit en 2050, vous faites ce que vous connaissez, en 2025, l'infini dépasse 8%, mais 8,1%. Mais qui m'a payé ça? Vous connaissez en 2010, pension, tu peux coûter nous 5,97 milliards. Aujourd'hui, vous connaissez combien? 55 milliards roupies. Et projection, si en 2035, nous n'avons pas fait un an, il peut coûter nous 100 milliards.
0: प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण आयात पर पड़ रहे असर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के चलते आयातित वस्तुएं महंगी हो गई है। उनके अनुसार स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन SCC जो पेट्रोल, रसोई गैस, चावल और आटे का आयात करती है, इस युद्ध के कारण 3.2 बिलियन रुपये के कर्ज में पहुंच गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन परिस्थितियों ने मॉरिशस की आर्थिक स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार देश में बदलाव लाने और मॉरिशस को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वैसे मंत्रिपरिषद ने नोट किया कि प्रधानमंत्री ने सेशल्स की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान मॉरिशस और सेशल्स के बीच मौसम परिवर्तन, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दोनों देशों में हाई कमीशन न खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अजीत डोवल से मुलाकात की। उन्होंने भारत की तरफ से विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, डिजिटल सरकारी सेवाएं, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह विकास और हिंद महासागर इलाके में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। मंत्रिपरिषद ने नोट किया कि फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी। मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी कि गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए एक अलग संस्थान बनाया जाएगा। ये संस्थान रहने की सुविधा और शिक्षा दोनों देगा और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करेगा। और मंत्रिपरिषद ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के गठन का

0: भी जायजा लिया। इस आयोग की चेयरपर्सन विनोद बुलेल होंगी और वाइस चेयरपर्सन अफुन च्वी यू चोंग होंगी। यह आयोग विशेषज्ञों के तहत संविधान में संभावित सुधारों और बदलावों का अध्ययन करेगा। साधारण वीडियो अब बड़ी कमाई का जरिया बन सकती है। सोशल मीडिया आज कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक असली आय यानी इनकम का स्रोत बन चुका है। इस तेजी से बढ़ती ट्रेंड को देखते हुए सरकार इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नई टैक्स संबंधी व्यवस्थाएं लागू कर रही है।
1: डांस, खाना पकाना, फैशन या हास्य, सोशल मीडिया आज कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक वास्तविक मंच बन चुका है। कुछ लोगों के लिए ये आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने जुनून को दुनिया के साथ साझा करने का माध्यम है, वहीं दूसरों के लिए ये एक नए पेशेवर अवसर का रास्ता खोलता है। वंदना किनू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में टिकटॉक ने उन्हें तनाव से उबरने और अपना आत्मविश्वास वापस पाने में मदद की। आज यही जुनून उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने तक ले आया है। एक और उदाहरण है स्वीट एंड सॉल्टी डिलाइट्स का। टिकटॉक की बदौलत इस व्यवसाय को अच्छी पहचान मिली। प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए वीडियो ने इसके उत्पादों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, नए ग्राहक दिलाए और कारोबार का विस्तार करने में मदद की। आज ये कंपनी कई लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS से जुड़ी नई बजटीय व्यवस्था को लेकर इसके संचालक के मन में कई सवाल हैं। ये कर कैसे लागू किया जाएगा, इसके लिए कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट जवाब उपलब्ध नहीं हैं।
2: Je vois qu'il y a beaucoup de personnes et des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux de nos jours. Vu qu'on est dans le 20e siècle, il y a beaucoup de monde qui sont actifs là-dessus et qui vendent des choses. Et puis, je voulais partager mes produits.
1: Digital अवसरों और नई कर संबंधी जिम्मेदारियों के बीच सोशल मीडिया की दुनिया आर्थिक परिदृश्य को लगातार बदल रही है। ये एक तेजी से विकसित होता क्षेत्र है, जिसे अब डिजिटल ठेकेदारों के लिए ज्यादा स्पष्ट नियमों और बेहतर नियामक ढांचे की आवश्यकता है।
0: मॉरिशस प्रिजन सर्विस ने जेलों के अंदर सिगरेट और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। जेल कमिश्नर राशिद अली बीकन ने कहा कि अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल पाया जाता है तो उसे अपने कर्मों का जवाब देना होगा। उन्होंने जेलों में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार तलाशी और नियंत्रण अभियान जारी रखने की बात दोहराई। ये बात उन्होंने 3 जुलाई को कही जब जेलों में जब्त किए गए 1000 से अधिक मोबाइल फोन, 2084 सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, सिगरेट, देसी हथियार और अन्य प्रतिबंधित सामान को नष्ट किया गया। जरा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: पेय पदार्थ का एक कान जो खासकर मीठा ही है और काफी लोकप्रिय भी, गाड़ी की चाबी, मोबाइल फोन, इन्हें छिपा कर रखा गया था। ये उन कई सामानों में शामिल जिन्हें 7 वर्षों तक जमा किया गया। कैदखानों से इन्हें हटाने का इरादा रखते हैं। प्रिजंस कमिश्नर राशिद अली बीकन ने कहा,
4: Et dans certaines prisons qui étaient dans une certaine proximité avec bonne habitation, il y a une communication qui est établie entre bonne détenue à l'intérieur avec bonne énergumène à l'extérieur. Alors, à quel moment, quel lieu, qui se trouve, bonne ce qu'on appelle bonne objet. Nous t'aimons ça, je t'appelle ça, nous appelons ça pelting. Par exemple, quand un détenu libère la cour pour son caisse, les temps les prévenir, le remand, les temps nous passer dans le scanner. Beaucoup de fois, nous trouvons qu'ils ont un bon objet, un bon relative qui, des fois, essaye d'amener un objet.
3: कैदखानों में प्रतिबंधित वस्तुओं को ढूंढ निकालने का काम काफी जटिल भी है। कैदियों से पहले कदम जो उठाना है, वे किसी न किसी तरह से अपनी जरूरतों के सामान मंगवाते हैं, यहां तक कि ड्रोन से भी।
4: Très peu de garde chum qui corrompu et pas plutôt qu'hier nous fouillons garde chum, OK, le matin avec la peau de là-dessous. OK, nous avons plusieurs items, nous avons la drogue avec lui, nous avons des cigarettes. Nous faisons un exercice du diamant, nous fouillons même un véhicule de la police, OK, ce qu'on appelle Black Maria comme un véhicule. Et à l'intérieur, nous

0: J'aimais une cigarette. Le mot d'ordre pour moi, c'est que tout véhicule qui peut rentrer, principalement un véhicule qui peut sauter la cour, avant qu'il détenu la rentre, là, dans nos fouilles de terre, et dans une cellule qui donne nous information. Et c'est déjà extant, c'est moi, moi, une empower de ceux qui donnent nous information. Si il y a une lortie qui est rentrée, si il y a une transaction qui peut dérouler, si il y a une affaire qui peut passer.
1: बचाव मैकेनिज्म चालू कर दिया गया है. सूचना चैनलों के माध्यम से सुरक्षा और अनुशासन बढ़ाई जा रही है. प्रिजंस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि सामानों को नष्ट करने की ये प्रक्रिया पारदर्शिता दर्शाती है. पर्यावरण मानकों के मुताबिक प्रक्रिया चलाई जाती है. जो लोहे से बने औजार हैं उन्हें पेशेवरों के यहाँ पिघला दिया जाएगा.
2: जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक जेल अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है जब उस पर आरोप लगा कि उसने गुरुवार सुबह तड़के जेल के अंदर कैनबिस रोलिंग पेपर और सिगरेट ले जाने की कोशिश की. यह अधिकारी बोबासन जेल से जुड़ा हुआ था और इंटेलिजेंस यूनिट की जानकारी के आधार पर उस पर निगरानी रखी जा रही थी. शुरुआत में वो तलाशी के लिए मना कर रहा था लेकिन बाद में बॉडी स्कैनर से गुजरने पर उसके शरीर के अंदर छुपाए गए अवैध सामान का पता चला. मामले को पुलिस को सौंप दिया गया है और अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. अमेरिका आज अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है. ये 4 जुलाई 1776 का दिन था, यानी आज से ठीक 250 साल पहले, जब अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा को 13 अमरीकी उपनिवेशकों द्वारा अपनाया गया था. यह अवसर वाशिंगटन और पोर्टवी के बीच संबंधों पर नज़र डालने का भी है. ये एक साझा इतिहास है जो कई लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक पुराना है और आज ये महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों से जुड़ा हुआ है. साथ ही एक बड़े विवाद का भी कारण है, यानी शागस का मामला.
3: मॉरिशस और अमेरिका के बीच संबंधों का इतिहास 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है. उस समय अमेरिकी व्यापारिक जहाज पहले ही हिंद महासागर के समुद्री मार्गों पर आवाजाही कर रहे थे और उसी दौर का इल डिफ्रांस उनके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन चुका था. 1794 में अमेरिका ने मॉरिशस में अपना पहला वाणिज्य दूतावास भी स्थापित किया था जो 1911 तक संचालित रहा. आज दोनों देशों के संबंध अधिक संस्थागत और मजबूत हो चुके हैं. ये कूटनीतिक साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रही है क्योंकि अमेरिका बगातल में अपने नए दूतावास के निर्माण की फाइनेंसिंग कर रहा है. इस बड़ी परियोजना की लागत का अनुमान 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग है. अमेरिका मॉरिशस के लोकतांत्रिक मॉडल और खुले बाजार की नीति को मान्यता देता है. मॉरिशस आगवा का प्रमुख लाभार्थी है जबकि देश में 200 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां या अमेरिकी उत्पाद मौजूद हैं. सुरक्षा के क्षेत्र में पोर्ट लुइस समुद्री डकैती के खिलाफ अभियान में वाशिंगटन का एक अहम साझेदार है. अमेरिकी सहयोग के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों और फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है. हालांकि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर शागस द्वीप समूह अब भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. जियोगाशा में अपने सैन्य हितों के कारण अमेरिका ने राष्ट्रसंघ में मॉरिशस के पक्ष में पेश किए गए प्रस्तावों का विरोध किया है और ब्रिटेन द्वारा शागस द्वीप समूह मॉरिशस को वापस सौंपने के फैसले का भी विरोध करता है.
2: विदेश में दुनिया भर में ड्रग्स तस्करी पर बढ़ती सख्ती के बीच माफिया ने नया रास्ता तलाश लिया है. अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य क्रू सदस्यों को अपने नेटवर्क में फंसाकर उन्हें तस्करी के लिए कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रही है. थाईलैंड में एक एयरलाइन क्रू सदस्य की गिरफ्तारी के बाद इस माफिया क्रू का खुलासा हुआ है. जाँच एजेंसियों के मुताबिक माफिया फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट के जरिए क्रू सदस्यों से संपर्क करता है. पहले दोस्ती बढ़ाई जाती है, फिर मोटी रकम का लालच देकर उन्हें दूसरे देशों तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है. देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं. हमारे इलाके पर हल्की एवं सामान्य हवाओं का असर है. पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और रात के समय भी आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस की

0: बीच अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और प्रभाव रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। सूर्योदय आज 6:46 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:42 पर होगा। मौसम संबंधी जानकारियों के बाद आइए आज की प्रमुख खबरों को दोहराते हैं। बजट 2026-2027 की परचेसिंग पावर शेल के तहत सब्सिडी लागू होने के बाद सुपरमार्केट में खरीदारी बढ़ी है। कुछ जरूरी सामान सस्ते हुए हैं लेकिन अन्य उत्पादों के दाम बढ़ने से कुल असर मिला जुला है। सोशल मीडिया से कमाई बढ़ने पर सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था पर नया टैक्स लागू करने की तैयारी कर रही है। फाइनेंस बिल को फाइनलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जिसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी। विदेश में ड्रग्स तस्करी गिरोह अब एयरलाइन क्रू मेंबर्स को निशाना बना रही है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें फंसाकर कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर और कपिल का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: डिस्पेंसरी रोड विचिया मिल्ट्री ओले में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री तुलसीनाथ जोयमंगल, जो विनेश ताइवान नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो TBS के पूर्व बस कंडक्टर थे की मृत्यु हो गई। उनके अर्थे आज सुबह तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती कुमारी सौभागीतावती देवी जोयमंगल के घर डिस्पेंसरी रोड विचिया मिल ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एसएस ओले ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। जुक्रे रोड नोत्रदाम में 76 साल की 76 years old की श्रीमती चंद्रमती दर्शन जो तारामती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे आज सुबह तीन बजे उनके घर जिखे रोड नोत्रदाम से उठाकर दफनाने के लिए वाम औशां की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। Funeral today at 3 PM. Campo Road, Nouvelle-France, 77 साल के 78 years old के श्री भगवत दनहावू जो सन क्वाफर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा दनहावू के घर कॉम्पो रोड नोवेल फॉन्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगे जाने रोज पहले की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड लिस्कालिये में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पापा मा कान्या पैदाशी नाम नरसिमुलू और जो मामा पापन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री सेनापति कान्या के घर रॉयल रोड लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन के लिए 8 PM। मामजर जान गुडलैंड्स में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भानुमती सीतल पैदाशी नाम निरंजन और जो शिवरानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री रविनंद सिंह सीतल के घर मामजर

अमजिलजान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। La croisée montagne longue terre rouge mais la croisée montagne longue terre rouge mais Chia Sisal qui 86 years old qui Shrimati Kalavati Sibalak Shrimati Kalavati Sibalak jo Kalavati naam se zyada jani jati thi krimiti ho gayi unke ghar ki aaj din ke 1 baje aaj din ke 1 baje unke ghar La croisée montagne longue terre rouge se uthakar antim sanskar ke liye ba maushon ki shmashan bhumi le jayi jayegi cremation today at 1 PM। Grace Lane Hoshnuami 69 साल के 69 years old के श्री चंद्रदत्त मोहित जो प्रेम नाम से सटा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनके अर्थ है आज इनके दो बजे उनके बेटे श्री विशाल मोहित के घर ग्रेस लेन होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए होशनुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मोन सलमान पति कॉन फेनिक्स में 54 साल 54 years old के श्री देव कनाया जो सूरज नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थ है आज दिन के 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती आशनी कनाया के घर मुसलमान पति का फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फियरिनों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रमशन टुडे एट नून। श्री शंभुनाथ शिवाला रोड कॉन्फुको में 96 साल की 96 years old की श्रीमती कीमिया जान की पैदाशी नामी ताबन और जो दानों नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनके जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर श्री शंभुनाथ शिवाला रोड कॉन्फुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गैजियाबाद रोड कॉन्फुको की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। मोन सलमान रामफल बामोंग प्लेंडी पापा एमी 70 साल के 70 years old के श्री इंदर देव लक्ष्मण प्रसाद जो आनंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल रविवार को दिन के 10 बजे उनके घर मोन सलमान रामफल बामोंग प्लेंडी पापा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामों क्रंदी बाबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। मिलान दे कॉन्फुक्रोमी 76 साल के 76 years old के श्री सादेव गुहाय जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री सचिन देव गुहाय के घर मिलान दे कॉन्फुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। नंबर 17 है एस एस आर रोड जुभॉय में 89 साल की 89 years old की श्रीमती नारायणी नानकू पैदाइशी नाम बलोराम की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री भाई ननकू के घर नंबर 17 से सौरोज भाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रमशन टुडे एट 1 PM। काली माई रोड रिवेज रॉम्पा में 19 साल के 19 years old के श्री आजागेन रंगासोमी जो अविसन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी उनके पिता श्री सिवेन रंगासोमी के घर कालीमाई रोड रिवियज रॉम्पा से बाद में उठाई जाएगी। मारीजानी रोजबेल में 81 साल के 81 years old के श्री लक्ष्मी प्रसाद सनातन जो अनिरुद्ध नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके भतीजे श्री दनेश्वर मानताया के घर मारीजानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। सिबालक लेन वाकुआ में 70 साल के 70 years old के श्री रोहित बहादुर जो राधे मौसम पमदुतिया नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी कल रविवार को दिन के साढ़े दस बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमिला बहादुर के घर सिबालक लेन वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। कश्मीर रोड

0: Hans-Trebuchet, Kashmir Road, Lesbi Hans-Trebuchet, 68 साल की, 68 years old की, श्रीमती सीता महादेव बोयरब, श्रीमती सीता महादेव बोयरब, पैदाइश नामाल कोरी, पैदाइश नामाल कोरी, और जो विद्या नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हूँ घर थी, आज सुबह तीन बजे उनके घर कश्मीर रोड लेस्बी हंस-ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM, सीमतिया रोड प्लान मान्यों में 36 साल के, 36 years old के, श्री वितिश बुदन जो इशले नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी, उनकी माँ श्रीमती संध्या रापू जी के घर सीमतिया रोड प्लान मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। वैसे समय के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। Résidence Beau Séjour Rosalmé, Résidence Beau Séjour Rosalmé, 35 साल के, 35 years old के, श्री विशेष महादेव कालिया जो मिकी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी, आज दिन के दस बजे उनके पिता श्री सुनील कालिया के घर रेजिडेंस बो सेजोर रोजेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिया ब्रियान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM, विलेज हॉल लेन प्लैंडी रोशमी 57 साल की, 57 years old की, श्रीमती राजवंती रामसन, पैदाइश नाम गोबिन, और जो राजवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी, आज इनके 12 बजे उनके पति श्री ईश्वर रामसन के घर विलेज होल लेन प्लैंडी रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए L'aventure qui chmashan vous l'y jai jai chmashan jodi at noon. Kalimai Road, Petit Rafremi, Kalimai Road. Petit Rafremi, Chapan Sal ki, 56 years old ki. Shmati Muneshwari Karan. जो करुणा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी, आज दिन के 11 बजे उनके घर कालीमाई रोड पर छाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहू जी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमशन टुडे एट 11 AM, अल्बिया रोड कालबास में 42 साल की, 42 years old की, श्रीमती पुष्पा कुमारी दुखी, पैदाइश नाम दुर्गाचन, और जो लीना नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी, आज इनके 10 बजे उनके पति श्री दुखी योगेश दुखी के घर मुलसनकर सिंह दुखी के घर अल्बिया रोड कालबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए बामाशाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Welcome to RM2
3: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Once again, a lovely good morning to all of you. Ghar milate chaliye. It's 7 AM.
5: Timeless Tadka.
2: RM2.
5: Timeless Tadka.

0: Express तड़का
1: RM2.
2: Well, सुबह के 7:06 हो चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी को लवली गुड मॉर्निंग। हमने प्रॉमिस किया था ना कि अगर 7 बजे से पहले हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होगी तो 7 बजे के बाद ही सही। देखिए

0: एकदम से टाइम कैसे निकल गया, 5 से 6 के बीच और 6 से 7 के बीच। और अभी के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं लेकर आप लोगों के लिए एक अलग शो, एक डिफरेंट मूड के साथ है। इट्स योर टाइमलेस तड़का, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 8 AM। एंड ऑफकोर्स यहां पर कुछ हमारे गाने होने वाले हैं, स्पोर्ट्स अपडेट्स भी होने वाले हैं, और साथ में आपके मैसेजेस को भी हम इंक्लूड करेंगे। इसको हम मिस करें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499124। सुबह से भी बहुत सारे लोग शायद बाजार के लिए निकल चुके हैं, या फिर आप लोग अभी ब्रेड लेने जा रहे हैं, और कुछ लोग अभी अभी उठे हुए हैं, अंगड़ाइयाँ लेते लेते ये सोच रहे हैं कि आज छुट्टी का दिन है तो आज क्या करना है। वहीं पर कुछ लोगों ने ऑलरेडी सोच रखा है कि सैटरडे का दिन कैसे स्पेंड करना है, और कुछ लोग शायद अभी ब्रेड लेने जा रहे हैं, और कुछ लोगों का अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो आपको बना पे चाहिए शुभाहार। अर्ली ब्रेकफास्ट करना बहुत ही हेल्दी होता है, और सबसे ज़रूरी मील ऑफ द डे होता है ब्रेकफास्ट। सो जितना हो सके आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए, आई जस्ट होप कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ यहाँ पर आपको म्यूज़िकल ब्रेकफास्ट करने का मौका मिले, ताकि म्यूज़िक के साथ साथ आपको खाना भी थोड़ा बहुत एनर्जी दे, और खाने के साथ साथ आपको म्यूज़िक भी थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करे। तो चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ है, एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट, ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप ऑन सेंडिंग योर मैजिक messages on the magical number that is 5499 1294.
1: Timeless Tadka
2: RM2
1: Timeless Tadka.

0: info. Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
1: RM2 Radio Musty. Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
0: Sports News.
1: Radio Musty in the mix.
2: Well, 7:32 already and हमने वादा किया था कि इस शो के दौरान स्पोर्ट्स सेगमेंट तो जरूर होने वाला है. स्पोर्ट्स अपडेट्स ना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. ऐसा लगता है कि तरकारी बिन नमक. तो चलिए इसको थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए वी हैव विकास इन द स्टूडियो. गुड मॉर्निंग आपको.
3: गुड मॉर्निंग दिव्या एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. नमक कम नहीं होगा, चीनी भी कम नहीं है. सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 यानी फुटबॉल के महाकुंभ की असली जंग अब शुरू होगी, क्योंकि अभी से कुछ ही सेकंड पहले लास्ट 32 राउंड का लास्ट मैच खत्म हुआ. कोलंबिया जीत गया 1-0 से. यानी आज रात से लास्ट 16 राउंड शुरू. आज का जो आखिरी मैच था वो अभी अभी समाप्त हुआ, जिसमें आर्यास का एक गोल रहा और कोलंबिया ये मैच जीत गया. इससे पहले मोहम्मद सलाह का पनेन का अर्जेंटीना का दर्द में क्वालिफाइड होना और वोजीनिया का हीरोइक गोलकीपिंग फिर भी वर्ल्ड कप का सबसे छोटा फुटबॉल राष्ट्र के वर्दे विश्व कप से बाहर. किंतु खुशी के आंसू भी रहे. वर्ल्ड कप 2026 की कहानी में दर्द भी है, खुशी भी है और आंसू भी. फुटबॉल के इस महाकुंभ का दूसरा पड़ाव समाप्त हो गया. सो असली जंग यानी लास्ट 16 राउंड आज से शुरू. सो वैसे हमने कहा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोलंबिया 1-0. अभी से कुछ ही सेकंड पहले मैच समाप्त हुआ. खेल के 14वें मिनट पर जे आर्यास का एक गोल और कोलंबिया ये मैच जीत गया. कोलंबिया और गाना के बीच हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा. गाना का बाजा बंद, कोलंबिया का महाकुंभ आरंभ. कोलंबिया 1-0. लुइस डियास के 2-2 गोल मना कर दिए गए. फिर भी जो जीता वही सिकंदर और कोलंबिया खेलेगा अब लास्ट 16 राउंड में स्विट्जरलैंड के विरुद्ध. इससे पहले आज एकदम तड़के 2 बजे तड़के पे टड़का अर्जेंटीना 3-2. जहां लग रहा था कि आसान मैच होगा वहीं पर मेसी और साथी को दर्द सहना पड़ा. एक पहला गोल खेल के 29वें मिनट पर लियोनेल मेसी ऑन टारगेट. वर्ल्ड कप का उसका 7वां गोल और ही इज द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानना पड़ेगा. अर्जेंटीना 3-0. पहला गोल 29वें मिनट पर मेसी, फिर इक्वलाइज किया डेरॉय डुआर्टे ने 59वें मिनट पर. 59th मिनट पर 90 मिनट के बाद मैच 1-1 पर समाप्त हुआ. उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम के 2 मिनट पर 92nd मिनट पर लिसांड्रो मार्टिनेज ने अर्जेंटीना को फिर आगे किया और लगने लगा था कि अब अर्जेंटीना जीत जाएगा. वहीं पर लिंडे कब्राल का एक स्टनिंग गोल 130 मिनट पर 103rd मिनट पर, जो इस वर्ल्ड कप का सबसे महान गोल भी बन सकता है. मैच 2-2 सबको चौंका दिया और उसके कुछ ही मिनट बाद 111 मिनट पर डीने बोजेस का एक ओन गोल और इसी ओन गोल ने विनिंग गोल के रूप में अर्जेंटीना को 3-2 से जितवा दिया. हार्दिक बधाई अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी को, पर खुशी खुशी के वर्दे बाहर गए. खुशी के आंसू भी बहे लेकिन खुश होकर गए. गोलकीपर वोजीनिया ने 8 महत्वपूर्ण सेव किए और हार के बावजूद वो फिर बना मैन ऑफ द मैच. बाय बाय अलविदा के वर्दे. फिर मिलेंगे यदि ईश्वर ने चाहा तो 4 साल बाद वर्ल्ड कप अगेन. सो अर्जेंटीना 3-2. और कल रात जो पहला मैच खेला गया उसमें अंततः इजिप्ट क्वालिफाइड हो गया पेनाल्टी शूट आउट के बाद. ऑस्ट्रेलिया 1-1. खेल के 13वें मिनट पर इमान अशूर ने इजिप्ट को आगे किया. ये उसका दूसरा गोल रहा वर्ल्ड कप में. लेकिन सेकंड हाफ में एक ओन गोल 57th मिनट पर मोहम्मद हैनी का ओन गोल. ऑस्ट्रेलिया 1-1. 90 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम के बाद कोई भी गोल न बन पाया तो पेनाल्टी शूट आउट सत्र में मोहम्मद सलाह का एक पनेन का रहा. एंड फाइनली इजिप्ट वन by 4-2 on penalty shootout. Salah ka panenka, stunning audacious panenka keh sakte hain. 34 saal ki aayu mein wo इस टीम का सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी है और उसने मैच के बाद कहा कि उसे करना पड़ा टीम में भरोसा लाने

0: के लिए एंड इट्स फाइनली इजिप्ट इन, ऑस्ट्रेलिया आउट। इजिप्ट का मुकाबला अब अर्जेंटीना से होगा लास्ट 16 राउंड में, जबकि कोलंबिया खेलेगा स्विट्जरलैंड के विरुद्ध। लास्ट 32 राउंड के आखिरी दो मैच, आखिरी तीन मैच समाप्त। आज रात से लास्ट 16 राउंड शुरू, यानी इस रात की कोई सुबह नहीं क्योंकि मैच सुबह तक जारी रखा जाएगा। आज रात 9 बजे कनाडा वर्सेस मोरक्को। लास्ट 16 राउंड का पहला मैच कनाडा वर्सेस मोरक्को। कनाडा यदि सह मेजबान को होस्ट कंट्री है और अपनी जनता के सामने अपने घर में यदि बाघ भी शेर होता है तो मोरक्को इज ऑन फायर। अशरफ हकीमी और साथ ही आग लगा देंगे आज रात ह्यूस्टन टेक्सास के NRG स्टेडियम में। कनाडा इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगा तो मोरक्को अपनी इनविंसिबल अजय लय और मजबूत डिफेंस का टैग लेकर वर्ल्ड कप का एक प्रबल, वर्ल्ड कप जीतने का एक प्रबल दावेदार बन गया है। सो मोरक्को वर्सेस कनाडा आज रात 9 बजे टेक्सास के NRG स्टेडियम में। दूसरा मैच भी अपने आप में अद्भुत है। कल सुबह 1 बजे यानी कि आज रात 12 बजे के बाद 1 बजे फ्रांस वर्सेस पराग्वे। अब तक वर्तमान वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम फ्रांस ने अपने आक्रामक अग्रेसिव फुटबॉल से प्रभावित किया है, खासकर किलियान एम्बापे, ब्रैडली बाकुला, उस्मान देम्बेले आदि की रफ्तार के सामने क्या पराग्वे फिर से जायंट किलर बनेगा जर्मनी को किल करने के बाद। देखते रहिए और सुनते रहिए। ये मुकाबला केवल टेक्निक का नहीं बल्कि धैर्य, पेशेंस, रणनीति, स्ट्रैटेजीज और जज्बे की भी परीक्षा है। एक तरफ फ्रांस की चमक, दूसरी ओर पराग्वे का दमक और दम। कल सुबह 1 बजे सुनते रहिए और देखते रहिए। टेनिस में चैंपियन बूढ़े नहीं होते, वे और महान बनते जाते हैं। 39-year-old क्लासी नोवाक जोकोविच ने फ्रांस के आर्चियर रिंडेनेक को 4 सेटों के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 7-5, 6-4, 1-6 और 7-6 से हराकर विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में जगह बना ली है। तीसरे सेट में लड़खड़ाने के बावजूद जोकोविच ने अपने अनुभव, धैर्य और अद्भुत मानसिक मजबूती का परिचय दिया। इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अगला पड़ाव रशियन खिलाड़ी रोमान साफियोलिन, इसी में डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर की भी जीत हुई। तो लड़कियों में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबलेनका ने येलेना ओस्टापेंको को 6-4, 6-4 से हराकर अगले राउंड में कदम रखा। क्रिकेट न्यूज, इंग्लैंड और भारत के बीच आज पहला T20 मुकाबला होगा मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्राफोर्ड स्टेडियम में। दूसरा मैच मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहम में खेला जाएगा। एंड फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की ब्रिटिश ग्रैंड प्री रेस के लिए फेरारी का लेविस हैमिल्टन स्प्रिंट रेस में आगे निकल आया है। किमी एंटोनेली ने दूसरा स्थान लिया। आज शाम पोल पोजीशन के लिए जमकर रेस होगी और कल संडे को फाइनल रेस। सो आज सुबह मैच समाप्त हुआ, कोलंबिया 1-0। कोलंबिया का मुकाबला लास्ट 16 राउंड में स्विट्जरलैंड से। अर्जेंटीना ने केप वर्दे को 3-2 से हराया। ऑस्ट्रेलिया 1-1, पेनाल्टी शूटआउट में इजिप्ट की जीत हुई 4-2 से। और आज रात 2 अन्य मैच खेले जाएंगे। आज रात 9 बजे कनाडा वर्सेस मोरक्को लास्ट 16 राउंड का पहला मैच, और कल सुबह 1 बजे तड़के 1 बजे फ्रांस वर्सेस पराग्वे। हम फिर मिलेंगे आज रात 7 से 9 के बीच झंकार बीच में। सो सुनते रहिए और मिलते रहिए बाकी के प्रोग्राम दिव्या के साथ।
1: थैंक यू सो मच विकास।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Puis cassez-le la voie. La lumière moderne, prix choc.

वेल फ्रेंड्स, आप लोग क्या मिले और जिंदगी सवर गई. थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. आप लोग आते हैं तो शो में चार चांद ही लग जाता है. वेल अभी के लिए शो में और अच्छी तरीके से चार चांद लगाने के लिए वी हैव परी जो कंटिन्यू करने के लिए आ रही है टाइमलेस तड़का. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

0: होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

नमस्ते, भोजपुरी में समाचार सुना जा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम ग्राम का सांज के अपन चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद रहलन, जहाँ पर ही ट्रियोले की रविन्द्रनाथ गौबहन स्टेडियम के पुनोद्घाटन डॉक्टर नवीन राम ग्राम करलन जा। स्टेडियम के दोबारा खोले के मौका पर एक गला मार्च भी आयोजित हो रहा, जेकर में कई गो युवा खिलाड़ी हिस्सा लेलन जा। अपन संबोधन में डॉक्टर नवीन राम ग्राम पेंशन सुधार के मुद्दा पर विस्तार से बात करलन जा। उबलन के लंबा समय लिए मॉरिशस में लागू पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं बाटे। इबार ओ 2015 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की एक रिपोर्ट के बारे में बात करलन जा। रिपोर्ट में बोला रहा कि यदि ये व्यवस्था जारी रही तो 2050 ले पेंशन पर होल खर्चा देश के GDP के 8% हो जाए। किंतु प्रधानमंत्री बोलन के IMF के अनुमान गलत रहा, कहे कि मॉरिशस में पेंशन पर होल खर्च आज ही GDP के 8% के पार कर ले बातें। एक बावजूद वो आश्वासन देलन कि उनकर सरकार देश में बदलाव लावे और मॉरिशस के आगे बढ़ावे खातिर हर संभव कोशिश करे। जरूरी चीज पर नवा छूट लागू हुए के 3 दिन बाद, जो कि बजट 2026-2027 की परचेसिंग पावर शील्ड के तहत तेवल गलबाती कर शुरुआती असर सामने आल बाते। डिब्बाबंद मछली यानी कान चूना, कोन बीफ, कोन मटन, अनाज स्पैगेटी, सैनिटरी पैड और बेबी सामान जैसन चीज ई छूट में शामिल बाते। सुपरमार्केट में सामान्य से जस्ती भीड़ देखल जाता, खास करके डिब्बाबंद चुना मछली के सेक्शन में, जो नवा सब्सिडी उपाय से प्रभावित बातें। ग्राहक अब पहले की तुलना में

0: जस्ती मात्रा में खरीदारी करत हवन जहां पहले एगो यूनिट लेवल जात रहल अब दूगो लेवल जाता किंतु जन सब्सिडी में शामिल नए बातें उनकर दाम बढ़ने से कुल मिला के कीमत में बड़का बदलाव महसूस नहीं हुआ। मंत्री परिषद ई नोट करलन के फाइनेंस बिल की अंतिम रूप देवे खातिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एगो विशेष समिति बनावल जाए कर पहल का बैठक 8 जुलाई 2026 खातिर निर्धारित बाते और मंत्री परिषद कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के गठन की भी मंजूरी देलन। आयोग के चेयरपर्सन विनोद बुलेल रहियन और वाइस चेयरपर्सन अफुन श्री यू चंग रहियन। आयोग में विशेषज्ञ लोग संविधान में संभावित सुधार और बदलाव की अध्ययन करियन जा। साधारण वीडियो अब बड़का कमाई की जरिया बन गल बाते सोशल मीडिया आज कई गो कंटेंट क्रिएटर्स खातिने को इनकम के जरिया बन गल बाते। तेजी से बढ़ रही ट्रेंड के देख के सरकारी डिजिटल अर्थव्यवस्था के बेहतर तरीका से नियंत्रित करे खातिन नवा टैक्स संबंधी व्यवस्था लागू करी। विदेश में दुनिया भर में ड्रग्स तस्करी पर बढ़त सख्ती के बीच माफियाई को नवा रास्ता खोज ले हवन जा। अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट और दूसर गो क्रू सदस्य के अपन नेटवर्क में फंसा के उनकरा तस्करी खातिन कुरियर नियन इस्तेमाल करत हवन। थाईलैंड में गो एयरलाइन क्रू सदस्य की गिरफ्तारी के बाद ई माफिया क्रू की खुलासा होल बाते। तय रहे भोजपुरी में समाचार आप लोग के ध्यान खातिन धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: सुबह के 8:09 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं. आज है सैटरडे और वीकेंड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है. इट्स टाइम कि आप स्ट्रेस को साइड में रखें और चाय और कॉफी के साथ अपने दिन को एंजॉय करें. हमारे गुड म्यूजिक के साथ आपकी इस मॉर्निंग में हम आपका स्वागत करते हैं. मैं हूं परी आपके साथ और अगले 3 घंटों तक होने वाला है आपके लिए ब्यूटीफुल म्यूजिकल सफर, जहां पर लेकर आएंगे आपके लिए बिगेस्ट हिट्स, फील गुड वाइब्स और बॉलीवुड के कुछ ऐसे गाने जो आपके वीकेंड मूड को सेट रखने वाले हैं. सो सुबह के 8:10 हो चुके हैं. सैटरडे मॉर्निंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है. आपके लिए गुड गुड म्यूजिक एंड गुड वाइब्स लेकर आए हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. एंड अभी के लिए जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल.
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: हमारे इलाके पर हल्की एवं अस्थिर हवाओं का असर है. पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और रात्रि के समय भी आसमान साफ रहेगा. तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. प्रवाह रेखा के बड़े समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है और सूर्यास्त शाम के 5:42 पर.
0: Your weather forecast on RM2
1: Radio Musti.
5: Fin de mois, et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. 800 grammes de pilon de poulet Prodigal à 179,95 € et le pack de 100 serviettes Softpack Green à 44,95 €. Pas oublié, Excan to pay te gagne plus points Weave.
6: On est tous Winners!
7: Kabhi spicy, kabhi sweet. Music lovers ki heartbeat.
8: Tak tak Bollywood.

0: défis de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: एंड वेल फ्रेंड्स, मॉर्निंग टाइम और हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है. सो कीप स्माइलिंग. और जैसे हम कहते हैं, लाइफ में अगर आप ग्रेटफुल रहते हैं तो जिंदगी और भी बढ़िया चीज़ें आप तक पहुंचाती है. सो अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव वाइब्स के साथ करें. सैटरडे का मतलब है एक ब्यूटिफुल वीकेंड जहाँ पर आप थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालते हैं. सो रिलैक्स करें, रिचार्ज करें एंड हैव अ हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
0: Commence par une bonne décision. Nescafé.

0: Radio Mustaine.
1: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
3: 2026 FIFA World Cup.
2: Radio Mustaine ki team ke saath
3: chaliye
2: United States, Canada or Mexico.
3: Radio Mustaine ke saath
2: World Cup magazine.
4: World Cup Special Magazine FIFA World Cup 2026 के फाइनल 16 की लिस्ट और बेस्ट ऑफ 16 फिक्स्चर्स विच एम फिनाल तैयार है। अंतिम टिकट इजिप्ट, अर्जेंटीना और कोलंबिया के नाम और आज रात से ही लास्ट 16 शुरू। फिक्स्चर्स इस प्रकार हैं: कनाडा वर्सेस मोरक्को आज 9 बजे, फिर फ्रांस वर्सेस पाराग्वे कल सुबह 1 बजे, ब्राजील और नॉर्वे के बीच मैच होगा कल मिडनाइट किक ऑफ, मेक्सिको नॉर्वे मंडे सुबह 4 बजे, पोर्टुगल स्पेन मंडे 11 बजे रात को, यूएसए बेल्जियम ये होगा मंगलवार सुबह 4 बजे, अर्जेंटीना इजिप्ट मंगलवार रात के 8 बजे, स्विट्जरलैंड कोलंबिया मंगलवार मिडनाइट। जिस तरह ड्रॉ हुए हैं फाइनल में फिर से फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला हो सकता है, या फिर स्पेन अर्जेंटीना, फ्रांस ब्राजील, फ्रांस इंग्लैंड, स्पेन इंग्लैंड, स्पेन ब्राजील, ये पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील सेमीफाइनल में संभव हो सकता है, अगर मगर ऐसा हुआ तो, लेकिन ये मैच के बाद ही पता चलेगा। अभी तक लियोनेल मेसी लीडिंग गोल स्कोरर है, टोटल 7 गोल्स। ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर में मेसी 20 गोल तक आ चुका है, किलियान एम्बापे टोटल 18। स्मॉलेस्ट नेशन पर बिगेस्ट इम्पैक्ट, केप वर्दे सबका दिल जीत कर वर्ल्ड कप को अलविदा कह रहा है। गोलकीपर वोजीना के हीरोइक्स से स्पेन को रोका, अर्जेंटीना को भी रोका, पर एक्स्ट्रा टाइम में ऑन गोल दगा दे गया। गोलकीपर वोजीना टोटल 18 सेव्स, बिना क्लब का गोलकीपर, अब कोई टीम उसे जरूर साइन करेगा। 40 साल का है, पर कहते ना एज इज जस्ट ए नंबर। और इधर इंग्लैंड मेक्सिको वाला मैच निर्धारित समय मतलब मंडे सुबह 4 बजे ही खेला जाएगा। फीफा समय बदलना चाहता था पर इंग्लैंड और मेक्सिको नहीं माने। इस मैच में इंजुरी कंसर्न के बावजूद डेक्लान राइस खेल पाएगा। इंग्लैंड के राइट बैक पे प्रॉब्लम, रिकी जेम्स और क्वांशा दोनों घायल हैं। सो कोलंबिया 1 गाना 0, ऑस्ट्रेलिया 1 इजिप्ट 1 पेनाल्टी पर इजिप्ट की जीत, अर्जेंटीना 3 के वर्दे 2 वो भी एक्स्ट्रा टाइम के बाद। गेट रेडी फॉर द लास्ट 16 आज से 9 बजे, कनाडा वर्सेस मोरक्को, फ्रांस वर्सेस पाराग्वे। एमबीसी टीवी के साथ जुड़े रहिए, वर्ल्ड कप देखिए और रेडियो मस्ती सुनते रहिए। हैव ए नाइस टाइम, वंडरफुल वीकेंड अहेड, अ वंडरफुल फुटबॉल वीकेंड।
5: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

वेल फ्रेंड्स आ दे रहे हैं आप हमारा ऑन RM2 रेडियो मस्ती लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके सैटरडे मॉर्निंग के लिए. वैसे सैटरडे मॉर्निंग्स की बात ही कुछ अलग है, इसका एक डिफरेंट वाइब होता है. नो रश नो ऑफिस अलार्म्स फॉर मेनी बस स्लो मॉर्निंग्स एंड हैप्पी हार्ट्स. आज का मंत्र तो बस इतना ही है, टेक योर टाइम टू रिचार्ज बिकॉज रेस्ट इज प्रोडक्टिव टू. जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को आप एंजॉय करें क्योंकि वीकेंड्स जो है दे डोंट लास्ट फॉरएवर. So let's make this weekend special. आपके लिए लेकर आए हैं कुछ beautiful songs. अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ. It's time for your timeless तड़का. आपके messages, आपके dedications, आपके दिल का हाल 5499-1294 पर.

वेल फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का। कुछ ऐसे गाने जो हमेशा से हमारे दिल के करीब थे, बस सैटरडे मॉर्निंग्स आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे गाने जो आपके वीकेंड मूड को कम्प्लीटली सेट कर दे। मैं हूं परी आपके साथ, गुड म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। और कैसे बीत रहा है आपका वीकेंड? अरे अभी तो बस शुरुआत है, और बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप, तो गाने सुनते सुनते वक्त कहां बीत जाएगा।

आपको पता भी नहीं चलेगा और वीकेंड होता ही ऐसा है आता बहुत टाइम से है लेकिन जाता बहुत फास्ट है सो हर एक पल को मेक इट खास मेक इट स्पेशल सो वेल फ्रेंड्स आते रहे हैं आप आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 1294 यहां पर सचिन काजल श्रावणी श्रवण अहान एंड मिठू परिवार हमारा साथ दे रहे हैं आप थैंक यू सो मच साथ देने के लिए और आरएम टू रेडियो मस्ती को चुनने के लिए गाना होगा आपके लिए कहते हैं यहाँ पर गाना हो जाए फॉर किमिनी शिबू हमारा साथ दे रही हैं आप आज है आपका बर्थडे लोड्स ऑफ लव हैप्पीनेस दैट्स कमिंग फ्रॉम रेशमा विराज रति किशन दीपा बोपी ओजस्वी लवीश एंड सचिन आपके लिए भेजा है प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेस कहते हैं हेलो लवली बहना परी हेलो जी मिस्टर कुमार देवीचंद कैसे हैं आप ऑलरेडी आज सी साइड क्या बात है व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द वीकेंड पहुंच चुके हैं आप सी साइड पर और डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर पापा श्याम देवीचंद ऑफ I love you, Papa. ये मैसेज है आपके डियरेस्ट पापा के नाम एंड वेल यहाँ पर कहते हैं गाना हो जाए फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ बिल्कुल जी थैंक यू दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू रेखा जी साथ दे रही हैं आप और कहती हैं गाना फॉर बेटा अंश पोबोजे से हमारा साथ दे रहे हैं और एक ब्यूटीफुल गाना सुनना चाहती हैं आप भी सो बिल्कुल प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं आपके लिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती स्वीटी आप भी साथ दे रही हैं हमारा सो वॉर्म वेलकम आपका हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ और चलिए अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं टू गेट यू इन द सैटरडे मूड वैसे शादी का सीजन तो चल ही रहा है और वीकेंड जो होता है वो शादी के नाम भी होता है सो टू एवरीवन हु इज गेटिंग मैरिड दिस वन गोज़ आउट फॉर यू

0: Bez Tarka.
1: RM2.
2: सीने में तो आपका दिल भी धड़क रहा है क्योंकि इतने प्यारे गाने आप तक हम पहुंचा रहे हैं. मॉर्निंग टाइम आरएम2 रेडियो मस्ती. इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का. मैं हूं परी आपके साथ टिल 11 एएम गुड म्यूजिक के साथ आपकी इस मॉर्निंग को सजाने की हमने पूरी कोशिश की है. और चलिए दोस्तों अभी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलदीप जी. कहते हैं गाना हो जाए फॉर ऑल द आरजेस एंड एवरीवन लिसनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच कमलदीप जी. गाना आपके नाम. ज्योति जी लेस्काली से हमारा साथ दे रही हैं. डेडिकेट करना चाहती हैं गाना हस्बैंड सुधीर के नाम. And goes out for all your loved ones as well. साथी नेक्स्ट ट्रैक होगा फॉर विशाल जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं एंड फ्लक्स से गुडलैंड जा रहे हैं. सो ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब एंड ऑल द पैसेंजर्स, अ गुड वाली मॉर्निंग.

आपको RM2 रेडियो मस्ती टीम की ओर से आप सभी के लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस। गीता बोलाराम साथ दे रही हैं, आप प्रशांत बनारस से, गाना होगा आपके लिए एंड गुड ही गुड म्यूजिक हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन पर। साथ ही कहते हैं यहाँ पर हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमें मत भूलिए, आपको कैसे भूल सकते हैं। कहते हैं कि आज पोता कृष्ण प्रयाग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेस्ट विशेष लेकर आए हैं मामू अवीश, मॉम अविशा, साथ में है अविनाश, आदू, करण, नानी लीना एंड सभी दौलत परिवार वृंदे पपाए से उनके लिए भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज। नेहा मंगरू यहाँ पर कहती हैं गाना हो जाए फॉर नितीश, ही इज वर्किंग राइट नाउ एंड लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती। नितीश गुड मॉर्निंग आपको एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम नेहा। साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर बेटी स्वीटी दामाद कमलेश, साथ में है सेशना, योहान एंड रोहन। रागिनी जी हमारा साथ दे रही हैं, आप भी सो गुड विशेस पहुंचा रहे हैं आपके लव्ड वंस तक। हमारी प्यारी सी सुदेवी जी वाकवा से आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और कहती हैं गाना हो जाए फॉर ट्रियोले की दीदी ललिता एंड कुशाल परिवार, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, संगीता, बिंदु, सभी राम रतन, रघुबर परिवार एंड हमारी टीम के नाम भी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक और खूबसूरत गाना और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर बॉली ब्रांच। समाचारों के बाद लौट कर आएंगे विद सम मोर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। मैं हूँ परी आपके साथ दिन के 11 बजे तक, आप भी साथ दे रहे हैं। सो ड्रॉप इन आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल ऑन 5499-1294।

0: लीजिए इस समय सुबह के ठीक 9 बजे समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है टीना, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम अपने चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद थे, जहां उन्होंने त्रियोली स्थित रविन्द्रनाथ गावागन स्टेडियम के पुनः उद्घाटन का आधिकारिक शुभारंभ किया। स्टेडियम के दोबारा खोलने के अवसर पर एक गला मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन समारोह के दौरान सबसे अधिक ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर गया जो खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा है। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लंबे समय तक मॉरिशस में लागू रही पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी, और प्रधानमंत्री ने मध्यपूर में जारी युद्ध के कारण आयात पर पड़े असर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष के चलते आयातित वस्तुएं महंगी हो गई हैं। उनके अनुसार स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जो पेट्रोलियम, रसोई गैस, चावल और आटे का आयात करती है, इस युद्ध के कारण 3.2 बिलियन रुपये के कर्ज में पहुंच गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन परिस्थितियों ने मॉरिशस की आर्थिक स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया है। इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार देश में बदलाव लाने और मॉरिशस को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ज़रूरी चीज़ों पर नई छूट लागू होने के 3 दिन बाद, जो कि बजट 2026-2027 के परचेसिंग पावर शुल्क के तहत दी गई है, इसके शुरुआती असर दिखने लगे हैं। डिब्बाबंद मछली यानी कान चूना, कोन बीफ, कोन मटन, अनाज, स्पैगेटी, सैनिटरी पैड और बच्चों के सामान जैसी चीज़ें इस छूट में शामिल हैं। सुपरमार्केट में सामान्य से अधिक भीड़ देखी जा रही है, खासकर डिब्बाबंद चूना मछली के सेक्शन में, जो नए सब्सिडी उपाय से प्रभावित है। हालांकि असर मिला जुला है, कुछ उत्पाद सस्ते हुए हैं, लेकिन जो सब्सिडी में शामिल नहीं है उनके दाम बढ़ने से कुल मिलाकर कीमतों में बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो रहा है।

0: परिषद ने नोट किया कि फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी और मंत्रिपरिषद ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के गठन की भी मंजूरी दी। इस आयोग के चेयरपर्सन विनोद बुलेल होंगे और वाइस चेयरपर्सन अफुन च्वी युंग युचोंग होंगी और यह आयोग विशेषज्ञों के तहत संविधान में संभावित सुधारों और बदलावों का अध्ययन करेगा। विदेश में यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि यदि उसने ईरानी नागरिक विमानों की सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आवाजाही में बाधा डालना जारी रखा तो उसके हवाई अड्डों और अन्य रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। हमें आगे दीजिए नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Body Branch, RM2, Radio Must See.

So well, it's time जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं good music. It's time for your Bolly Brunch. साथ दे रहे हैं आप हमारा on RM2 Radio मस्ती सुबह के 9:10. मैं ऊपर ही आपके साथ and wishing you a happy happy weekend, a beautiful Saturday morning. जहाँ पर good music के साथ शुरुआत हो रही है आपकी morning की. So अगर आप भी साथ दे रहे हैं आपके messages, आपके dedications 5499-1294 पर. For now we have this beautiful song, Bombay Vikings की आवाज. Enjoy this one.

0: Family Brunch RM2 Radio Masti.
1: और आपके ब्रंच के लिए हमने सजाया है एक ब्यूटीफुल प्लेटर जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए गुड गुड बॉलीवुड सॉन्ग्स और साथ ही साथ गुड वाइब्स फॉर दिस वंडरफुल वीकेंड. वेल फ्रेंड्स, मैं हूं परी आपके साथ. समय हो चला है आपके बॉली ब्रंच का जहां पर कुछ प्यारे गानों के साथ हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए हैं. इट्स टाइम आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस जो आपने इतने प्यार से पहुंचाए हैं ऑन 54991294. आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मयूर गोकुल सिंह, उनके लिए स्पेशल विशेष कमिंग फ्रॉम मॉम प्रियंका, डैड सलिल और साथ में है उनकी सिस्टर पूर्वी, आरती है, विशाल, अवनीश, सभी सीतोहल, राम प्रताप, भगवंत, गनु परिवार, उन्हें विश कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. साथ ही स्पेशल विशेष that's coming from all his friends, all his loved ones. So Devi ji Vakwa se good morning wishes aapki bhi pahunch gayi hain yahan par. So thank you so much for the love and thank you so much itne pyar se aap hamara saath de rahi hain. कहते हैं गाना हो जाए फॉर लवली डॉटर समायरा. बिल्कुल जी. एंड विजया जी, आपके लिए भी हम चलाएंगे एक ब्यूटीफुल ट्रैक, हमेशा साथ देती हैं मॉर्निंग हो या नाइट, 24/7 कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. ये हुई ना बात. सो वेल, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, कीप स्माइलिंग एंड गुड म्यूजिक आप तक हम पहुंचाते रहेंगे. थैंक यू जी. और कहते हैं विशिंग अ हैप्पी सैटरडे एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स. थैंक यू जी. और नेक्स्ट गाना डेडिकेट करना चाहते हैं आप, ये होगा फॉर वाइफ सबिता कमिंग फ्रॉम ज्ञान बिहारी, साथ में आपकी सिस्टर इन लॉ गीता है, साथ में है संजीव, सुनील, रानी, शीतल, सभी RM2 लिसनर्स के नाम. बिल्कुल जी, विल हैव अ ब्यूटिफुल ट्रैक कमिंग अप आप सभी के लिए. एंड यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गई हैं ऑल द वे फ्रॉम फ्लैक हमारी प्यारी सी झाना जी, और कहती है रेडियो सुन रही हूँ और काम करते हुए एंजॉय कर रही हूँ इन वंडरफुल सॉन्ग्स को. डेडिकेटिंग गाना सभी लव्ड वंस के नाम, रीमा, जनता, सेष्टा, अंसनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिव, सरन, परिवार ऑफ अ फ्लैक, गुड विशेज आप सभी के नाम. एंड डेडिकेटिंग एक ब्यूटिफुल गाना फ्रॉम मदर इन लॉ ललिता कमिंग फ्रॉम रीमा, आशीष एंड रिद्वांश. ओ माई गॉड, दैट्स सो स्वीट. सो सासुमा हो गई है हैप्पी हैप्पी क्योंकि उनके नाम चलने वाला है एक ब्यूटिफुल सा गाना. और साथ ही यहाँ पर मनीष, अमर, राजा, बानी, जसिक परिवार, सभी खूबलाल परिवार हमारा साथ दे रहे हैं आप रिवर जोहों पास से. सो हैव अ वंडरफुल टाइम. ज्योति जी शातव बनारस से आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं. डेडिकेटिंग गाना फॉर अंशनी, रेखा, सुरेखा और सभी मदब परिवार के नाम. सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल ट्रैक आप सभी के लिए, फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ. बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक होता है आपके नाम और आज तो है सैटरडे मॉर्निंग. सुबह के 9:26 हो गए हैं. मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉली ब्रंच. साथ दे रहे हैं सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके गुड विशेस 54991294 पर. एंड दैट्स इन द वॉइसेस ऑफ बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन. कुछ गाने जो हमेशा खास रहते हैं, हमेशा स्पेशल रहते हैं. हमारे सभी डियर लिसनर्स, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड. एंजॉय दिस वन.

मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती। सो वेल फ्रेंड्स, होप आप अपनी मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं। हर एक गाना के साथ, हर एक गाने के साथ आपकी मॉर्निंग और भी बेटर बनती जा रही है। एंड वेदर यू आर हेडिंग टू द बीच, ग्रोसरी शॉपिंग, ड्राइविंग टू वर्क, या फिर सिंपली घर पर रिलैक्स करते हुए गानों को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर सैटरडे, फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती। एंड 9:42 अभी के लिए हमारे कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, ये तो हमारी मॉर्निंग भी एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त बना देते हैं। सभी के लिए जो गाना है इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्मिता आपके लिए, और कहती है वंडरफुल सॉन्ग्स ऑन रेडियो मस्ती, एंड ऐसे ही गानों के साथ तो मूड सेट हो जाता है। ये हुई ना बात, डेडिकेट कर रही है गाना फॉर समवन वेरी वेरी स्पेशल जिन्हें आप मिस कर रही हैं। कहते हैं नाम तो नहीं बताएंगे और हम तो कहेंगे प्यार किया तो डरना क्या, डरने की क्या बात है, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, स्पेशल समवन, उनके नाम एक गाना जरूर हम डेडिकेट करेंगे। और साथ ही कहते हैं दैट ब्रेकफास्ट की शुरुआत तो हो चुकी है, ब्रंच की शुरुआत हो चुकी है, ये हुई ना बात। यलेश, यहाँ पर आपने भी शेयर किया है अपना ब्रेकफास्ट पिक्चर, सो एंजॉय योर यमी यमी ब्रेकफास्ट। एंड इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती, और कहते हैं एक प्यारा सा गाना मेरे नाम फॉर ऑल शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम, बिल्कुल कमिंग अप एक ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड मिस्टर अमर हमारा साथ दे रहे हैं आप भी, और चलिए आपके लिए भी एक प्यारा सा गाना जरूर चलाएंगे फॉर एवरीवन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर।

0: Bollywood.
1: वेल धक धक बॉलीवुड बॉलीवुड के कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स आपके लिए टू सेट योर वीकेंड मूड एंड इसी ट्रैक के साथ दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ फाल्गुनी पाठक टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन. एक ब्यूटीफुल ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम. परी का साथ है दिन के 11 बजे तक. चलिए अभी के लिए ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए. समाचारों के बाद लौट कर आएंगे. दैट्स योर बॉली ब्रांच ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, exactly 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम अपने चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद थे, जहां उन्होंने त्रिवेणी स्थित रविंद्रनाथ गौबाहन स्टेडियम के पुनः उद्घाटन का आधिकारिक शुभारंभ किया। स्टेडियम के दोबारा खोलने के अवसर पर एक गाला मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन समारोह के दौरान सबसे अधिक ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर गया जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा है। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लंबे समय तक मॉरिशस में लागू रही पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी। इस बार उन्होंने 2015 में IMF की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि यही व्यवस्था जारी रहती तो 2050 तक पेंशन पर होने वाला खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 8% हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार IMF का ये अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि मॉरिशस में पेंशन पर होने वाला खर्च आज ही GDP के 8% के आंकड़े को पार कर चुका है। मंत्रिपरिषद ने नोट किया कि फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी। साधारण वीडियो अब बड़ी कमाई का जरिया बन सकते हैं। सोशल मीडिया आज कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक असली आय यानी इनकम का स्रोत बन चुका है। इस तेजी से बढ़ती ट्रेंड को देखते हुए सरकार इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नई टैक्स संबंधी व्यवस्थाएं लागू कर रही है। अमेरिका आज अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। ये 4 जुलाई 1776 का दिन था, यानी आज से ठीक 250 साल पहले, जब अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा को 13 अमरीकी उपनिवेशों द्वारा अपनाया गया था। ये अवसर वाशिंगटन और पोर्टवी के बीच संबंधों पर नज़र डालने का भी है। एक साझा इतिहास है जो कई लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक पुराना है, और आज ये महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों से जुड़ा हुआ है। साथ ही एक बड़े विवाद का कारण भी है, वो है शागस का मामला। विदेश में अमरीकी इजरायली हमलों में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के व्यापक अंतिम संस्कार की शुरुआत हो गई है। खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा। और वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में फुटबॉल फैंस को जबरदस्त मैच देखने को मिला। अर्जेंटीना ने केप वेद के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज करके अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पोर्चुगल ने क्रोएशिया को 2-1 और स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ, जहां पेनाल्टी शूट आउट में इजिप्ट ने बाजी मार ली। कोलंबिया और गाना के बीच रोमांचक मुकाबला आज सुबह हुआ, जहां कोलंबिया ने 1-0 से जीत हासिल की। और आज रात

0: वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के दो रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में पराग्वे की टक्कर फ्रांस से होगी। दोनों ही मुकाबले क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहद अहम होंगे और फुटबॉल फैंस को रोमांच से भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई, थोड़ी देर में शोक समाचार। मिलान दू कांफुक्रोमी 76 साल के 76 ईयर्स के श्री सादेव गुहाय जो रमेश नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री सचिन देव गुहाय के घर मिलान दू कांफुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बंगाली रोड बुसोंज में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिद्वंती मितन जो माला नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई, उनके अर्थी कल रविवार को दिन के दो बजे उनके घर बंगाली रोड बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताज सैम्पिया बाम्बू की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Body Branch, RM2, Radio Masti.

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि आप हमें अच्छे लगने लगे, हमेशा से ही अच्छे लगते हैं, बिकॉज यू आर सो स्वीट हमारे डियर लिसनर्स जो 24/7 कनेक्टेड रहते हैं हमारे रेडियो स्टेशन के साथ। और कहते हैं ना दोस्तों कि जब रेडियो चलता है तो लगता है कि कोई हमसफर, कोई साथी हमारे साथ साथ जरूर है। लाइफ में कभी अकेलापन तो महसूस होता ही नहीं, बिकॉज प्यारा सा रेडियो सेट होता है आपके पास। और यहाँ पर कोशिश यही होती है कि गाने ऐसे हम चलाएं जिन्हें सुनते सुनते आपका मूड सेट हो जाए। एंड एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट चॉइस। जैसे हम कहते हैं कि हर किसी के पास एक फेवरेट सॉन्ग जरूर होता है। कभी कभार कुछ गाने सुनने के बाद लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो कहीं मेरी ही कहानी है, या फिर ये गाना कितना सूट होता है हमारे सिचुएशन के साथ। तभी तो म्यूजिक के साथ एक अलग सा रिश्ता बन जाता है, और हम तो मानते हैं दैट म्यूजिक इज अ थेरेपी, और इस थेरेपी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सैटरडे मॉर्निंग 10:15, मैं हूं परी आपके साथ। इट्स टाइम फॉर योर बॉली ब्रंच। सो वेल फ्रेंड्स, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस रहेगा इंतजार 5499-1294 पर। We have this beautiful gana, Kumar Sanu Alka Yagnik ki awaazi, for everyone jo de rahe hain hamara saath on Radio Masti. Chaliye chal pada ye pyara sa gana aap sabhi ke naam, and wishing you all a bon weekend.

0: Get your tickets at Oteo for Rise with Kung Kumer today.
1: Fin de mois, et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Café, produits du quotidien, entretien, vos essentiels sont là, mais moins chers. Profitez-en pour faire le plein de bonnes affaires pour toute la famille. Pas oublier, Excan to pay te gagne plus points Weave.
2: On est tous Winners.
3: RM2
4: Radio Musti.
3: Copy spicy, copy sweet. Music lovers, ki heartbeat.
5: Tak, tak, Bollywood.
6: Tak, tak, Bollywood.
3: Radio Musti.
7: So well friends, it's 10:28 on the waves of Radio Masti. Good music आपके लिए. आज पोता कृष्ण प्रयाग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. विशेष लेकर आए हैं मामू अवीश, मॉम अविशा, अविनाश, साथ में है आदू, करण, नानी लीना, दौलत परिवार, पेंदे पपाए से भेज रहे हैं उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना आपके नाम, और चाचा महेन हमारा साथ दे रहे हैं. आप ग्रीटिंग्स एंड हैप्पीनेस हमारे सभी लिसनर्स के नाम. विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल टाइम. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू चाचा महेन. बस ऐसे ही अपना प्यार हम तक पहुंचाती रहिए, और इन गानों के साथ हम आपके दिल को बहलाते रहेंगे. अभी के लिए आपके लिए भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज.

वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड और हंसते मुस्कुराते रहिए। साथ ही यहाँ पर हैप्पी सैटरडे विशेस लेकर आई हैं अनीता जी ऑल द वे फ्रॉम फ्लिक एंड फ्लैक। आप भी भेज रही हैं अपना प्यार एंड स्पेशल विशेस, सो थैंक यू। एक गाना, प्यारा सा गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर गुलशन जी हमारा साथ दे रहे हैं, आप यहाँ पर बर्थडे विशेस लेकर आए हैं। अखिल दबीदीन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम पापा अशोक, ममा कीर्ति, साथ में है दादी सत्यंती और अभय अर्णव एंड दादी उमा, दादा विनोद, विवेक, विधि और सभी देवीदीन परिवार विश कर रहे हैं उन्हें अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सैटरडे मॉर्निंग एंड दैट्स योर बॉली ब्रंच, परी का साथ दिन के 11 बजे तक। एंजॉय दिस वन।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: सो वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो में नॉर्मली तो हम अकेले रहते हैं, लेकिन आज हमारा स्टूडियो ब्लेस हो गया है बिकॉज स्टूडियो में आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 60 लोग आए हैं. एंड ये है गोल्ड एज एसोसिएशन फ्रॉम न्यू ग्रोव, जहां पर हम देख रहे हैं हैप्पी हैप्पी फेसेस यहां पर आए हैं हमारे इस रेडियो स्टेशन की शोभा बढ़ाने के लिए. सो बिग हेलो आपको, हाय. देखिए कितने प्यार से हाय कह रहे हैं. यहाँ पर गोल्ड एज एसोसिएशन है और ये तो हम जानते हैं दैट म्यूजिक जो है इट्स अ थेरेपी दोस्तों. जो भी गाने होते हैं हमेशा खास और स्पेशल होते हैं, कभी कभार कुछ गाने एक्स्ट्रा स्पेशल लगते हैं. सभी के लिए जो नेक्स्ट गाना है इसे हम स्पेशली डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर गोल्ड एज एसोसिएशन जो आए हैं ऑल द वे फ्रॉम न्यू ग्रोव हमारे स्टूडियो में. सो वेल फ्रेंड्स, ऐसे ही मौके अगर आपको भी मिले सो डू कम टू MBC हमको विजिट करने के लिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है स्टूडियो में अकेले अकेले काम करना और इतने सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना. इट्स टू डिफरेंट थिंग्स. सो अभी के लिए ये जो गाना है हमारे इन वंडरफुल मेहमानों के नाम जो इस वक्त यहाँ पर आए हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल द लिसनर्स जो दे रहे हैं साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट.
3: टक टक बॉलीवुड.

0: tips powered by Halkuri Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Bolly Brunch, RM2, Radio Masti.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए वक्त हो चला है एक फैशन टिप आपसे हम शेयर करें. वैसे एक नहीं, कुछ फैशन टिप्स आपसे जरूर शेयर करेंगे. जैसे हम हमेशा कहते हैं, वाइट स्नीकर्स हर आउटफिट का बेस्ट फ्रेंड होता है. कैजुअल हो या फिर सेमी फॉर्मल, दे नेवर डिसअपॉइंट. ओवरसाइज आउटफिट पहन रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए एक पीस फिटेड जरूर रखें, स्टाइल भी, कम्फर्ट भी. और एसेसरीज की बात करें, सो एसेसरीज आउटफिट का एक फुल स्टॉप होता है एक क्लासी वॉच या फिर एक सिंपल इयररिंग आपके लुक को इंस्टेंटली एलिवेट कर सकता है. सो छोटे टिप्स लेकिन वेरी यूजफुल. सो स्टे स्टाइलिश एंड स्टे म्यूजिकल राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.

0: देखो।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: And well, friends, with this track, it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते साधना जी हमारा साथ दे रही हैं, सभी grandchildren के नाम dedicate कर रही हैं गाना। जी हाँ, तेजल, गौरव, क्रियान और सबसे छोटा लड्डू गोपाल, लता, श्वेका और सभी जीवन परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, have a wonderful time on Radio Masti. प्रेमिला फहागी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप भी कब से ऐसे हमारा साथ दे रही हैं आप, सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके नाम, और इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। आ रही है पूनम टू कंटिन्यू योर बॉली ब्रांच, यस, कुछ प्यारे गाने आपके लिए वो चलाएंगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हैव अ वंडरफुल टाइम RM2 रेडियो मस्ती के साथ।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ये खबर, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम अपने चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद थे, जहां उन्होंने त्रियुली स्थित रविंद्रनाथ गाबाहन स्टेडियम का पुनः उद्घाटन किया। स्टेडियम के दोबारा खुलने के अवसर पर एक गाला मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन समारोह के दौरान सबसे अधिक ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर गया जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा है। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लंबे समय तक मॉरिशस में लागू रही पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी। प्रधानमंत्री ने मध्यपुर में जारी युद्ध के कारण आयात पर पड़े असर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के चलते आयातित वस्तुएं महंगी हो गई हैं। उनके अनुसार एसटीसी, जो पेट्रोलियम, रसोई गैस, चावल और आटे का आयात करती है, इस युद्ध के कारण 3.2 बिलियन रुपये के कर्ज में पहुंच गई है। और उन्होंने जोर देकर कहा कि इन परिस्थितियों ने मॉरिशस की आर्थिक स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया है। इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार देश में बदलाव लाने और मॉरिशस को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी कि गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए एक अलग संस्थान बनाया जाएगा। ये संस्थान रहने की सुविधा और शिक्षा दोनों देगा और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करेगा। और मंत्रिपरिषद ने नोट किया कि फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी। ज़रूरी चीज़ों पर नई छूट लागू होने के बाद के 3 दिन बाद, जो कि बजट 2026-2027 के परचेसिंग पावर शुल्क के तहत दी गई है, इसके शुरुआती असर दिखने लगे हैं। डिब्बाबंद मछली यानी काना चूना, कॉर्न बीफ, कॉर्न मटन, अनाज, स्पैगेटी, सैनिटरी पैड और बच्चों के सामान जैसी चीज़ें इस छूट में शामिल हैं। सुपरमार्केट में सामान्य से अधिक भीड़ देखी जा रही है, खासकर डिब्बाबंद चूना मछली के सेक्शन में, जो नए सब्सिडी उपाय से प्रभावित है। हालांकि असर मिला जुला है, कुछ उत्पाद सस्ते हुए हैं, लेकिन जो सब्सिडी में शामिल नहीं है उनके दाम बढ़ने से कुल मिलाकर कीमतों में बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। विदेश में वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में फुटबॉल फैंस को जबरदस्त मैच देखने को मिला। अर्जेंटीना ने केप वेद के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज करके अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पोर्चुगल ने क्रोएशिया को 2-1 और स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ, जहां पेनाल्टी शूट आउट में इजिप्ट ने बाजी मार ली। कोलंबिया और गाना के बीच रोमांचक मुकाबला आज सुबह हुआ, जहाँ कोलंबिया ने 1-0 से जीत हासिल की। और आज रात फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के 2 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में पैराग्वे की टक्कर फ्रांस से होगी। दोनों ही मुकाबले क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहद अहम होंगे और फुटबॉल फैंस को रोमांच से भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। NHDC B18 Caen Itié mein NHDC B18 Caen Itié mein 55 saal ke 55 years old ke Shri Lakshman Singh Kawal, Shri लक्ष्मण सिंह कावाल, जो रवीन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर NHDC B18 कौइचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। बंगाली

0: 이 road 무슨 의미 벵갈리 road 무슨 의미 71 살 기 71 years old 기 श्रीमती बिडवंती मीतन श्रीमती बिडवंती मीतन जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी कल रविवार को दिन के दो बजे उनके घर बंगाली रोड बोसोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहता सैंपिया बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रमशन टुमोरो एट 2 PM कॉम्पो रोड नोवेल फ्रांस में अठहत्तर साल के 78 years old के श्री भगवत दनहावो जो सन क्वाफ़र नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सुपहर तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा दनहावो के घर कॉम्पो रोड वेलफॉन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मानियों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रमशन टुडे 3 PM मिलान दो कॉन्फुकोमी मिलान दो कॉन्फुकोमी 76 साल के 76 years old के श्री सादेव गुराज जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री सचिन देव गुराज के घर मिलान दो कॉन्फुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे 3 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: मस्ती ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:09 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वीकेंड का मूड अब धीरे धीरे सेट हो रहा है। कहीं घर के काम चल रहे होंगे, कहीं लंच की तैयारी, और कहीं बस आराम का मजा लिया जा रहा होगा। और बहुत सारे लोग तो अभी इस समय भी फीफा वर्ल्ड कप के स्क्रीन के सामने बैठे होंगे और बोलेंगे चलो मैच चलते रहने दो। मुझसे पहले आपको साथ मिला था परी का, फिर उससे पहले मिला था आपको 5 बजे से लेके दिव्या का, और अब आगे हूँ मैं पूनम आपके साथ। चलिए म्यूजिक के मजे करते हैं, मस्ती के साथ जुड़ते हैं और बॉली ब्रंच में स्टार्ट करते हैं अपना ये प्यारा सा सफर। एंजॉय कीजिए आपके गाने
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Party Brunch RM2 Radio Masti
1: 11:20 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे काम करने को मिलते हैं भाई, वरना ऐसे ही कहाँ पड़े रहेंगे बिना काम के, ज़िंदगी कोई अच्छी तो ना लगेगी। बस इसीलिए हम आपको बोलते हैं आपको हमारे साथ बस जुड़ना है, आपको सिर्फ अपने मैसेजेस भेजने हैं, डेडिकेशन भेजने हैं 5499124 पर। और आपको पता है वीकेंड की सबसे अच्छी बात क्या होती है, थोड़ा ज़्यादा फैमिली टाइम मिलता है, वरना वीकेंड्स पे तो बस सब वीकडेज में तो सब लोग भागते रहते हैं और बहुत सारे काम ऐसे निकल जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कैसे बन जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ जुड़े होंगे जो कह रहे होंगे कि मैंने ये काम खत्म कर दिया, वो काम खत्म कर दिया, पर एकदम से अचानक से कुछ ऐसे काम आ जाएंगे जो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से निकले। तो चलिए इसी तरीके से प्यार में भी ऐसे ही होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना किसी से तो ऐसे ही उनके नाम भी जुड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे साथ जना जी इस समय फ्लैग से जुड़ी हुई हैं जो कि अपनी बेटियों को बहुत ही प्यार करती हैं। उनका नाम है रीमा, जनिता, श्रेष्ठा एंड सिल्विया, यूवी, कृषि एंड सिसरन फैमिली, जिनके लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। साथ में एक प्यारा छोटा सा एसएमएस आया है, बस बोल रहे हैं हेलो रेडियो मस्ती। हेलो जी, आपको भी बहुत बहुत हेलो। और ललित जी जो कि साथ दे रहे हैं यूएसए से, और उनके पूरा 15 लोगों का स्टाफ है जो कि रेडियो मस्ती को बहुत पसंद करता है, कहते हैं कि हमारे को ये बड़ा लगता है कि हम इंडिया में ही हैं और हम पूरी मस्ती करते हैं। थैंक यू सो मच आपके साथ देने के लिए। अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है या आपने कोई ऐसा मैसेज भेजना है जिसका बर्थडे हो या कोई डेडिकेशन आपको भेजनी है या कोई दिल की बात कहनी हो तो आप भेज सकते हैं 5499124 पर।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: आज बस ये देखना है कि आपने काम क्या करने है और काम के साथ साथ में अपने आप किसी और को नहीं देखना कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ और क्या कोई क्या कर रहा है। आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना अपने ऊपर, क्योंकि आज भी है वीकेंड और वीकेंड में सिर्फ आपने अपने जो पूरे वीक में क्या करना है उस चीज़ को देखिए। थोड़ा सा अपने ऊपर ख्याल दीजिए। अगर सैलून जाना है सैलून जा सकते हैं, अगर आपने घर में थोड़ा सा अपने स्किन को प्रिपेयर करना है, प्रेप करना है, तो भी आप कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैनीक्योर कर सकते हैं, पेडिक्योर कर सकते हैं, थोड़ा स्किन को थोड़ा सा धूप में पानी भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ना आपके स्किन को तो अच्छा करती हैं, साथ में हम ये कहते हैं कि दोपहर का टाइम है तो हमेशा थोड़ी सी सलाद लीजिए, थोड़ा सा दही खाइए। ये चीज़ें जो होती हैं दोपहर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और आपकी सेहत को भैया अच्छा बनाती है। अगर बच्चे हैं छोटे तो उसमें थोड़ा सा आप कोई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं दही में, और आप बच्चों को दीजिए। ये आपके लिए हेल्थ को तो अच्छा रखता है, साथ में आपकी गट को भी बहुत अच्छा रखता है। तो चलिए भैया हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे लोग। नेक्स्ट गाना होगा मेधा जी, मनीष एंड श्रिया, आर्यन, नील एंड शीतल, विकी, रतीना एंड नितिन एंड संगीता के नाम जाएगा। और एक प्यारी सी हमारी एक दोस्त है जिनका आज बर्थडे है, आज उनका 30th बर्थडे है, सिस्टर निष्ठा सुकुन, जो कि फोंडूसाग से हैं, और उन्हें विश कर रही हैं, सेंडिंग हर सो मेनी लव एंड विशेज। बेबी दिव्याश जीजू, अमल ब्रदर, केशव, संदेश, यश सिस्टर, प्रियंका, पुपू गत, पुपू लता एंड ऑफ कोर्स माया एंड राजेश, और साथ में सिस्टर दिशा एंड जीजू पुष्कर, जो कि उनको बहुत विश कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि भैया बहुत ही तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, पर एक्साइटेड हम हैं, तो एक्साइटमेंट में बनता तो है भाई पार्टी जाने का, तो जिन्होंने भी पार्टी आज लेनी है ले लो भाई। किरधुर एंड गुरदी एंड रूप नारायण, सुकुन एंड गुग्गा लाल फैमिली, जो कि उन्हें विश कर रही हैं, और स्पेशली नेहा विश कर रही हैं, और उनको कह रही हैं RM2 रेडियो मस्ती है तो हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम मैसेजेस उनके थ्रू भिजवाते हैं। तो भाई आज हम आपके बन चुके हैं कबूतर, तो कबूतर ने आपके लिए एक प्यारा सा गाना चूज कर लिया है, ये है आपके लिए आपका प्यारा सा गाना।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: थकान होती है पूरे दिन की या पूरे वीक की ऐसे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ खुल गुल हो गई। तो चलिए भाई, इस समय जो है लंच आवर का टाइम चल रहा है, तो कहीं पर बिल्कुल आप सर्विंग कर रहे होंगे या हो सकता है आप खाने की तैयारी बस लास्ट मोमेंट पे होगी और थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे होगे, पर फिर भी आप गानों के साथ जुड़े हुए झूम रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्जॉय कर रहे हो और साथ में काम भी साथ साथ चलते रहें तो और क्या चाहिए। भाई हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं बहुत सारे लोग, स्पेशली प्रिया एंड प्रीतम, याहू सुनीता जी, क्रिश जोहरा, समीर यालेश एंड ऑल जो भी अभी इस समय हमको सुन रहे हैं, हम आप सभी को कहेंगे भाई आप अपना जो ये है सैटरडे का मॉर्निंग है या कह लीजिए नून है, इसको दोनों को मिक्स ही कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि बस इसको अच्छा बनाइए, क्योंकि भाई पूरे दिन जिन्होंने भी अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है तो वो अपना प्लान कर सकते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं। बच्चों से पूछो, वाइफ से पूछो या हस्बैंड से पूछो, क्योंकि पूरे दिन तो वो काम पे रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो जेंट्स होते हैं ना उनके साथ ज़्यादा होता है कि भाई मैं बच्चों को भी खुश कर लूँ, वाइफ को भी खुश कर लूँ, मम्मा पापा को भी खुश कर लूँ, तो वो अपनी थकान को भूल जाते हैं। पर हमें वहाँ पर लेडीज़ को लगता है कि अरे भाई अगर थके हैं थोड़ा सा रेस्ट करें, तो क्यों रेस्ट करें, चलो भाई कहीं घुमा लाओ। तो भाई देख लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए सारे मिलजुल के, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और लड़कों को ये तो बहुत ही पसंद आता है। तो अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको दे दो थोड़ा सा टाइम, पर गानों के साथ जुड़े रहिएगा। आरएम टू रेडियो मस्ती, हम यहीं पर हैं आपके साथ, पूरी हमारी टीम हमारी जुड़ी हुई है आपके साथ, और सुबह से लेकर 24 आवर्स हम आपको सिर्फ एंटरटेन करते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए, दोपहर अच्छी जाए, शाम और रात अच्छी जाए। तो इंजॉय कीजिए आपका ये प्यारा सा गाना।
1: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

0: Centre, 99.4.
1: RM2, Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से. टीना, आपको नमस्कार.
4: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम अपने चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद थे, जहां उन्होंने ट्रियोली स्थित रविन्द्रनाथ गावाहन स्टेडियम का पुनः उद्घाटन किया. स्टेडियम के दोबारा खुलने के अवसर पर एक गाला मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार के मुद्दे पर विस्तार से बात की. उन्होंने एक बार फिर कहा कि लंबे समय तक मॉरिशस में लागू रही पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी. इस बार उन्होंने 2015 में IMF की एक रिपोर्ट का हवाला दिया. उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि यही व्यवस्था जारी रहती तो 2050 तक पेंशन पर होने वाला खर्च देश के GDP का 8% हो जाता. लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार IMF का यह अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि मॉरिशस में पेंशन पर होने वाला खर्च आज ही GDP के 8% के आंकड़े को पार कर चुका है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण आयात पर पड़े असर का भी उल्लेख किया. मॉरिशस प्रिजन सर्विस ने जेलों के अंदर सिगरेट और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है. जेल कमिश्नर राशिद अली बेकन ने कहा कि अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल पाया जाता है तो उसे अपने कर्मों का जवाब देना होगा. उन्होंने जेलों में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार तलाशी और नियंत्रण अभियान जारी रखने की बात दोहराई. साधारण वीडियो अब बड़ी कमाई का जरिया बन सकते हैं. सोशल मीडिया आज कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक असली इनकम का स्रोत बन चुका है. इस तेज़ी से बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए सरकार इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नई टैक्स संबंधी व्यवस्थाएं लागू कर रही है. और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातोला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को एक सप्ताह की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे हैं. ट्रंप का ये बयान तेहरान के ग्रान मसोला में खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों के शुरू होने के बाद आया है. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई. थोड़ी देर में शोक समाचार. Allez bambou, montagne au rime, allez bambou, montagne au rime. Et qui a six salles qui est tivanieuse au quai, Shri Rambaran Bikari, Shri Rambaran Bikari, जो गुरु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई. उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर आले बांबू मोंटायोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 4 PM. NHDC B18 कांवीचे में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मण सिंह कावाल जो रवीन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई. उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर NHDC B18 कांवीचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. कांपो रोड नवेल फ्रांस में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री भगवत धनहाऊ जो सुंद क्वाफेयर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई. उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा धनहाऊ के घर कांपो रोड नवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रमिशन टुडे एट 3 PM. मिलान 2 कांफुकोमे 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री सादेव गुहा जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई. उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री सचिन देव गुहा के घर मिलान 2 कांफुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
0: NBC Play, NBC Radio.tv.
1: Love Lounge. RM2.
0: Love Lounge.

0: Love Lounge. प्यार, इश्क, मोहब्बत. Love Lounge.
1: 12:09 हो चुके हैं दोस्तों. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. हम सब जुड़े हुए हैं आपके साथ सुबह से लेके रात तक. तो इस समय है लव लाउंज का प्रोग्राम. यहाँ पर हम बात करते हैं बस थोड़े से प्यार और रिश्तों की. तो प्यार सिर्फ किसी एक रिश्ते का नाम नहीं है, एक खूबसूरत एहसास का नाम है जो कभी प्यार में, कभी दोस्तों में और कभी किसी खास की मुस्कान में मिल जाता है. तो अगले दो घंटे प्यार भरे गानों के साथ आप सबका स्वागत है आपके ही प्रोग्राम लव लाउंज में. मैं हूँ आपके साथ पूनम. इन्जॉय कीजिएगा अपने गानों को और हमारे साथ रहिए. अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो भेज सकते हैं 4549912 पर.
0: लव लाउंज
2: RM2
0: लव लाउंज.

0: Love Lounge. Yeah, इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: 12:21 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना। तो चलिए भाई, ये जो टाइम होता है ना दोपहर का, इसमें थोड़ी सी तो थकान हो जाती है, पर हम आपको ये कहेंगे कि अगर आप सुबह से उठे हुए हैं तो थोड़ा सा नैप लेना ज़रूरी है, थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी है और थोड़े से ऐसे रोमांटिक गानों के साथ भी जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको उन यादों में ले जाते हैं जो यादें आपने कहीं ना कहीं छुपाई होती है। और जब ये यादें आपके साथ चलती हैं और साथ में चलते हैं रोमांटिक गाने, तो फिर बात ही क्या। तो चलिए भाई, इन गानों के साथ में और थोड़ा सा मूड बदलते हैं और जुड़ते हैं कुछ ऐसे गानों के साथ जो आपकी थकान को तो मिटाएंगे और आपको बनाएंगे आपकी जिंदगी की नई यादें।
0: Love Lounge.
2: RM2.
0: Love Lounge.

0: Love Lounge, yeah, इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: 12:29 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम लव लाउंज में, जहां पे बात होती है इश्क और मोहब्बत की. तो भाई आज बहुत ही प्यारा दिन है एक परिवार के लिए, कह सकते हैं दो परिवार के लिए. आज विकास और निशा की शादी है. आज आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत

0: खूबसूरत दिन है। आपके परिवार और दोस्तों की तरफ से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। उनका परिवार उन्हें कह रहा है कि तुम दोनों ही बहुत समझदार हो और उम्मीद है कि तुम अपनी इस समझदारी से अपनी ज़िंदगी और अपनी शादी और अपने विवाह को बहुत अच्छे से निभाओगे। तो उनके साथ में वो कह रहे हैं कि क्या आपके पास विवाह मूवी का एक प्यारा सॉन्ग है, प्लीज़ चला दीजिए। तो हम चलाने जा रहे हैं उन सभी कपल्स के नाम पे जिनकी आज शादी है या पिछले हफ्ते शादी हुई या रिसेंटली वो एक रिश्ते में बंधे हैं। तो एंजॉय कीजिए अपने ये गाने।
1: Love Lounge. RM2. Love Lounge.

0: 2
1: रेडियो मस्ती
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
3: टक टक बॉलीवुड

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: 12:42 हो चुके हैं दोस्तों, ये टाइम है थोड़ा सा आलस का और हमने आलस आने नहीं देना क्योंकि हमें पता है कि अगर आलस आ गया तो आपके सारे काम रुक जाएंगे और फिर अगला हफ्ता आपको थोड़ा सा बोरियत भी लगेगी और बहुत ही मुश्किल वाला हो जाएगा क्योंकि आपको बहुत सारे कामों को पेंडिंग छोड़ना पड़ेगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आपको आपके गानों के साथ में थोड़ा सा अलर्ट रखने वाले हैं और हम आपको कहने वाले हैं कि अगर आपको भी किसी की याद आ रही है तो यादों को आने दो, यादों को बनने दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो लोग यादों में रहते हैं। तो चलिए भाई, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय, तो उनके भी एक दो मैसेजेस ले लेते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग जाएगा हरदीप जी को, वंशिका, कुशाल, निर्मला जी, कमलेश रानी जी, हसमुख चाचा, साथ में उनकी पत्नी के लिए उर्मिला जी जो साथ दे रही हैं, और साथ में पूजा जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि मैं सभी को बहुत प्यार करती हूं, पर जब मुझे कोई याद करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात भी होती है सच में, कभी कभी हम किसी को याद तो करते हैं पर उसको मैसेज नहीं करते। अगर आपके पास भी थोड़ा सा टाइम है तो ज़रूर उस इंसान को ज़रूर मैसेज कीजिएगा जिसकी याद आपको इस समय आ रही है। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने और साथ में बने रहिए रेडियो मस्ती के साथ, और मैं हूँ आपके साथ आज पूनम।
0: Love Lounge, RM2 Love Lounge।

0: सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं सुमायरा अकबर अली से संक्षिप्त समाचार. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार रादाब. फ्रो मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के दूसरे लीडरों के साथ प्रेस को मुखातिब करते हुए पुल बेरांजे ने कहा कि फाइनेंस बिल का कम आमदनी वाले परिवारों और

0: छोटे एवं मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ने वाला है। पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मॉरिशस स्टैग्नेंट स्थिति में ही रहेगा। 3 दिनों से कई पैदावारों पर नई सब्सिडियां लागू हैं। परचेसिंग पावर शील्ड की घोषणा बजट में की गई। इनमें मकारोनी, सीरियल, कॉर्न, मटन आदि शामिल हैं। बड़े सुपरमार्केटों में लोगों को नए दामों में ये पैदावारें खरीदने का मौका मिल रहा है। फ्रांस में उबर प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है। सन 2025 से एक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया था जिस पर मुकदमा चलाया गया। टैक्सी पारिजिया की जगह उबर पारिजिया नाम का इस्तेमाल करने पर उद्योग को 50,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ेगा। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में फुटबॉल फैंस को जबरदस्त मैच देखने को मिला। अर्जेंटीना ने काबू वेद के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल करके अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 और स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। जानकी रोड पुत्रदो विलाज में 78 साल की 78 years old श्रीमती बृहस्पति राम, श्रीमती बृहस्पति राम जो सत्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह 10 बजे इनकी बेटी सीता झुमक के घर जानकी रोड पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। अविनी जीव नारायण पालमा कथोबोन में 59 साल के 59 years old श्री सूर्यदत्त लखन, श्री सूर्यदत्त लखन जो अशोक औपौत्या के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी पत्नी पूनम लखन के घर अविनी जीव नारायण पालमा कथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Love Lounge.
3: RM2.
2: Love Lounge.

0: Love Lounge. Yeah, इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: 1:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम लव लाउंज के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस समय अगर कोई आपके साथ ऐसा खास इंसान है जिसके साथ में बैकग्राउंड पे तो हमारा RM2 रेडियो मिस्टी का प्रोग्राम चल रहा है और वहां प्यारे प्यारे से गाने वो चल रहे हैं जो कि दिल को जोड़ देते हैं, तो भाई अगर आपके सामने वो इंसान बैठा हुआ है जिसको देख के आपका दिल धड़कता है या स्माइल निकल जाती है, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए और उसको देख कर बस एक छोटी सी स्माइल कर दीजिए। आपको तो अच्छा लगेगा ही और दूसरे इंसान को भी एहसास होगा कि भैया लव कितना इंपॉर्टेंट है और लव क्या से क्या कर जाता है। तो यही चीज़ें हैं जो हमको एक साथ जोड़ती हैं और इस समय हमारे साथ सायरम बानो जी और अब्दुल जुड़े हैं और अब्दुल एक ही बात कहना चाहते हैं कि भाई ये प्यारा सा प्रोग्राम सुन के तो दिल खुश हो गया और मैं रोक नहीं पाया अपने आप को और मैसेज कर दिया और मैं यही कहता हूँ सायरम बानो को कि हमेशा मेरे साथ रहो। सो नाइस ब्यूटीफुल मैसेज अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लैग से साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम को। और वंशिका वैभव सुरेन एंड साजन जी भी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर घर पर ये गाने चल रहे हैं और हमारा मूड बहुत अच्छा सा रिफ्रेश सा हो गया है, एहसास ही नहीं हो रहा कि सुबह से और कल से कितने काम किए थे। तो बस अच्छी बात है, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज को भेजने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि आप रिफ्रेश से हो गए हैं। तो चलिए भाई एक और बहुत प्यारा सा मैसेज है जो कि पूजा की तरफ से है और वो कह रही हैं कि मैं अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ और ये गाने सुन रही हूँ, दिल तो खुश हो रहा है और साथ में किसी को मिस भी कर रही हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगी जिनको मिस कर रहे हैं उनको बस मिस मत कीजिए, उनको एक मैसेज कीजिए और उन्हें बताइए कि आपके दिल में क्या है उस इंसान के लिए जिसके लिए कई बार हम बोल नहीं पाते, पर फिर भी अगर आपको ना मैसेज करने का दिल करे कोई बात नहीं, पर फिर भी उसे याद करें वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए गानों के साथ चलते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं क्योंकि 2 घंटे तो कहां से कहां निकल गए पता ही नहीं चला है। तो ये गाने आप सबके लिए
0: Love Lounge.
2: RM2.
0: Love Lounge.

0: Love Lounge. Dear Ishq Mohabbat Love Lounge.
1: 1:18 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम लव लाउंज के साथ। और यहाँ पर भाई दोपहर की तो बात चल रही है, पर बात है अपने ख्याल रखने की। तो कई बार इंसान दूसरों का ख्याल तो बहुत रखता है, पर जब अपनी बात आती है तो अपने आप को भूल जाता है। तो बिल्कुल अपने आप को मत भूलिए, अपने आप को प्रायोरिटीज़ में रखिए। ये नहीं कि सबके बारे में सोचते रहो और ये सोचते रहो कि उसके लिए मुझे क्या करना है या उसके लिए मुझे क्या करना है या उसके 10 साल आगे क्या करना है। पर अगर आप आज अपना सोच रहे हैं तो उनका तो सवरेगा ही सवरेगा, बट आपका भी साथ जो होगा उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ में आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से जब आपके मैसेजेस आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक मैसेज बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा मैसेज है। आज है सृष्टि का बर्थडे और उसकी पूरी फैमिली उसको विश कर रही है और उन्हें यही कह रही है, जितनी प्यारी तुम आज तक रही हो हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा खुश रहना। ज़िंदगी पूरी पड़ी है पढ़ने के लिए, अपने आप के लिए, शॉपिंग करने के लिए, पर सबसे अच्छी बात है जब तुम अपना ख्याल रखती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो ब्यूटीफुल मैसेज। हम भी आपको विश करते हैं सृष्टि के आपके बर्थडे पे आपको बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ साथ आपको हमारी तरफ से पूरी एमबीसी की टीम की तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं। और साथ में आज बर्थडे है प्रिंसेस नास्तिया बुदिन जी का, जो कि रोड्रिक्स में रहते हैं। डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा एंड अपादू फैमिली जो कि रोशना में है उन्हें विश कर रहे हैं और उन्हें बस इतना ही कह रहे हैं, तुम भी बहुत ही प्यारी हो, अच्छी बच्ची हो, हमेशा ऐसे खुश रहो और हमारी तरफ से जो गिफ्ट बनता है हम ज़रूर तुम्हें देंगे। तो क्या बात है भाई, जब गिफ्ट की बात होती है तो हमें तो अच्छा ही लगता है, बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन्जॉय कीजिए अपने गाने, हम तो यही गिफ्ट दे सकते हैं आपके लिए कि हम प्यारे प्यारे से गाने आपके लिए लाते हैं। इन्जॉय कीजिए अपना ये प्यारा सा गाना जो कि आपके पसंद का है।
0: Love Lounge. RM2. Love Lounge.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: 1:31 हो चुका है दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम लव लाउंज के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम इस समय. और 1:32 तो हुआ है बट जैसे कहते हैं ना थर्ड आवर का भी आधा घंटा निकल चुका है और उसके अंदर हम थोड़े से गानों के साथ और आपके साथ रहेंगे बट ये आपका मूड बना के रखेंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपकी टायर्डनेस कहाँ भाग गई और आप रेडी हो गए अपने दूसरे आवर्स के लिए या जो हमारे प्रोग्राम्स हो या आपके अपने घर के जो काम होंगे उनके लिए तैयार रहेंगे. तो चलिए भाई बहुत सारे मैसेजेस के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो इस समय 2-3 मैसेज ले लेते हैं हम साथ साथ. स्पेशल फ्रेंड नीतू जो कि काथरोबोन से रहने वाली है उनकी फैमिली को विश कर रहे हैं सेफ हेल्थ एंड गुड हैप्पीनेस के लिए. राजीव जी जो कि सैपियर से हैं और उनको बस यही कह रहे हैं कि ये गाना जो चलेगा आपके लिए होगा तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं. ललित जी USA से जुड़े हुए हैं साथ और अपनी वाइफ के लिए एक गाना सुनाना चाहते हैं और अपनी वाइफ को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और ये एहसास मुझे खुद बहुत टाइम के बाद हुआ है. तो ये भी बहुत अच्छी बात है एहसास तो हुआ. बर्थडे है बर्थडे विशेज हैं नारा एंड मनीष के लिए जो कि मनीष खूबलाल जी के लिए आई थिंक सो दोनों का ही बर्थडे है तो हम भी आपको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे. जब आप अपनी बर्थडे विशेज सबसे ले रहे हो तो हमारे को भी ऐड कीजिएगा क्योंकि MBC आपके साथ हर समय आपके साथ चलता है. साथ में ही रोशनी जी भी साथ दे रही हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं वो भी हम गाना लेंगे पर आपको इतना बोलेंगे कि जो आपकी DP में पिक्चर है बहुत ही खूबसूरत है. थैंक यू आपकी मैसेजेस के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो एंजॉय कीजिए अपने गाने.
0: Love Lounge.
2: RM2.
0: Love Lounge.

0: Love Lounge. Yeah, इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: 1:45 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम लव लाउंज के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। कहते हैं जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती पर हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर छोड़कर जाती है। बस नज़र ऐसी चाहिए जो उसे देख सके क्योंकि कई बार जिस पल को देखने के लिए हमारी आंखें तरसती है वो हमारे सामने ही होता है और हमें एहसास तक नहीं होता। तो सजदा उस इंसान का होना चाहिए जो हमें बहुत प्यार करता है और जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है हमारी एक प्यारी सी दोस्त जिसका नाम है क्या वो अपने हस्बैंड विक्रम जी के लिए इस टाइम एक गाना सुनाना चाहती हैं और उनको कह रही हैं, नाम तो उन्होंने अपना नहीं लिखा

0: बट अपने हस्बैंड का ज़रूर लिखा है और कह रही हैं कि पक्का वो इस समय ज़रूर प्रोग्राम को सुन रहे होंगे क्योंकि वो इस समय ड्राइव कर रहे हैं और वो ड्राइव करते हुए RM2 रेडियो मस्ती में जो लव लाउंज प्रोग्राम है उसको ज़रूर सुनते हैं। तो हम भी आपको विक्रम जी यही कहेंगे, थैंक यू सो मच आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, बट आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है, वो कह रही हैं कि यू आर वेरी स्पेशल पर्सन इन हर लाइफ। तो हम भी आपको कहेंगे बस ऐसे ही आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, हमेशा खुश रहे। अगला गाना आपके नाम।
1: Love Lounge.
2: RM2.
1: Love Lounge.

0: Love Lounge. प्यार, इश्क, मोहब्बत. Love Lounge.
1: एक बजकर 55 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब लेने का वक्त है इजाज़त. काम हो या आराम हो या सफ़र, अपना मूड हमेशा अच्छा रखिएगा. मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे नए अंदाज और नए गानों के साथ. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. बाय बाय, टेक केयर. बट मेरे बाद आप जुड़ पाएंगे प्लग इन प्ले में. संजय जी का साथ मिलेगा आपको. इन्जॉय कीजिएगा उनके साथ. टेक केयर. बाय बाय.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन के दो बज रहे हैं। सुनते समाचार सुमेरा जी के साथ नमस्कार आदाब।
6: नमस्कार आदाब। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता विश्व सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में करीब 900 सहकारिता संगठन हैं जो मुल्क की अर्थनीति के अहम सेक्टरों में काबिल-ए-दाद योगदान दे रहे हैं। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए कई पहल ली गई हैं, खास तौर पर नई नस्ल को सहकारिता क्षेत्र में कटिबद्ध होने में और हौसला देने के लिए। नौजवानों से सहकारिता क्षेत्र का शोला जगाए रखने की उम्मीद है ताकि सॉलिडेरिटी और समर्पण

0: धन की बुनियाद पर खड़े किए गए आर्थिक मॉडल में नवीनता लाकर इसे आगे बढ़ाया जाए। कल कैबिनेट की बैठक में ये नोट लिया गया कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए एक आर्थिक कमेटी की अध्यक्षता संभालेंगे। समिति की पहली बैठक बुध 8 जुलाई को लगाई जाएगी। पुराने जज विनोद बुलेल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की अध्यक्षता संभालेंगे। पूर्वाध्यक्षा की हैसियत से आफुंग च्वी युंग चोंग ये जिम्मेदारी संभालेंगी। आयोग के दूसरे मेंबरान यानी लामुंशी राम, सत्यजीत बुलेल, डॉक्टर अमर रूपानंद महादेव, जोनाथन रावत, मीरान मितोबान, डॉक्टर अमीना जहांगीर चोजू, जुअल एडवार, अनसूफी जुलियन और दानिशा सोनम हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। प्रोग्रेसिस के दूसरे लीडरों के साथ प्रेस से मुखातिब होते हुए पुलभेरोंजे ने कहा कि फाइनेंस बिल का कम आमदनी वाले परिवारों और छोटे एवं मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव होंगे। पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मॉरिशस स्टैग्नेंट स्थिति में ही रहेगा। विदेश में फ्रांस में उबर प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई है। सन 2025 से एक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया था जिस पर मुकदमा चलाया गया। टैक्सी पैरिजियन की जगह उबेर टैक पैरिजियन नाम का इस्तेमाल करने पर उद्योग को 50,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कंफुकु में 76 साल के 76 years old श्री सदेव गुराई जो रमेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थे आज सुपहर तीन बजे इनके बेटे सचिन देव गुहाई के घर कंफुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टू द एट 3 PM। जीके स्ट्रीट ओकुले में 58 साल की 58 years old श्रीमती यशवंती तिलक पैदाइशी नाम गोपी जो वृंदा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर तीन बजे इनके घर जीके स्ट्रीट ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेगारा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। सिमेट्री रोड प्लान मानियों में 36 साल के 36 years old श्री वितीश बुदन जो निश्ले के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी सोमवार को साढ़े चार बजे इनकी माँ संध्या राबूजी के घर सिमेट्री रोड प्लानमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन ऑन मंडे एट 4:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: न जाने वाले पल की फिक्र कीजिए, न आने वाले पल का टेंशन लीजिए। अजी जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो है अभी वाला पल जो आप जी रहे हैं। सबको संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। दो घंटे के लिए हम आपके साथ रहेंगे एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय। आई एम श्योर शहर की लड़की हो या गांव का छोरा हो, be prepared to enjoy 2 hours of mesmerizing music.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Allons chez Loulou. Chez Loulou, Mojo Peach Halves, 820 grammes à 49,50 €. Omega, lait entier en poudre de 1 kg à 199,50 € et recevez un jus La Vie 200 ml en cadeau. Lavage Kiri, 32 portions à 122,50 €.
3: Loulou Hypermarché.

0: plug and play.
1: RM2.
2: आप हमसे सहमत होंगे डियर लिसनर्स कि जब भी हम ये गाना सुनते हैं और जब भी ये फिल्म देखने को मिलती हैं या तो इस फिल्म के डांस सीक्वेंस या सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं, यू फील द मैजिक ऑफ द डायरेक्टर करण जौहर. एक्टर वही, एक्ट्रेस वही, लेकिन किस तरह से फिल्म ऐसी बनाते हैं दैट इज कैचेस नॉट ओनली योर टेंशन, योर विजुअल, बट इवन योर हार्ट, योर इमोशंस. सलाम करते हैं, हम सलाम करते हैं ऑल दीज ग्रेट डायरेक्टर्स who have mesmerized people since decades and decades in filmmaking. बजकर 32 मिनट हुए, you're listening to Plug and Play संजय के साथ. Thank you for your messages. आरती जी ने हमें याद किया. आरती जी ने अगले गाने की फरमाइश की है अपने little daughter आरवी के लिए. She's free today. Wow, beautiful. Happy birthday to you, आरवी. Papa Kamlesh, Mama, brother Jaish, and sister Pari, Nana, Nani, Dada, Dani, Mamu, Mami, everyone which is wishing you, RV, a very happy birthday. Saati saati agla gana jata hai, especially Neetu ji ke liye Palma Road Katrabon se hamara saath nibhari hai. Wishing her good health and happiness here, Rajiv ji ke wajah se from St. Pierre.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: पूरी जिंदगी हम काम करते रहते हैं, पूरी जिंदगी हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना उत्तरदायित्व निभाते रहते हैं। There's nothing like being together, having a time जहाँ पर हम सब एकत्र होकर without any tension, without any thoughts behind the mind, हम अच्छे से जी पाए, relate, connect and laugh together. इससे बेहतर community living हो ही नहीं सकता है. And thank you for joining me in this journey जहाँ पर you can talk with me, you can send me your messages, you can say yes हमें ये गाना अच्छा लगता है, हमें इस टीम को देखना अच्छा लगता है. Yes team, football team, हर एक व्यक्ति football अपने हिसाब से देखता है. कोई football देखता है तो कोई अपने देश के लिए देखता है, कोई अफ्रीका देखता है तो कोई यूरोप देखता है तो कोई इंग्लैंड देखता है. अगर हम आपसे पूछें हु इज दैट वन प्लेयर दैट यू लाइक वॉचिंग, आप हमें लिख भेजें हु इज दैट वन प्लेयर दैट यू लाइक वॉचिंग. हम फुटबॉल देखना पसंद करते हैं क्योंकि फुटबॉल से पहले जो नेशनल एंथम चलता है और किस तरह से लोग खड़े होकर अपने देश का राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं, गाते हैं. For that, I love watching football on NBC Play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Thank you, dear listeners, for responding. अभी कुछ समय पहले हमने आपसे पूछा, whom do you like watching play football? ललित जी ने कहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द बेस्ट. Agree. लगता है कि आप या तो पोर्चुगल के एक बड़े फैन हैं या तो यूनाइटेड के बड़े फैन हैं. But really, Cristiano Ronaldo is really good. किसी और ने कहा, Lionel Messi is so good. Yes, हम भी ये मानते हैं. एक ने कहा, उसने कहा कि उनको हैरी केन दिखना बहुत ही अच्छा लगता है. हम भी आपसे सहमत हैं, हैरी केन. और हैरी केन का दूसरा गोल अगेंस्ट कोंगो, वाओ, जस्ट वाओ. बहुत से लोग मानते हैं कि इट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्स ऑफ द होल टूर्नामेंट सो फार, हैरी केन. आप भी बताएं.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: सुबह के 3 बज रहे हैं. सुबह समाचार सुमेरा के साथ नमस्कार आदाब.
6: नमस्कार आदाब. मुर्शिद में पहली बार एक नया पेसमेकर इंप्लांट किया गया. जीटू अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेस मेकर बकामयाबी डाला गया. ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजिन ने मोशन कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की. मरीजा की उम्र 87 साल की है और उन्होंने पहले 2 बार पेस मेकर लगाया. इस दफ़ा इस लीडलेस पेस मेकर से कॉम्प्लिकेशन के खतरे कम हैं. पहले इस तरह के ऑपरेशन के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था. यहाँ इस सर्जरी के बाद मुर्शिद को महारत हासिल हुई है. आज सुबह कंपनी गार्डन पोटली में सहकारिता स्मारक के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की गतिविधि की गई. इस साल का विषय सहकारिता दुनिया में शांति की सेवा में. आज का दिन एक ऐसा मौका रहा जो देश की अर्थनीति में सहकारिता तंजीमों के किरदार और गरीबी के खिलाफ संघर्ष पर रोशनी डालता है. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम फाइनेंस बिल

0: को अंतिम रूप देने के लिए एक आर्थिक कमेटी की अध्यक्षता संभालेंगे। समिति की पहली बैठक बुध 8 जुलाई को लगाई जाएगी। कल कैबिनेट की बैठक में ये नोट लिया गया। विदेश में दक्षिण यूरोप में जंगलों में आग के खतरे बढ़ रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से दक्षिण में कई जगहों पर आग लगी है, खासतौर पर फ्रांस में। पुर्तगाल में गर्मी की वजह से पेश आग में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी जा रही है। स्पेन में भी हालत बहुत गंभीर है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कैमेलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंट सैबल में 84 साल की 84 years old श्रीमती परमा लंगादी पैम्बेन, श्रीमती परमा लंगादी पैम्बेन जो विनोदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे मुरा फ्यूनरल पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोइले वाले देवप्रत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सावान रोड नोवेल फ्रांस में 44 साल की 44 years old श्रीमती सोमा देवी बोला, श्रीमती सोमा देवी बोला पैदाइशी नाम तिलक जो सोनिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 12 बजे इनके घर सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Plug and play. RM2. Plug and play.

0: Plug and Play
1: RM2.
2: नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ प्लग एंड प्ले संजय के साथ 4th ऑफ जुलाई ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर 2026 एंड द फर्स्ट वेरी फर्स्ट वीकेंड में जहां पर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती थैंक यू और पहले घंटे में हमने आपसे पूछा हु इज दैट वन प्लेयर यू लव वॉचिंग इन द वर्ल्ड कप किसी ने कहा लियोनेल मेसी किसी ने कहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसी और ने कहा हैरी केन और यहाँ पर मैसेज आया है फिदू जी की ओर से फ्रॉम फ्रांस जी आई लव वॉचिंग फुटबॉल दैट्स ग्रेट फिदू जी व्हेन इट्स वर्ल्ड कप ओ यूरोपियन कप ओ गुड और लिखते हैं कि नेचुरली आई एम फॉर फ्रांस व्हिच इज डूइंग वेरी वेल नाउ होप इट कंटिन्यूज हम भी यही आशा करते हैं एंड आई सपोज जिन्हें आप सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं इन द फ्रांस टीम इट शुड बी एम्बापे But the whole Francis team is playing so, so well. Ye, sabhi log mante hain. And France is one of les prétendants, jaise kehte hain, au titre suprême. So thank you, Fidelity, for your message. Keep on enjoying football and keep on enjoying music on Radio Musti.

0: plug and play.
1: RM2.
2: जी हाँ, संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मसीहा अप टिल 4 पीएम. वी हैव गॉट 44 मिनट्स टू गो टुगेदर. और बेशक कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस ऑन 5499294 कंसर्निंग द प्लेयर, द फुटबॉल प्लेयर यू लव वाचिंग इस वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत. अभी हम लेते हैं आपके मैसेजेस, बर्थडे मैसेजेस. वीना जगे सर जी जो बेलवी मुगल से हमारे साथ निभा रही हैं, विशिंग

very happy birthday to Bhumi ji, and equally for Yana, equally for the whole family, khaskar Veena grandmama ke liye. वो लिखते हैं कि दोनों सदा गुस्से में रहते हैं. I do hope कि इस बर्थडे के मौके पर गुस्सा ठुक देंगी. And you're going to laugh together and enjoy this special day of yours. Good evening, Sanji. Please play next song for Abdul and Sarah Banu working right now at Lamichi Filling Station. Yes, of course, क्यों नहीं. आशा जानू जी हमारा साथ निभा रही हैं. विशिंग ऑल लिसनर्स अ हैप्पी ग्रेट सैटरडे. मामा कुमारी निफ्यू शुभम ऋषभ एंड दीदी आरती की ओर से, जीजू राज की ओर से. फाइन एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू दादी सुभावती बंदन फ्रॉम ब्रिजे वेजे. आज 92 साल की हो रही हैं. वाव. और शुभकामनाएं फ्रॉम ऑल हर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड द होल बंदन फैमिली. So, जितने भी लोग आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड हैप्पी बर्थडे टू कृष्ण प्रयाग, पोते कृष्ण प्रयाग. हैप्पी बर्थडे विशेस फ्रॉम मामू अविस, मॉम अविसा, अविनाश आदुकरण, नानी लीना एंड दौलत फैमिली फ्रॉम प्लेंदे पपाई.

0: tag and play.
1: RM2.
2: Shukriya, meherbani karam to all those connected to Radio Masti on this Saturday, 4th of July. Mushes me, sham ke 3:25 hue hain. And time to wish a very happy birthday, Mom Shinaz ko. Mubarakbad from the whole family, especially from Rehan, Sanya, Reyaz, and the whole ek Bangali family of Rivia Jurampo. Hamari aur se bhi, Radio Masti team ki aur se bhi. आपको जन्मदिन मुबारक हो, वेरी हैप्पी बर्थडे अम्मी जान। चलिए अगली मैसेज लेते हैं, और ये मैसेज आया है, सभी लोग मेसी की बात कर रहे हैं, सभी लोग रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, हैरी केन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से अगर एक गोलकीपर हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, इट इज़ वोजिन्हा। Yes, Vuzina, full name, Zosima Jozo, José Evaro Dias, the Cape Verdean professional footballer, known for his role as a goalkeeper for the Cape Verde national team, born 3rd June 1986. He's a very young man, and people say that before coming to football, he was an electrician. और आज पूरी दुनिया उसको सलाम कर रही है for his performance against Spain, जहां पर उसने स्पेन को मुर्गा बनाकर रखा, and yesterday against Lionel Messi and Argentina.

0: Berg and play.
1: RM2.
2: हम सब जानते हैं कि हर चार साल के बाद वर्ल्ड कप आता है एंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मीडिया वाओ जब तीन देशों में इतने सारे मैचेस खेले जा रहे हैं आई थिंक 107 सो इतने सारे मैचेस जो खेले जा रहे हैं 16 डिफरेंट वेन्यूज में एंड लॉजिस्टिक्स के तौर पर जब हम देखते हैं और किस तरह से द प्रोडक्शन टीम काम कर रहे हैं बिफोर द मैचेस ड्यूरिंग द मैचेस ड्यूरिंग द ब्रेक और मैच के बाद भी जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं माय गुडनेस बिग शापू जितने भी टीम्स वहां पर मौजूद हैं खेलने के लिए और जितने भी टीम्स मौजूद हैं इस इवेंट को हम तक पहुंचाने के लिए इन सिचुएशन कि हम जहां पर भी होंगे वी कैन लिव द वर्ल्ड कप थ्रू एमबीसी प्ले चले लेते हैं ये अगला मैसेज उमा जी की ओर से फ्रॉम स्विट्जरलैंड लिखते हैं उमा जी जो स्विट्जरलैंड से हमेशा हमारा साथ निभाते हैं ऑन रेडियो मस्ती आई सपोर्ट माई टीम सो आई सपोज शी इज सपोर्टिंग स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड विच हैज क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड और जो खेलने वाली हैं अगेंस्ट कोलंबिया That will be on a Tuesday 7th. I love watching the World Cup football and for me it's like my summer holidays. And her best player is the one and only Lionel Messi. Quite fair play. Halanki hame bhi Switzerland mein ek khiladi hai Zaka, the captain Zaka. My goodness, he is so good. So Uma ji saath nibhane ke liye bahut bahut shukriya. This one goes for you.

अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम आपसे पूछें कि द अर्लीस्ट वर्ल्ड कप जो आपको याद है वो कौन सी है 1982 जो जर्मनी में खेली गई और जिसमें इटली की फाइनली जीत हुई विच बीट जर्मनी 3-1 और उसके बाद डिएगो माराडोना 1986 एंड द हैंड ऑफ गॉड

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Yes, dear listeners, हमारे जाने के समय आ गए हैं क्योंकि हंसनी आ चुकी हैं to take up the hot seat हमसे and I'm sure you're going to love her selection as well. जितना प्यार आपने हमें दिया, जितनी इज्जत आपने हमें दी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. We had a good sharing of music के साथ साथ स्पोर्ट्स की बातें हुई, फुटबॉल की बातें हुई, आपके चाहते खिलाड़ी की बात हुई. So, आप अपना ख्याल रखें, keep on watching football on MBC Play और साथ ही साथ हमारे अगली मुलाकात का इंतजार करें कल शाम को 4 बजे. Take care, थोड़ी देर में मिलते हैं on Radio Manoranjan for a quiz program. Bye bye, love you all.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Wish you all a very good afternoon. Check your time. Aur sham ke 4 baje hain. Aaiye sunte hain sankshipt samachar. Sumehra ke saath aapko namaskar aur aadab.
6: नमस्कार राधा. मुर्शिद में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया जिद्दू अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर कामयाबी के साथ डाला गया. ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजन ने मुर्शिद कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की. मरीजा की उम्र 87 साल की है और उन्होंने पहले भी 2 बार पेसमेकर लगाया है. इस दफा इस लीड लेस पेसमेकर से कॉम्प्लिकेशन के खतरे कम हैं. पहले इस तरह के ऑपरेशन के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था. यहां इस सर्जरी के बाद मुर्शिद को महारत हासिल हुई है. आज सुबह कंपनी गार्डन पोर्टली में सहकारिता स्मारक के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की गतिविधि की गई. इस साल का विषय सहकारिता दुनिया में शांति की सेवा में. आज का दिन एक ऐसा मौका रहा जो देश की अर्थनीति में सहकारिता तंजीमों के किरदार और गरीबी के खिलाफ संघर्ष पर रोशनी डालता है. पुराने जज विनोद बुलेल कॉन्स्टिट्यूशन और रिव्यू कमीशन की अध्यक्षता संभालेंगे और पूर्व अध्यक्ष की हैसियत से आफुमचुई योंगचोंग ये जिम्मेदारी संभालेंगे. कल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. विदेश में दक्षिणी यूरोप में जंगलों में आग के खतरे बढ़ रहे हैं. फ्रांस में तेज गर्मी की वजह से दक्षिण में कई जगहों पर आग लगी है. पुर्तगाल में गर्मी की वजह से पेशा आग में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं. इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी जा रही है और स्पेन में भी हालत बहुत गंभीर है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए.
0: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: टैगो लेन लाफ्लोरा में 44 साल के 44 years old श्री शक्ति मधु जो शक्ति के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी

0: कल 12:15 कल दिन के 12:15 इनकी पत्नी काजल मधु के घर टैगोर लेन लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांववा के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:15। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Musti
2: Music
1: Tak Tak Tak RM2 Radio Musti

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: राइट शुरुआत हो गई है विद अ ग्रेट रोमांटिक सॉन्ग और अभी जो एनर्जी लेवल है उनको थोड़ा सा हम अब बढ़ाएंगे क्योंकि शुरुआत हो गई है फॉर आज का बॉलीवुड टकटकाटक. इट्स अ वार्म वेलकम टू एवरीवन, जॉइन अस एंड मेक इट फन. दिस इज योर आफ्टरनून वाला शो और इस सैटरडे को लेट्स से मद मस्त बनाने के लिए राइट विद अ मस्त गाने लेकर आई है ये म्यूजिकल शो अप टू 7 PM यहाँ पर आज हम सनी साथ निभाने वाली है. लेट अस विश यू ऑल अ ग्रेट टाइम, अ ग्रेट सैटरडे. Wishing you a very good afternoon. कैसे हैं हमारे friends? Ready to rock with RJ Hansari. So we are here. लेकर a nice collection. यहाँ पे that will be a mix of music. Of course, आपको तो पता है यहाँ पर क्या होता है. Entertainment ही होता है. आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं only the best of songs. और साथ में है आज Saturday वाला दिन. So क्या हो रहा है? It's the very first Saturday of July महीना. शुरुआत हो गई है for a new month. Full न्यू हैपनिंग्स जो हो जाएंगे कुछ तो ऑलरेडी हो रही हैं शुरुआत फॉर सम न्यू बिगिनिंग्स. तो यहाँ पर विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टू बिगिन विद जुलाई मंथ. आपने क्या सोचा है क्या करेंगे ये जो महीना आया है आपके लिए खास तौर पे अगर आज आपका जन्मदिन है. सो वी आर हेयर टू सेलिब्रेट योर बर्थडे. धूमधाम से मनाएंगे जी. यहाँ पर चाहिए वो एक बहाना टू सेलिब्रेट धूमधाम करने के लिए कुछ हंगामा करने के लिए. और अगर बाई चांस मिल जाता है वो बहाना सो सोच लीजिए क्या होगा. यहाँ पर मस्ती ही मस्ती ना क्योंकि आफ्टर ऑल आप कनेक्टेड हो विद द वन एंड ओनली रेडियो मस्ती रेडियो. And we are here to create the ambiance जहाँ पर भी आपका साथ जारी है. It's a pleasure to welcome you, a warm welcome once again in आज का या Bollywood टक टक टक.
0: Music टक टक टक.
1: RM2 Radio Musti.

0: Hollywood.
1: Radio Musti.
2: Music Doctor
3: Gutter. RM2 Radio Musti.
4: And of course, you're connected with Radio Musti, bringing you some more ambiance, fun and jolly good mood. Ko barkarar hum rakhte hain on Radio Musti. And filhal, let us welcome a very cute and lovely Desi girl on Radio Musti. Vaise, I met her yesterday and she is so loving, so cute. And I'm talking about Amalia. Wish you a very good afternoon, my dear, and it's a warm welcome on Radio Musti. Thank you so much for your love, for your appreciation. और यहाँ पर एक स्पेशल गाना तो बनता है, स्पेशल सॉन्ग तो हम डेडिकेट करेंगे फॉर द ब्यूटीफुल गर्ल जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है विद रेडियो मस्ती. अ बिग हेलो टू यू लवली मॉम लोरा, थैंक यू फॉर द मैसेज एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एज वेल. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग दैट विल बी फॉर यू एंड फॉर ऑल योर डियर फैमिली जो यहाँ पर कनेक्टेड है ऑन रेडियो मस्ती. यू हैव ऑल योर फ्रेंड्स एट SBR School, especially all the great five green ke sabhi friends ko big hello, cuckoo a tout le monde. And also we have your teacher Vilasha, you have Yuvraj and all Sangili Mutu family, especially for your two uncles Ashley and Raj, who celebrated their birthday on 2nd and 3rd July. So celebrations just continues with Radio Musti, right? So agla jo gana hai specially aap dono ke liye hum dedicate karenge, and specially to you Amalia, thank you for being our cute Desi girl. Enjoy.

0: म्यूजिक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Right, it's a wonderful afternoon on Radio Masti और यहाँ पर गाने मौसम के हिसाब से बस चलाएंगे अभी. Enjoy your sunny afternoon. सुहाना है ये मौसम तो यहाँ पर मस्त गाने तो चल ही जाएंगे on Radio Masti. It's a pleasure to welcome you in आज का Bollywood टकटकाटक without your Hansani up till 7 p.m. जहाँ पर भी आपका साथ है, it's a warm welcome. Keep enjoying the best of music.

டக்டகட்ட RM2 ரேடியோ மஸ்தி. Right, with a super blend of music, we are here to entertain you with the greatest songs. And यहाँ पर है आपके messages, आपके dedications. क्या बात है, आप शामिल हो रही हो, ये तो बहुत खुशी की बात है. जानकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है to get to know कि आप अभी साथ निभाते हो. Even कि आप थोड़े से busy हो, लेकिन एक वो minute आप निकाल लेते हो to send me a message. ये तो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए. Thank you so much. नमस्ते टू ऑल द टीम, हैप्पी सैटरडे. यहाँ पर पतिलाल देव के लिए एक गाना फॉर बेटा विकी, बहू कीर्ति फॉर बेटी श्वेता, दामाद रोशन, सभी हुकुम फैमिलीज है. वी हैव रिद्धि, सोनाक्षी, अवनी एंड क्यूट वंश, एंड वी हैव सुया फ्रॉम कुंगुमा. थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंजॉयिंग द शो. थैंक यू. एंड कमिंग गाना ऑफकोर्स चल जाएगा आपके लिए. मॉरिशस से दूर चलते हैं सेशल्स, एंड वहाँ का नज़ारा इट्स जस्ट वाओ. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव विद या फ्रॉम सेशल्स. आपका वेलकम इन मॉरिशस. और इस समय गानों को एंजॉय किया जा रहा है.

0: है while doing some घर के कामकाज, जीवा लगे रहो. And a very good list को enjoy करती हुई. You wanna wish everyone a wonderful weekend. Thank you so much, Vidya ji. आपका welcome in Mauritius. और अगला गाना definitely आपके लिए चल जाएगा. आपने हमको याद किया है ना, प्यार से डेडिकेट करेंगे कुछ स्पेशल आपके लिए. आप अभी अपनों को याद करें. दिस इज योर शो. यहाँ पर हम सनी है जो आपके साथ है. एंड आई बी वेटिंग. आपका इंतजार हम करने वाले हैं. यस, ऑन 5499-1294 फॉर ऑल योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस टू सेलिब्रेट दिस वंडरफुल डे.
1: म्यूजिक टक टक टक.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

डेफिनेटली यहाँ पर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन पर नंबर वन गाने तो चलेंगे ही ना. इट्स अ वार्म वेलकम टू यू ऑल. सगन आवर शुरू हो गया है. इट्स आज का बॉलीवुड टकटकाटक और आज के लिए हम सुनी है जो आपके साथ है. एंड आई विल बी विद यू अप टिल 7 PM. इट्स अ वार्म वेलकम ऑन द सगन आवर ऑफ द शो. हेलो टू ऑल माय

Beautiful girls, hello to all the boys who are strongly connected. कैसे हैं हमारे friends? Let us be together. Saturday mood को और भी चकास बनाते हैं. चाहिए आपकी तरफ से messages. क्या हालचाल है? कुछ है बताने के लिए? Celebrating your Saturday वाला mood. So we are here to be with you on a 549 12 94.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: Right to get you connected with the best blend of music on our radio Masti and of course Taktakati Hui aa gayi hai aapke saath Hansini and bringing you some messages now let's go to Switzerland thoda sa ghumna bhi hota hai na radio Masti ke saath and someone jo hai bahut hi busy hai cooking delicious meal as well as listening to radio Masti combination to bahut hi lazeez hai a big hello to Antish really hope ki sab theek thaak hai वेलकम इन आज का बॉलीवुड टकटकाटक सो एक प्यारा सा गाना हो जाए आपके लिए एंड फॉर एवरीवन जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है हेलो टू सूरज भाई थैंक यू फॉर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती आपके लिए जरूर एक गाना और सभी सजड़ा परिवार के लिए भी वी हैव गॉट अ स्पेशल सॉन्ग कमिंग अप थैंक यू फॉर लिसनिंग यहाँ पर प्रवेश का मैसेज है हेलो जी प्रणाम टू यू टू आप कैसे हो And loving the show very much, loving the mood. It's ekdam mast hai. That's so nice. Thank you, dil se, for appreciating aaj ka Bollywood taktakatak. Yahan par gana mere liye ho jaye for my love, Kiran ke liye, who is celebrating her birthday. That's our good wishes to you, Kiran ji. Happy wala birthday aapko. That's our good wishes. Hamesha aap muskurati rahiye, khush rahiye. Yehi good wishes hum lekar aaye hain. From Hansini and all the team of Radio Masti. Thank you for believing in us and thank you for sharing your love on 549-1294.
0: Music.
1: RM2. Radio Masti.

0: tuned to
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
1: Music, Tak-Tak-Tak.
0: RM2, Radio Masti.
3: Thank you for connecting with the best of songs on Radio Masti. And yahan par ishara hai, we're going to have a chota sa fashion tip. Winter season hai na, सर्दी का मौसम और गर्ल्स एंड लेडीज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एक छोटा सा फैशन टिप. अगर आपको पसंद है काले लेगिंग्स

ठंड है ना, सो हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेगिंग्स. तो यहाँ पर पहनेंगे काली लेगिंग्स, दो कॉटन सिल्क या प्रिंटेड डिजाइन कुर्ती के साथ पहनकर एक क्लासिक और एलिगेंट लुक को आप पा सकते हैं. राइट, लेगिंग के साथ बहुत सारे कलर्स मैच हो सकते हैं, रंगों के साथ प्रयोग करें. काली लेगिंग जो लगभग हर रंग के साथ अच्छे लगते हैं, लेट्स से सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीला, हरा, नीला या फिर बेज रंग का एकदम टॉप अगर आप पहनेंगे अपने काली लेगिंग्स के साथ, तो एकदम

0: सही फिटिंग का ध्यान आपको रखना है. लेगिंग ना फिर ना तो बहुत ढीली होना चाहिए ना ही बहुत टाइट. सही फिटिंग आपके लिए आपके लुक को और भी अट्रैक्टिव बिल्कुल ऐसा लुक वो दे सकते हैं. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप पहन रहे हो काले लेगिंग्स तो एकदम आरामदायक जैसा हो, लाइक एकदम कंफर्टेबल वाला, राइट? तो एकदम स्टाइलिश लुक और अट्रैक्टिव लुक के बारे में अगर आप सोच रहे हो, और अगर आप का आज एक डिनर है, एक कैजुअल आउटिंग है परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ अगर आप घूमने जाएंगे, मे बी यू हैव अ डिनर, सो अपने वार्डरोब में जाइए एंड लुक फॉर अ नाइस ब्लैक लेगिंग्स, और उनके साथ जो जाएगा एकदम लाइक नाइस टॉप लेगिंग के साथ कुर्ती, ये भी फिट होता है. एक अच्छे सब जो कॉम्बिनेशन है आप ढूंढ लीजिए, काले लेगिंग और जो रंग हमने आपको बस बताए हैं लिस्ट, चूज एनी वन, लुक मोर एलिगेंट, लुक मोर स्टाइलिश एंड लुक अट्रैक्टिव. ये था एक छोटा सा फैशन टिप.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

रेडियो मस्ती पर इट्स अ बॉलीवुड टिकटक अटैक और अभी एक रोमांटिक गाना हो जाए दिल से दिल की आवाज को हम सुनने वाले हैं दैट्स अ धड़कन सॉन्ग और ये हम खास तौर पे डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर आवर लवली साधना जी जो यहाँ पर कनेक्टेड है ऑल द वे फ्रॉम स्टैनली आपका वेलकम और रेडियो मस्ती स्पेशली धड़कन वाला गाना आपको पसंद है ना ये आपके लिए आपके पूरे परिवार के लिए एंड For you to have a wonderful evening ahead. इस शाम को और भी मस्तानी बनाने के लिए पेश है ये खूबसूरत गाना आपके लिए चलिए इसके साथ हम बढ़ेंगे ठीक 6 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर और इसके बाद मुलाकात जारी रहेगी अब 7 PM फॉर आज का बॉलीवुड टिकटक अटैक

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Wish you all a very good evening. Check your time. Sham ke theek 6 baje hain.
6: Eshiya samachar bulletin sabse pehle aaj ki badi khabrein. मुशरस में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया. जिटवा अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर बाकामयाबी डाला गया. ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजिन ने मुशरस कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की. अब मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा. जिन बच्चों के व्यवहार में गंभीर मसले हैं इनकी देखभाल करने में पेश चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए गठित कमेटी की बड़ी सिफारिशों से एक खास इकाई कायम. परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कानून को अमल में लाने का फैसला किया. खियोले में सर रविंद्रनाथ गबारन स्टेडियम फिर से नई सहूलतों के साथ कार्यरत. करार प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और इलाके के निर्वाचित सदस्यों ने मूल ढांचे का किया उद्घाटन. प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि चुनावी अभियानों के दौरान वासियों ने इस स्पोर्ट्स सुविधा के स्तर को बेहतर करने की मांग की थी. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सबसे सॉलिडारिटी की मांग की है ताकि सब अच्छी दिशा में बढ़ सकें. कल थ्रियोली में वे पेंशन प्रणाली पर बात कर रहे थे. और यूरोप में शदीद गर्मी. फ्रांस में अतिरिक्त 1000 मौतें दर्ज हुई हैं. नमस्कार रादाब. एक बार फिर से मुर्शस में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया. जीटू अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर बाकामयाबी डाला गया. ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजिन ने मोशन कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की. मरीजा की उम्र 87 साल की है और उन्होंने पहली बार पेसमेकर लगाया, यानी ये लीडलेस पेसमेकर लगाया. इस दफ़ा इस लीडलेस पेसमेकर से कॉम्प्लिकेशन के खतरे कम हैं. पहले इस तरह के ऑपरेशन के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था. यहाँ इस सर्जरी के बाद मुर्शस को महारत हासिल हुई है. कोयल सितर, रजनी बेकर.
7: मॉरिशस में 87 वर्ष के मरीज पर एक वायरलेस पेसमेकर लगाया गया. ऐसा पहली बार हुआ है. चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही देश में ये लघु उपकरण लाया गया. ऑस्ट्रिया के एक हृदय चिकित्सक की मदद से मॉरिशन टीम के सहयोग से ये सर्जरी संपन्न की गई. कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट इंचार्ज डॉक्टर देवादा सेंचलन ने कहा,
8: à deux reprises, sa fille infectée du côté droit, du côté gauche, finalement, parce qu'il n'a aucun moyen pour tirer des pylolides. Que les cas types dépendants, l'ONPH, mais que temporaire. Heureusement, nous finissons de discuter avec le directeur de l'hôpital, qui, avec la bénédiction du ministère de la Santé, a accepté d'acheter un boîtier qui est comme ça, et qui coûte très cher. Nous pensons qu'à la longue,
7: परंपरागत पेसमेकर के मुकाबले इस उपकरण को सीधा दिल में लगाया जाता है. इसके लिए केबल की आवश्यकता नहीं. इसके साथ ही इन्फेक्शन के कम खतरे और कम जटिलताएं भी है. डॉक्टर सेजा खाजन ने कहा,
9: I'm really happy that it went well. As always, the complication of this leadless are so low and it reduced the cost. It's a little bit

0: expensive, the device, but long-term and longevity of this system can hold for 20 years or more. And there is no complication.
1: अभी तक मरीजों को इस सर्जरी के लिए विदेश जाना पड़ता था, पहली बार ऐसा किया गया है और ये सरकार के विजन के अंतर्गत आता है, जैसे बजट में घोषित विजिटिंग डॉक्टर्स स्कीम के माध्यम से। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने कहा,
2: मैम के साथ ये पे प्लीज शेयर मे जनरल को सीसी इवन प्रेस्के ला मोचे दे से कि नो एनवॉय दे ओ ए अविक सा सिस्टम ला कि नो कैपेबल रिड्यूअर द नंबर दे पेशेंट कि नो पे एनवॉय ला मेम ला दे पिस एनवी जिसका मेंटेनो नो मोफिन ट्रूवे एन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स कि नो पे एनवॉय दे ओ अल नो बेसे ट्रू मोयन से नो कैपेबल फे टू समन ऑपरेशन हम वुस
1: मॉरिशस में कार्डियक इलाज के लिए एक अहम प्रगति, भविष्य में ज्यादा मरीज देश छोड़े बिना ही इस विशेष इलाज से लाभ उठा सकेंगे।
3: जिन बच्चों के व्यवहार में गंभीर मसले हैं, इनकी देखभाल करने में पेश चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए गठित कमेटी की सिफारिशों से एक खास इकाई कायम की जाएगी और इस लक्ष्य से परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कानून को अमल में लाने का फैसला लिया है। सिलवाना पागीमामन, रजनी बेकर।
1: हमला करना, ज्यादा गुस्सा करना, नियमों का पालन करने से इनकार करना, गैर सरकारी संगठनों के अनुसार शेल्टर्स में भर्ती 5-10% बच्चों को व्यवहार संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर समान हादसे पेश आते रहते हैं और वहां रहने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा प्रभावित होती है। चिल्ड्रन फाउंडेशन के 3 शेल्टरों में 0-18 साल के बच्चे जाते हैं। उच्चाधिकारी और कर्मचारी इनके परेशानी वाले व्यवहारों के पहले प्रत्यक्ष दर्शी होते हैं। चिल्ड्रन फाउंडेशन के अध्यक्ष विनेश कुंजल ने कहा,
4: Si dans la famille, il y a brutalité, il y a présence de la drogue, il y a une situation que ça va dans sa vécue. Il y a un ramassant dedans et quand ils viennent les autres leur place, ils retirent. Ils retirent pourquoi? Pour violence physique, mentale et du bully, tout le monde qui est autour, etc. etc. Là, lui, il est incontrôlable. D'autres se retirent à soi, tu dis, tu as envie de manger à soi, des heures du matin, tu brodes dans la cuisine, tu peux faire ça que tu as envie, tu as envie de guetter la télévision, tu dis, je ne vais plus dormir, tu fais un cas comme ça. C'était dans un cas pareil. Il est difficile pour un personnel capable de mettre un plan de travail avec ceux. Et là, oui, les autres, quand tu guettes un comportement pareil, si tu as une tendance, tu crois, si ça a à faire, nous aussi, nous sommes capables de faire pareil.
1: इन दिनों मॉरिशस में 8 रेजिडेंशियल केयर संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें से एक नेशनल चिल्ड्रन काउंसिल की ओर से संचालित, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एवं अटॉर्नी जनरल की ओर से एक समिति की सह अध्यक्षता करने वाली एक समिति का गठन किया गया है जो व्यवहार की गंभीर समस्याओं वाले बच्चों को संभालने से जुड़ी चुनौतियों और समाधानों को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी। कुछ प्रमुख कमियां पाई गई हैं, साथ ही एक विशेष संस्था की अनुपस्थिति है और इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बात को लेकर मौजूदा संस्थाओं के बीच कंसेंसस की कमी भी। ये निष्कर्ष निकाला गया कि आपातकालीन रूप से उन बच्चों के लिए एक विशेष संस्था कायम की जानी चाहिए जिन्हें व्यवहार संबंधी गंभीर परेशानियां हैं।
4: Il y a tout un travail qui vous a fait. Il y a toute une équipe qui est spécialisée, multidisciplinaire. Ça, l'équipe là, il y a besoin d'un psychologue, d'un psychiatriste. Il y a besoin d'un occupational thérapeute. Aussi, nous avons un éducateur spécialisé pour comprendre comment pour faire pour travailler avec ces enfants-là. Alors, c'est pour ça que nous avons une équipe multidisciplinaire pour capable guider ces enfants-là holistiquement dans tout ce approche.
1: इस नई विशेष संस्था के दोहरे कार्य हैं, बच्चों के लिए शरण प्रदान करना और उन्हें शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पर प्रशिक्षित पेशेवर कर्मचारी होंगे जो पूरी तरह से स्वायत्त भी होंगे। इस संस्था को कायम करने के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए एक आर्थिक कमेटी की अध्यक्षता संभालेंगे। समिति की पहली बैठक बुध 8 जुलाई को लगाई जाएगी। कल कैबिनेट की बैठक में ये नोट लिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के हालिया सेशल दौरे का भी जायजा लिया गया। कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि पुराने जज विनोद बुलेल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की अध्यक्षता संभालें। पूर्व अध्यक्षा की हैसियत से अफुंग च्वी युंग चोंग ये जिम्मेदारी संभालेंगी। आयोग के दूसरे मेंबरान भी होंगे। त्रियोले में सर रविंद्रनाथ गबारन स्टेडियम फिर से नई सहूलतों के साथ कार्यरत होने लगा है। कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, स्पोर्ट्स मंत्री देवेंद्र नगालिंगम और इलाके के निर्वाचित सदस्यों ने इस मूल ढांचे का उद्घाटन किया।

0: प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि चुनावी अभियानों के दौरान वासियों ने इस स्पोर्ट्स सुविधा के स्तर को बेहतर करने की मांग की थी। मौके पर एक गैला मैच का आयोजन भी किया गया। राजीव कंपत, रजनी बेकर।
1: त्रियुली स्थित सर रविंद्रनाथ गर्बनानी स्टेडियम में फुटबॉल की शाम थी। स्टेडियम में पुनर्निर्माण कार्य किए गए, रोशनी की व्यवस्था की गई, जिसकी बदौलत रात में भी स्पोर्ट्स गतिविधियां चलाई जा सकेंगी। साथ में चेंजिंग रूम, बैठने की जगह और अन्य स्थानों में भी मरम्मत के काम पूरे किए गए। निवासियों के लिए ये संतुष्टि की बात है, जो काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे।
2: Mais aujourd'hui, nous gagnons des gars pour nous, ça fait nous un grand plaisir, nous sommes capables de pratiquer le football plus bien.
3: Il y en a pas mal, nous recommençons nos entraînements en soi, tout ça.
4: Il y a beaucoup de jeunes qui viennent là, ils viennent jouer au football, et un grand timon aussi qui viennent le matin, ils viennent faire du sport.
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के कल कवनों द्वारा रात में इसका औपचारिक पुनः उद्घाटन किया गया। युवा एवं खेल मंत्री तथा चुनाव क्षेत्र के सांसद और अन्य कई महानुभाव भी मौजूद रहे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स में लोगों के संगठित करने की क्षमता के महत्व पर बात की। इसके अलावा उन्होंने ये याद दिलाया कि स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य करने की मांग चुनाव अभियान के दौरान बासिंदों द्वारा की गई थी।
5: Pas une floodlights, c'est qu'une brûlée ne reste brûlée. Ben aucun éclairage, l'herbe une montée ça était là, pas coupé. Serein dans le gazon, fencing une cassé, pas réparé. Les chiens errant partout et supposé faire ce pot là. Et moi tu promets, si je suis premier ministre. Nous pour refaire ce stade-là pour du monde qui a pratique sport comme au bizin. Et aujourd'hui, d'après ce que je me trouvais là, ce stade-là est un bijou.
1: मंत्री देवेंद्र नागालिंगम ने देश भर में सभी स्तरों पर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करते रहने की सरकार की पहल पर बात की। साथ में युवा उत्थान पर भी बात की गई।
6: किली फुटबॉल, लैटलेचिस Dans tout niveau, nous avons une sorte de paix revive. Et c'est ça qu'il nous peut faire. Les tours de l'île Maurice, doucement, doucement, nous payons pas où nous avons ce qu'il fait. Parce que c'est un outil, ça. Pour combattre la drogue, ou bien donner un moyen pour qu'ils aient enfin là, contents dans ce qu'il peut faire.
1: वहां उपस्थित लोगों को इलाके की दो टीमों के बीच एक पहले मैच को देखने का आनंद उठाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ऐसा स्थान जो छोटे बड़े सभी को नियमित रूप से स्पोर्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
0: सर रविंद्रनाथ गबरन स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री ने पेंशन प्रणाली को लेकर भी बात की। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें तभी पेंशन से में सुधार लाने का मुद्दा उठाया गया था। प्रधानमंत्री ने सबसे सॉलिडारिटी की मांग की ताकि सब अच्छी दिशा में बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि रास्ता मुश्किल है क्योंकि पिछली सरकार ने गंभीर आर्थिक स्थिति छोड़ी है, लेकिन देश के बेहतर भविष्य के लिए ये चरण जरूरी है, कहा सरकारी नेता ने। उन्हें सुनते
5: हैं। Vous partagez? Dans l'économie, il y a des affaires qui disent où? There's no such thing as a free lunch. Toutes les affaires qui vous font, il y a des conséquences. Aujourd'hui, nous avons des conséquences. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais qu'il ne faut pas augmenter TVA. Pense à casse et puis pension. Pas ça la solution. Parce qu'il est insoutenable, aujourd'hui, sa pension là, son budget, il peut coûter plus que budget la santé, budget l'éducation et une partie pour le logement social. Ou mettre ensemble pension coûte plus cher. Moi, pas connais réforme là pour un populaire. Mais c'est moi qui m'a besoin de faire, moi. Pareil comme un papa dans la case, il a besoin de faire certains sacrifices pour que ses enfants soient capables de gagner l'avenir du vent. C'est ça qu'il nous peut faire. Et c'est pas vrai que personne n'a besoin de pension. Hein? Si nous parlons, on a revenu du même. L'air là, on peut trouver pas besoin de pension à un certain moment. Nous avons besoin d'être global.

0: Nous pouvons faire tout pour transformer ce pays-là. Et moi, je confie en moi. Je confie en l'état venu, nous revendiquons pour connaître ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Mais il prend le temps. Parce que jamais nous connaissons, nous trouvons le Venezuela, il y a un tremblement de terre, mais la case est écrasée, même les affaires ici-là. Je ne détruis l'économie Maurice. Nous avons besoin de refaire tout à zéro.
1: Paul Béranger, Joanna Béranger, Orchidon Babulala, Jusuba Prasim Khatib Hue, Pension Pranali Min Sudhar par Mukhya Roop se baat hui aur Front Militant Progressiste ke gathan par bhi charcha hui. Yasin Din Mohammed ki report par Yachna Mishra ka vivaran.
2: पेंशन प्रणाली में बदलाव को लेकर पूर्व बेहों जी ने कहा कि प्रस्तावित प्रणाली में अनिश्चितताएं हैं। उन्होंने फाइनेंस बिल के परीक्षण के लिए गठित मंत्रालय समिति पर चर्चा की।
3: C'est maintenant qui Ram Gulam pour préside un comité interministériel.
2: अब जाकर नवीन राम गुलाम एक मंत्रालय समिति की अध्यक्षता करेंगे। कम से कम संबंधित लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। पेंशन फाइनेंस बिल का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले बजट कदम प्रस्तावित करें और बाद में समय लेकर चर्चाओं के बाद पेंशन सुधार लाएं। मीन्स टेस्ट हटाए जाने के संबंध में पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि कई पहलुओं पर स्पष्टीकरण बाकी है। सिर्फ मीन्स टेस्ट समस्या नहीं, 60 से 65 साल के बीच और उसके बाद भी कैसे पेंशन निर्धारित होगा। राजनीति को लेकर पर्बे हांजी ने फो मिलिटेंट प्रोग्रेसिव के भविष्य पर बात की। उन्होंने कहा कि ये दल ज्यादा तेजी से हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे कई गैर संसदीय संगठनों के साथ संपर्क में हैं।
1: आज युवकों के साथ जूनियर मंत्री तनेश्वर दामगी, फैब्रिस दावीद और सांसद कविराज रुकनी ने बजट 2026-2027 को लेकर एक पोस्ट बजट ब्रीफिंग का आयोजन किया साइबर सिटी एबेन में। नौजवानों ने बजट को लेकर अपनी उम्मीदें जताई हैं, खासतौर पर नौकरी के मौकों को लेकर और पेशवराना विकास के चलते खरीद क्षमता पर भी बात हुई है। कई साझेदारों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और लेंस को मॉरिशस शामिल हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में करीब 900 सहकारिता संगठन हैं, जो मुल्क की अर्थनीति के अहम सेक्टरों में काबिलेदाद योगदान दे रहे हैं। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए कई पहल ली गई हैं, खासतौर पर नई नस्ल को सहकारिता क्षेत्र में कटिबद्ध होने में हौसला देने के लिए और हौसला देने के लिए नौजवानों से सहकारिता क्षेत्र का शोला जराए रखने की उम्मीद है, ताकि सॉलिडारिटी और समर्थन की बुनियाद पर खड़े किए गए आर्थिक मॉडल में नवीनता लाकर इसे आगे बढ़ा सकें।
2: लिस्कालिए सहकारी समिति की शुरुआत बेहद सरल तरीके से हुई थी। शुरुआती दौर में कुछ निवासी पेड़ की छांव में इकट्ठा होकर अपनी सहकारी संस्था के गठन पर चर्चा करने और इस सामूहिक परियोजना की नींव रखने आए। एक छोटी सी पहल जो समय के साथ एक बड़ी सफलता की कहानी बनी। 1940 में इसकी स्थापना हुई। चुनौतियों के बावजूद हम काम जारी रख पा रहे हैं, नौजवानों को भी साथ ला रहे हैं, ताकि हमारा काम आगे बढ़ता जाए। आज ये सहकारी समिति 200 से अधिक सदस्यों को एक साथ जोड़ती है, जो शक्कर उद्योग से जुड़े हुए हैं। संस्था अब नई पीढ़ी को भी आकर्षित कर रही है, जो इसके विकास में सक्रिय योगदान दे सकती है। कानूनी क्षेत्र में कार्यरत युवा पेशेवर शेल्विन हमसामी अब इसके प्रशासनिक परिषद का हिस्सा हैं। सहकारिता जारी रहनी चाहिए, हमें समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। हम नई प्रणालियां, टेक्नोलॉजी और ज्ञान ला सकते हैं।
4: à la société coopérative d'aujourd'hui.
2: हालिया बजट के समर्थन के साथ अब सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य

0: सहकारी समितियों को अधिक आधुनिक और प्रभावी साधनों से लैस करना है ताकि वे आज की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढाल सकें और अपनी प्रतिस्पर्धा तथा आकर्षण को और मजबूत बना सकें।
1: Dans le monde digital qui ne peut évoluer que la technologie peut envahir tous les secteurs.
0: डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में छाई है। हम सहकारी सोसाइटियों को एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स आदि दे रहे हैं जहां वे खाता लिख सकते हैं, संचालन को डिजिटलाइज कर सकते हैं। मॉरिशस में लगभग 900 सक्रिय सहकारी समितियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कृषि, मत्स्य उद्योग, परिवहन और सेवाएं।
2: जी हाँ, और आज सुबह कंपनी गार्डन पोर्टवी में सहकारिता स्मारक के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की गतिविधि की गई। इस साल का विषय सहकारिता दुनिया में शांति की सेवा में। आज का दिन एक ऐसा मौका रहा जो देश की अर्थनीति में सहकारिता तंजीमों के किरदार और गरीबी के खिलाफ संघर्ष पर रोशनी डाला गया। विदेश में दक्षिणी यूरोप में जंगलों में आग के खतरे बढ़ रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से दक्षिणी फ्रांस में कई जगहों पर आग लगी हुई है। मौतों की संख्या 2025 के पार है। पुर्तगाल में गर्मी की वजह से पेश आग में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी जा रही है। स्पेन में भी हालत बहुत गंभीर है। फ्रांस में उबर प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है। सन 2025 से एक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया था जिस पर मुकदमा चलाया गया। टैक्सी पारिजियन की जगह उबर पारिजियन नाम का इस्तेमाल करने पर उद्योग को 50,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी के साथ पेश है कुछ दूसरी खबरें अदिति गानू अवतार के साथ।
3: भारत, रशिया, कतर और ओमान समेत दुनिया के कई वरिष्ठ नेता और उच्चाधिकारी ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामिने की मैयत में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कई महीने पहले उनकी मृत्यु एक हमले में हुई थी। उन्हें देश के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल पर दफनाया जाएगा। रशिया यूक्रेन के बीच हमले थमने के आसार नहीं दिख रहे। रूसी ताकतों द्वारा केंद्रीय यूक्रेन पर किए गए सिलसिलेवार हमले में कई लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये हमले आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किए गए। ज़ापोरिज़्या और नीप्रो शहरों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। मौजूदा कमजोर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल ने दावा किया है कि वो लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। इस बीच 14 पॉइंट्स वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर विचार विमर्श चल रहा है। शांति वार्ता अली खामिने के अंतिम संस्कार के बाद जारी रखी जाएंगी। मध्यस्थों के अनुसार अगली बातचीत दोहा में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के साथ चलेंगी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं। वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मेलबर्न में वे 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में शामिल होंगे, जबकि न्यूजीलैंड में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत चलेगी।
2: और फुटबॉल की बात करते हैं। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में फुटबॉल फैंस को जबरदस्त मैच देखने को मिला। अर्जेंटीना ने काबू वेद के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज करके अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 और स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराया है। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ, जहां पेनाल्टी शूट आउट में इजिप्ट ने बाजी मार ली। कोलंबिया और गाना के बीच रोमांचक मुकाबला आज सुबह हुआ, जहां कोलंबिया ने 1-0 से जीत हासिल की है।
4: केप वर्दी वाली खेले जी जान से, पर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना सामने था। हार कर सर ऊंचा करके जा रहे हैं केप वर्दी वाली। अर्जेंटीना का पहला गोल स्कोर करता है लियोनेल मेसी 29वें मिनट पर अफ्रीका के बहादुर ब्लैक शार्क्स हिम्मत जुटाते हुए इक्वलाइज करते हैं सेकंड हाफ में जुआते का गोल। फिर से अर्जेंटीना आगे। लिजांड्रो मार्टिनेज के गोल पर इंजुरी टाइम में लोपेस काबाल का ये लाजवाब गोल लाखों में एक। मैच पेनाल्टी सत्र की ओर जा रहा था, पर 111वें मिनट पर एक ऑन गोल पर केप वर्दे का दिल टूटा। अर्जेंटीना 3 केप वर्दे 2। केप वर्दे की टीम की हिम्मत को सलाम, अर्जेंटीना जैसी महारथी को थरथरी दिलाना आसान नहीं है। अर्जेंटीना का अगला मैच इजिप्ट के खिलाफ होगा। मोहम्मद साला की टीम पेनाल्टी सत्र में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई। 1-1 रहा ये मैच। तीसरे मिनट में इजिप्ट के लिए आशूर गोल स्कोर करता है, फिर हानी के ऑन गोल पर मैच बराबर। पेनाल्टी सत्र में भाग्य ने इजिप्ट का साथ दिया, मोहम्मद सलाह का लाजवाब पेनाल्टी और इजिप्ट की टीम क्वालिफाई खेलेंगे इसके खिलाफ, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ।
2: और आज रात दो मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में पैराग्वे की टक्कर फ्रांस से होगी। दोनों ही मुकाबले क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अरविंद बिसेसर,
5: इस वर्ल्ड कप में अभी केवल 16 टीमें बचेंगी और बेस्ट ऑफ 16 शुरू हो गए हैं। कनाडा का मुकाबला मोरक्को से आज रात। कनाडा की टीम जो अपने ग्रुप में पहले स्थान पर आई थी, पहली बार के लिए यहां तक आई है और आगे जाना चाहेगी। उनके सामने है दी अटलास लायंस, मोरक्को की टीम जिसने यहां तक आने के लिए नेदरलैंड्स को हराया, ग्रुप स्टेज में ब्राजील को रोका है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप में ये लोग सेमीफाइनल तक गए थे। सुबह 1 बजे पैराग्वे और फ्रांस के बीच आमना सामना। आपको याद होगा 1998 में ये दोनों जब मिले थे तो मैच गर्म था, खासतौर पर यूजे लुई शिलावे और लोरेंट ब्लांक के बीच ये सब पल यादगार है। पैराग्वे की टीम ने जर्मनी को एलिमिनेट किया है, सॉलिड है, अनुशासन है इनमें और ये लोग परेशान कर सकते हैं फेवरेट फ्रांस को। फ्रांस की टीम जिसने स्वीडन को रफा दफा किया, जिस देशों की टीम में सब कुछ है, चाहे वो डिफेंस हो, मिडफील्ड और उनके 4 स्ट्राइकर कमाल कर रहे हैं।
2: और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद उत्तर, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू के एक हिस्से पर बादल घेराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा आज रात दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 21 से 24, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:46 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:42 पर सूरज ढल जाएगा। मौसम के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी है। एक जोरदार एंटी साइक्लोन दक्षिण पश्चिम की तरफ से नज़दीकी बढ़ा रहा है और इसी वजह से हमारे इलाके में जोरदार हवाएं चलेंगी और ठंड भी महसूस की जाएगी और तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी आवे की मदद मिली है। नमस्कार, आदाब, शोक समाचार कुछ देर में।
6: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: पाल्मा रोड कथबोन में 32 साल के 32 years old श्री दिविज अबनाराम जो दिविज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थे कल शाम साढ़े चार बजे इनके पिता बाडी अबनाराम के घर पाल्मारोद कथबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 4:30 PM। ओली रोड नंबर 1 वाकवा में 66 साल के 66 years old श्री गुरुदत्त दूधी जो मुनुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल एक बजे इनके भाई सुनील दूधी के घर ओली रोड नंबर 1 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नुवेल फ्रांस विलेज हॉल के पास सवान रोड नुवेल फ्रांस में 44 साल की 44 years old श्रीमती सोमा देवी बोला पैदाइशी नाम तिलक

0: जो सोमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 12 बजे के घर सावान रोड नोवेलफोंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। तागोलेन लाफलोगा में 44 साल के 44 years old श्री शक्ति मुदु, श्री शक्ति मुदु जो शक्ति के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल पौने बारह बजे इनकी पत्नी काजल मुदु के घर टैगोलेन लाफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट क्वार्टर टू नून। कैमिलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंट सबल में 84 साल की श्रीमती परमा लागंदी पेम्बन, श्रीमती परमा लागंदी पेम्बन पैदाशी नाम रामसामी जो विनोदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे मोराफियनोरल पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोईले वालिदे प्रेत्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सिमेट्री रोड प्लेनमानियों में 36 साल के 36 years old श्री वितीश बुदन जो निशले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी सोमवार को साढ़े चार बजे इनकी माँ संध्या राबूजी के घर सिमेट्री रोड प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट 4:30 PM। Avenue Diou Nordin Palma 4 Bonne Mai. Maaf kijiye, Avenue Diou Narayan Palma 4 Bonne Mai. Avenue Diou Narayan Palma 4 Bonne Mai. 59 साल के 59 years old श्री सूर्या दत्त लखन जो अशोक अम्पोतिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी पत्नी पूनम लखन के घर एवेन्यू जीव नारायण पालमा कात्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। जानकी रोड पुत्रोदो विलाज में 78 साल की 78 years old श्रीमती बृहस्पति राम जो सत्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल दस बजे इनकी बेटी सीता झुमक के घर जानकी रोड पुत्रोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। बेंगली रोड बुसोंज में 71 साल की 71 years old श्रीमती बिदवंती मितन जो माला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दो बजे इनके घर बेंगाली रोड बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताज साहब या बॉम्बू की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। मुसलमान रामफल बुआमोंग प्लेंडी पपाई में 70 साल के 70 years old श्री इंदरदेव लक्ष्मण प्रसाद की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दस बजे इनके घर बुआमोंग प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोंग प्लेंडी पपाई की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। काली माई रोड रिविया जोरोंपो में 19 साल के 19 years old श्री अजागेन रंगास्वामी जो आविसेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी बाद में इनके पिता सिवन रंगास्वामी के घर काली माई रोड रिविया जोरोंपो से उठाई जाएगी। सिबालक लेन वाकवा में 70 साल के 70 years old श्री रोहित बहादुर जो राधेव मौशों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह साढ़े दस बजे इनकी पत्नी प्रेमिला बहादुर के घर सिबालक लेन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Musti.
2: Allons chez Lolo.
3: Chez Lolo, c'est bon. Liquide vaisselle, 5 litres, 194,50 €. Chantecler, Easy Pack, pilon 1 kg, plus foie de poulet 250 grammes à 305 roupies. Mérimo, shampoing 400 ml, 95 roupies.

0: 2 Radio Musti.
1: RM2 Radio Musti.
2: Music.
0: Tak. RM2 Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटा
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Welcome again on the Radio Misty. We continue with the mood and energy level in aaj ka Bollywood Tuk Tuk Tuk. Thanking you so much saath saath rehne ke liye. Shaam ke 4 baje se hum yahan par hai. Hansani hai jo aapke saath hai. And it's Bollywood Tuk Tuk Tuk. Lekar best gaano ke saath hum yahan par hazir hai. Aur ye jo mulaqat hai bahut hi rangeen hai. Thanks to you. Nirma ji yahan par saath nibha rahi hai. All the way from Canada. A warm welcome to you, Nirma. And next gaana for you and all your friends. Enjoying the selections right here. Thanking you very much for your appreciation. Aur yahan par I have a very nice selection ka message. Thank you. We have Badrak Bidesi wishing happy birthday to him. From all the friends, so we have Kanan, Rajesh, Mahadev, aur sabhi parivar ki taraf se wishing Badwag ji a very happy wala birthday. Stay blessed. Yahan par gaano ke saath bilkul ye musical journey hai 7 baje tak. Aur iske baad रेडी हो रहे हैं हमारे दोस्त विकास रामधनी. ही इज ऑलरेडी हियर इन द स्टूडियो. यहाँ पे प्रेशंस बस जारी वो रख रहे हैं. यहाँ पे वर्ल्ड कप जो अपडेट्स है वो बस लेकर आएंगे. द बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज़ वो लेकर आएंगे. दैट विल बी अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज़ और म्यूजिक. राइट विकास? सो बिल्कुल वो सेट हो रही हैं. सो फिलहाल यहाँ पर हंसनी का साथ देते रहिए आप अप टिल 7 फॉर आज का बॉलीवुड या टकटकाटक जो होने वाला है अप टिल 7 PM हमारे साथ.
0: Music,
1: RM2 Radio Musti.

0: time to
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: All right, definitely it's never-ending entertainment right here on Radio Musti. Are you happy with unlimited sports news? बिल्कुल ready तैयार हमारे best FM and Radio Musti के sports guru, right? Vikash Hamdani is here. Warm welcome to you, Vikash. I wish you a very good evening. कैसे आप हो?
3: Good evening, Hansini, and a very good evening to all sports fans, Radio Musti के fans जो समय आपके साथ जुड़े हुए हैं और 7 to 9 as usual Saturday evening. हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात एंड टू आवर्स ऑफ ब्लिस फुटबॉल फिएस्टा एंड स्पोर्ट्स की ढेर सारी खबरें नॉट ओनली वर्ल्ड कप लेकिन साथ में आज कल टेनिस में विंबलडन टूर्नामेंट एंड क्रिकेट में आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंड आल्सो फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप लोकल स्तर पर भी यू हैव गॉट सो मेनी स्पोर्ट्स न्यूज सो
2: ओवरऑल विकास के साथ स्पोर्ट्स का एक चस्का होने वाला है
3: सो आई एम वेलकमिंग ऑल आवर फैंस आप भी बात कर सकते हैं अपनी खबरें भेज सकते हैं और म्यूजिक भी होंगे कमाल के और नंबर वही है आप तो जानते हैं 5499-1294
2: ऑफ कोर्स विकास हमदनी विल बी हियर टू रॉक यू एज फ्रॉम 7 to 9 PM राइट विकास
3: एग्जैक्टली
2: एंड यहां पे वर्ल्ड कप के बारे में बस हम क्या कहे वैसे आपका टीम कौन सा है आप बताना चाहेंगे या फिर सीक्रेट रखेंगे
3: नहीं अभी तक आई मीन मेरी कोई ऐसी टीम इंग्लैंड इज द टीम दैट एवरीबॉडी लाइक्स हमारे देश में जो कि हम लोग फॉलो करते हैं
2: प्रीमियर लीग
3: बट फ्रांस इज डूइंग रियली वेल मुझे लगता है कि फ्रांस की जो टीम है एकदम मजबूत है और एक को निकालो दूसरे को डालो उसमें दे आर सिमिलर अच्छा खेलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ब्राजील को फिर से देखना है 2 मैचों 3 मैचों के बाद अभी तक उसने कंफर्म नहीं किया है सो बट दिस टीम्स कैन ऑलवेज गिव ग्रेट फुटबॉल सो उम्मीद है कि आने वाले आज रात से लास्ट 16 राउंड शुरू हो रहा है विद कनाडा वर्सेस मोरक्को रात 9 बजे और ये NBC 11 पर लाइव दिखाया जाएगा सो गेट सेट टू ऑल आवर फैंस रात 9 बजे कनाडा वर्सेस मोरक्को और कल सुबह 1 बजे यानी कि 12 बजे के बाद फ्रांस प्लेइंग अगेंस्ट
2: All right, so we are all set for a great Zabardast weekend. Thank you so much, Vikash, and joining you in a few.

0: गुड इवनिंग, नमस्कार आदाब, वी गिव यू झंकार बीट्स।
1: झंकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झंकार बीट्स।

0: वी रियली केयर, इसलिए तो आए हैं।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to
2: Jhumka Beats. RM2, Radio Musti.
0: रात के 5:50, you are tuned to Radio Musti with me Vikas Ramthani, और आज रात 7 to 9 every Saturday evening, आपको पता है कि हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात, so thank you Hansini, हम पूरे प्रोग्राम में सबको हंसाने के लिए और सबको अच्छे अच्छे संगीत, अच्छे अच्छे गीत लाने के लिए, and thank you, have a safe drive home, back home, and झंकार बीट्स अभी से लेकर रात के 9 तक, शनिवार की शाम 7 to 9 खेल जगत स्पोर्ट्स वर्ल्ड से ढेर सारी खबरें लेकर आते हैं और आगे हैं। इट्स अ स्पेशल सेगमेंट फ्रॉम 7 टू 9 सैटरडे इवनिंग, जिसमें खेल समाचार भरपूर होते हैं और साथ में ग्रेट म्यूजिक भी। सो कपल्ड विद म्यूजिक, आप म्यूजिक के लिए भी मांग कर सकते हैं और अपनी टीमों के बारे में, चाहे वो फुटबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, या फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप, इन सब में आजकल खेल जारी है। सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 5499-1294-5499-1294, लेट्स मेक दिस इवनिंग ए फैंटास्टिक वन टुगेदर, साथ मिलकर, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं। आज रात आपको बताएं कि वर्ल्ड कप में लास्ट 32 राउंड संपन्न हुए आज सुबह, एंड आज रात 9 बजे से लास्ट 16 राउंड शुरू। को होस्ट कंट्री आज खेलेगा किसके खिलाफ, सो आज दो मैच खेले जाएंगे। वी हैव कनाडा वर्सेस मोरक्को, ग्रेट ग्रेट मैच रात 9 बजे, और आपको बता दें कि ये मैच MBC 11 पर लाइव दिखाया जाएगा। सो यू कैन वॉच दिस ग्रेट फुटबॉल, कनाडा जो अपने देश में है, यानी कि को होस्ट कंट्री है, मोरक्को इज द ये अफ्रीका का शेर है, ग्रेट फुटबॉल बाय मोरक्को। सो कनाडा मोरक्को आज रात 9 बजे लाइव ऑन MBC 11, और कल सुबह 1 बजे यानी 12 बजे के बाद 1 बजे फ्रांस वर्सेस पराग्वे। स्टे ट्यून्ड।

0: कितना मुश्किल होता है दिल के दर्द को छुपाना, टूट कर फिर मुस्कुराना, कितना मुश्किल होता है, पर मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि मुस्कुराहट जो है अन्यों के चेहरे पर और मुस्कुराहट लाती है।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats. RM2, Radio Musti.
0: So keep smiling on Radio Musti, RM2, रात के 7 से 9 के बीच with me Vikas Randhani और ये है Jhumka Beats, शनिवार की शाम 7 to 9, आपके साथ एक छोटी सी मुलाकात, एक प्यारी सी मुलाकात।

with lots of sports news. Number वही है 5499-1294-5499-1294. So it's FIFA World Cup time. आज रात 9 बजे से हमने बताया last 16 round शुरू हो रहा है with co-host Canada taking over Morocco. ये दो अच्छी टीमें हैं, co-host है Canada. So अपने देश में शायद ये मैच कनाडा में नहीं खेला जाएगा, ये टेक्सास में खेला जाएगा. फिर भी कनाडा इज द को-होस्ट कंट्री और मोरक्को जो है दोनों अपने अपने रूप में अलग टीमें हैं. कनाडा यदि को-होस्ट कंट्री है और काइंड ऑफ अपने जनता के सामने अपने अपने घर में यदि खेलेगा तो मोरक्को भी अफ्रीका का शेर है, चैम्पियन ऑफ अफ्रीका, एंड उसके लगभग सभी खिलाड़ी यूरोप में खेलते हैं. एंड अशरफ हकीमी और साथी आग लगा देंगे आज रात ह्यूस्टन टेक्सास के NRG स्टेडियम में. एंड कनाडा अपनी ओर से इतिहास रचने के इरादे से मैदान पे उतरेगा तो मोरक्को अपनी अजय इनविंसिबल रिदम और मजबूत स्ट्रॉन्ग डिफेंस का टैग लेकर वर्ल्ड कप जीतने का एक प्रबल दावेदार, हॉट फेवरेट, कम से कम फेवरेट तो बन गया है अलोंग विद फ्रांस एंड प्रोबेबली ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना. अब तक अर्जेंटीना ने अपने मेसी के साथ बहुत कुछ दिखाया है बट ब्राज़ील स्टिल नीड्स टू प्ले सम गुड फुटबॉल. सो मोरक्को वर्सेस कनाडा आज रात 9 बजे टेक्सास के NRG स्टेडियम में लाइव आपके टीवी सेट MBC 11 पर ये मैच लाइव दिखाया जाएगा. सो कीप सेंडिंग मी योर टेक्स्ट ऑन 5499-1294-5499-1294. बता दें कि आज का दूसरा जो मैच होगा आज बल्कि क्या कल सुबह कह सकते हैं, आज रात 12 बजे के बाद 1 बजे तड़के 1 बजे फ्रांस वर्सेस पराग्वे. फ्रांस इज द टीम टू बीट कहना पड़ेगा. अभी एक खिलाड़ी को निकालो दूसरे को डालो वो भी अच्छा ही है, तीसरे को भी डालो तो वो भी अच्छा ही है. इसी बहुत ही कम टीम है इस वर्तमान वर्ल्ड कप में क्योंकि इवन मोरक्को हैज अ गुड टीम बट क्या उसके बेंच पर इतने अच्छे खिलाड़ी हैं. सो ऑल दिस हैपनिंग इन वर्ल्ड कप 2026 लास्ट 16 राउंड आज रात से शुरू. और बता दें कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट भी जारी है एंड फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की ब्रिटिश ग्रैंड प्री कल लगने वाली है. ऑल्सो वी हैव इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 का दूसरा मैच.

अगला गीत जो है हमारे समस्त दोस्तों के लिए, फॉर योर ट्विन्स, ट्विन सन्स रेवांश एंड रेयांश फ्रॉम विजय पुलुदू एंड मॉम वाशिनी पुलुदू ऑफ हाईलैंड्स, और दादी वेदा पुलुदू की ओर से खासतौर पे आपके दो जुड़वे बेटे जो हैं रेवांश एंड रेयांश के लिए।

योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 5499-1294-5499-1294 पे। लास्ट 16 राउंड आज रात 9 बजे लाइव ऑन MBC 11 मोरक्को वर्सेस कनाडा।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: नेन भी जो है ना कमाल की चीज़ है, गजब की चीज़ है ये। ना आए तो सब कुछ भुला देती है और आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो पुराना सब कुछ याद दिला देती है। इसलिए नींद में मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रॉम 7 to 9 एंड 24 hours a day रेडियो मस्ती आपकी सेवा में। दिस इज झंकार बीट्स और झंकृत करने के लिए कुछ खबरें आपको बताएं कि वर्ल्ड कप इज ऑन, लास्ट 16 राउंड आज से शुरू एंड दिल धड़कता है, माने न माने दिल धड़कता है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि हम सब इंग्लिश फुटबॉल पसंद करते हैं। वी लव इंग्लिश फुटबॉल, खासतौर पर FA प्रीमियर लीग।

0: और किसी भी एक मैच में एक एक टीम में एक बंदा काफ़ी होता है ना, एक बंदा काफ़ी है। और जहाँ तक इंग्लैंड का सवाल है तो एक बंदा काफ़ी है पूरा खेल बदलने के लिए, और वो बंदा है किंग हैरी, हैरी केन, कप्तान हैरी केन, जिसने अभी कल परसों दो गोल स्कोर किए तब जाकर इंग्लैंड की जीत हुई। एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल, इंग्लैंड का टॉप स्कोरर बन गया है वर्ल्ड कप में। एंड अभी इंग्लैंड का अगला मैच जो होगा मेक्सिको के खिलाफ संडे की रात जो है, बल्कि मंडे की सुबह ये मैच खेला जाएगा। आपको बताएंगे एग्जैक्टली टाइम एंड डे एंड डेट सो रिजर्व। सो इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको, मेक्सिको भी एक होस्ट कंट्री है। खबर ये है कि मेक्सिको वालों ने जो नियति मतलब कि जो गंदा काम किया था अगेंस्ट इक्वाडोर, उनके होटल के सामने जाकर काफ़ी गड़बड़ी की थी, लगभग यही कर रहे हैं अभी मेक्सिको के फैंस। इंग्लैंड की टीम कल शुक्रवार को अपने होटल पहुंच चुके हैं और मेक्सिको के कई फैंस वहां पर शोर मचा रहे हैं फॉर द फुल थ्री डेज मैच शुरू होने से पहले। लेकिन देखते हैं आगे आगे होते हैं क्या। सो इट्स हैपनिंग इन वर्ल्ड कप 2026, इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको, मंडे की सुबह मैच खेला जाएगा। 5499-1294 5499-1294 पे। दिस वन गोइंग टू मोहन फैमिली ऑफ बासन रोड कतरबोन, धीरज साहब के लिए, उनके पत्नी हेमा के लिए, फॉर दिया एंड भविष्य के लिए, सभी फैमिली के लिए। एंड या हियर वी गो 5499-1294 5499-1294 आपके सभी फैमिली के लिए। दिस वन फॉर यू।
1: झंकार बीट्स RM2 रेडियो मस्ती।

0: एग्जैक्टली आप हैं तो हम हैं.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Masti.
0: आजकल तो सुबह से शाम तक और फिर रात तक इट्स ऑल फुटबॉल. फुटबॉल की भाषा बोली जा रही है. एवरीथिंग कैन वेट ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो हर चार साल बाद आता है और आएगा फिर से अभी 2026 फिर 2030 में. इसलिए जी लो भर भर के, जितने मैच देखने हैं देख लो, चाहे वो सुबह हो या शाम को या फिर रात के समय. It's all football and everything can wait. Football. Jio mere lal. 54991294549912994 for your messages. Phir lautayenge of course. And we have cricket news. Yeah, hum baat kar rahe the cricket ki. So India versus England second T20 match. Pehla jo match hai is series ka jo dusra match aaj khela ja raha hai. Pehla match barish ke karan radd kar diya gaya tha. So it's a series of five T20 matches. Panch T20 matchon ki shrinkhala hai. Dusra match aur कमाल की का खेल है इंडिया, इंडियन टीम की ओर से. इंडिया जो है अपनी पारी में उसने 190 रन बनाए, 190 रन. और जवाब के तौर पर अभी अभी इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई है और प्रथम पांच रनों में दो विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के एट द एमिरेट्स ओल्ड ट्राफोर्ड स्टेडियम. अर्शदीप ने साल्ट को पहली ही गेंद पर आउट किया एंड बटलर फॉर ए डक बिना कोई रन बनाए दोनों ही आउट हो गए. फर्स्ट फाइव रन्स में इंग्लैंड के दो विकेट गिर चुके. सो इंडिया 190 for 7. ईशान किशन ने 49 रन बनाए 49. अभिषेक शर्मा की ओर से 43 for 43. और वैभव सूर्यवंशी ओनली 15 year old, उसका पहला इंटरनेशनल डेब्यू रहा और उसने केवल 14 रन बनाए इंक्लूडिंग जिनमें दो छक्के भी रहे. सो पहला मैच पहले दो छक्के. डूइंग ग्रेट सूर्यवंशी वैभव. और अभी जो है लेटेस्ट स्कोर जो है 26 for 2 इंग्लैंड के 2.4 ओवर, यानी कि अभी भी 17.2 ओवर्स बाकी है. अभी थोड़ा संभल कर इंग्लैंड की टीम खेल रही है. सो इंग्लैंड की बात हुई तो इंग्लैंड की जो जीत हुई थी 2-1 से, दैट वाज ए ग्रेट मैच अगेंस्ट आई थिंक जापान था वो. सो हैरी केन ने उसमें जो दो गोल स्कोर किए थे वो काबिल तारीफ. और गोलों की बात हुई तो वी हैव लियोनेल मेसी विद 7 गोल्स. ही इज लीडिंग द रेस फॉर द टाइम बीइंग वर्तमान वर्ल्ड कप में. पीछे हैं एम्बापे. ये दोनों जो हैं हर मैच में स्कोर कर रहे हैं. और मेसी की क्या बात करें, कल जो उसने एक पहला

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jungle Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: कुछ कैजुअलिटीज हैं। टेनिस विंबलडन टूर्नामेंट के आज के जो मैच खेले गए या फिर खेले जा रहे हैं, सो लड़कियों में खासतौर पे डिफेंडिंग चैंपियन इगा श्वातेक को बाहर का रास्ता देखना पड़ा आज, और सेकंड सीड एलेना रायबाकिना इज आल्सो आउट। इगा श्वातेक को ए सिक्स टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन उसको हराया। हाईली रेटेड फिलिपिना अलेक्जेंड्रा ईला ने 7-6 और 6-2 से इन द थर्ड राउंड मैच ऑन सेंटर कोर्ट, जबकि 2022 की जो चैंपियन थी एलेना रायबाकिना उसकी हार हुई अगेंस्ट बेल्जियम एले से मैटेन 7-6 और 6-1 से। सो इतना सब कुछ विंबलडन को लेकर हो रहा है। बता दें कि कल 39 साल के नोवाक जोकोविच ने फिर जीत हासिल की। उसने फ्रांस के ऑचुए रिंडनेक को 4 सेटों के मुकाबले के बाद 7-5, 6-4, 1-6 और 7-6 से हराकर विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में कदम रखा है। और इस जीत के साथ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जोकोविच ने विंबलडन में 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब उसका अगला मैच होगा अगेंस्ट रशियन प्लेयर रशियन खिलाड़ी रोमान साफियोलिन, जबकि इसी में कल डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर की जीत हुई। और लड़कियों में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबलेनका कल जीत पाई अगेंस्ट येलेना ओस्टापेंको 6-4 और 6-4 से। और इस समय कौन कौन से मैच और खेले जा रहे हैं, मैडिसन कीज की हार हो रही है 1 सेट से अगेंस्ट अमांडा अनिसिमोवा। रात को ग्रिगो डिमिट्रोव वर्सेस मैटियो बेरेटिनी एंड अमंग अदर्स कौन कौन से महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। फ्लाविओ कोबोली का मुकाबला होगा कारेन काशानोव से, बल्कि मैच इस समय खेला जा रहा है। कारेन काशानोव की जीत हुई पहले सेट में 6-0 से अगेंस्ट सेकेंड सेट में कोबोली 1-7, 6-6। फिर से काशानो 7-6 से जीत गया और फिर से फ्लाविओ कोबोली 6-2 से। एंड द लास्ट डिसाइसिव सेट 5वां सेट इस समय खेला जा रहा है और कारेन काशानोव 1-0 से आगे है। सो इट्स ग्रेट, इट्स हैपनिंग मेन सिंगल के राउंड ऑफ 32 में। हम बात कर रहे हैं विंबलडन टूर्नामेंट के जो ग्रीन ये घास पर ना खेला जाती है ये टूर्नामेंट। सो इट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस ऑल्सो, और क्योंकि फुटबॉल के अलावा कुछ और डिसिप्लिन की बात करें तो हमने बात की क्रिकेट की, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 191 फॉर इंडिया, और इस समय इंग्लैंड की टीम जो खेल रही है। लेट अस गिव यू अनदर लेटेस्ट न्यूज़। सो इट्स 51-2, एकदम से इंग्लैंड प्रहार करने लगा है। 4.3 ओवर्स 2 विकेट जल्दी जल्दी आउट होने के बाद इंग्लैंड डूइंग रियली ग्रेट। सो या इट्स हैपनिंग नाउ फॉर इंग्लैंड। ब्रूक 39 पर नॉट आउट है, बेथेल ऑल्सो 11 रन बना चुका है। ब्रूक ने 4 चौके और 3 छक्के भी मारे हैं, सो अब जाकर वे संभल पाए हैं। 51-42 फॉर इंग्लैंड, जबकि इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए थे। एंड या इट्स हैपनिंग, सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती ऑन 5499-1294-5499-1294 पे। कीप सेंडिंग योर मैसेजेस।
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio.

ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है, पर जो भी हो ये रात एकदम खुशनसीब है।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: Jhankar Beats, every Saturday night, 7 to 9. हम भी आपसे प्यार करते हैं और आप भी प्यार करते रहिए 24 घंटे आपकी सेवा में रेडियो मस्ती और M2 और मोरक्को वर्सेस कनाडा रात 9 बजे अभी से लेकर 50 मिनट बाद टीम्स और रेडी दोनों की ओर से भी लाइनअप तैयार हो गई है सो एक बार फिर कनाडा जो है अपनी जनता के सामने ये टीम खेलेगी एंड कप्तान अल्फोंसो डेविस अभी तक फिट नहीं है उसको फिर से बेंच पर बिठा गया है हालांकि उसने अपना पहला मैच खेल पाया अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेंच पर से लौट आया सो अभी आज के लिए उसको शुरू नहीं किया जाएगा 25 ईयर ओल्ड बैन म्यूनिक विंगर केम ऑफ द बेंच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द राउंड ऑफ 32 जहां पर उनकी जीत हुई थी और आज भी बाद में शायद उसको भेजा जाएगा सो वी हैव क्रेपू गोल कीपिंग करेगा जॉन स्टोन डी फुगेरोल बोम्बिटो लारिया बुकानन सिगा स्टाक्यू अहमेद जोनाथन डेविड और उलू वासेई कनाडा की ओर से और जहां तक मोरक्को का सवाल है स्ट्रॉन्ग टीम वंस मोर बुनू गोल कीपिंग करेगा अशरफ हकीमी फिर जियोप हलहल मजराउी बुआदी जिसने कई गोल स्कोर किए हैं एल एनावी दियाज उनाही एल खनूस एंड सैबारी जो है प्रथम दो मैच में उसने दो गोल स्कोर किए थे सो मोरक्को हैज गॉट ए स्ट्रॉन्ग स्क्वाड पर हर एक मैच जो है एकदम स्ट्रॉन्ग टीम के साथ सामने आ रहा है सो रात 9 बजे कनाडा वर्सेस मोरक्को टीम में तैयार हो गई है 5499-1294-5499-1294 दिस वन गोज टू अक्षय अभिषेक और उनके सभी दोस्तों के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स और झंकार बीच झंकृत करने के लिए सम मोर न्यूज कमिंग इंग्लैंड वर्सेस इंडिया भी 77-3 क्रिकेट की बात कर रहे हैं सो इंग्लैंड ने 77 रन बना लिए हैं केवल 8.3 ओवर्स में सो दे आर डूइंग गुड अभी 3 विकेट गिर चुके हैं एंड दे नीड 114 रन चाहिए जीतने के लिए क्योंकि भारत ने 190 रन बनाए थे 114 आउट ऑफ 11.2 ओवर्स इट्स ड्यूएबल पर विकेट अभी 3 गिर चुके हैं और देखना सुनना बाकी है
1: RM2 Radio Musti

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: तो रात 9 बजे के लिए तैयारी हो रही है टीम न्यूज़ हमने आपको दे दी है कनाडा वर्सेस मोरक्को 9 बजे लाइव ऑन MBC 11 भूलेगा नहीं ये मैच आप लाइव देख पाएंगे सीधा प्रसारित किया जाएगा एमबीसी के चैनल 11 पर आज रात 9 बजे फिर दूसरा जो मैच खेला जाएगा लास्ट 16 राउंड का दूसरा मैच कल सुबह कल तड़के 1 बजे ये मैच है बिटवीन फ्रांस एंड पराग्वे कल सुबह 1 बजे सो आफ्टर मिडनाइट जो 1 बजे आता है तड़के 1 बजे ये मैच फ्रांस वर्सेस पराग्वे फ्रांस में भी कमाल के खिलाड़ी हैं एक से बढ़कर एक किलियान एम्बापे माइकल ओलिजे ब्रैडली बाकुला उस्मान देम्बेले जस्ट नेम प्लेयर किसी भी खिलाड़ी का नाम आप लीजिए वो एक से बढ़कर एक है उनकी रफ्तार के सामने क्या पराग्वे फिर से जायंट किलर बनेगा बिकॉज दे खेल्ड जर्मनी पराग्वे जो है बेस्ट ऑफ 8 में आ पाया था और लेकिन व्हेन इट इज 1-1 हर एक फुटबॉल मैच की अपनी अपनी कहानी होती है सो पराग्वे वर्सेस फ्रांस और बता दें कि ये मुकाबला जो है केवल टेक्निक का नहीं है बल्कि पेशेंस का धैर्य का स्ट्रैटेजीज का रणनीति का और जज्बे की भी परीक्षा है एंड सो वी हैव एक तरफ फ्रांस की चमक दूसरी ओर पराग्वे की दमक और पराग्वे का दम तड़के 1 बजे लेकिन इससे पहले 9 बजे कनाडा वर्सेस मोरक्को बात करेंगे आज सुबह के खेले गए मैचों को लेकर भी कमाल के स्कोर रहे कमाल के मैच खेले गए बिटवीन ऑल दिस टीम और कोलंबिया वर्सेस गाना अर्जेंटीना की जीत हुई अगेंस्ट केप वर्दे जो है हीरोइक वर्ल्ड कप बाय केप वर्दे हमारे अपने अफ्रीका से हैं 5 लाख की जनसंख्या और कितने अच्छा कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया केप वर्दे ने एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट मोहम्मद सलाह की टीम आगे बढ़ पाई
0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: झंकार बीट्स
2: यहाँ या वहाँ दुनिया के किसी भी कोने में आप हो जब डांस फ्लो में घुसी गए तो डांस तो करना पड़ेगा वर्ल्ड कप 2026 48 देश लास्ट 32 राउंड समाप्त लास्ट 16 आज रात 9 बजे से शुरू इट्स हैपनिंग

0: राधा दिया पर बात बाकी है.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
0: और आज रात बादशाह कौन बनेगा बिटवीन कनाडा एंड मोरक्को रात 9 बजे लाइव ऑन MBC 11 कनाडा मोरक्को एंड रात 12 के बाद जो 1 बजे सुबह तड़के 1 बजे पराग्वे वर्सेस फ्रांस ये दो मैच आज लास्ट 16 राउंड के दो मैच आज के लिए रखे गए हैं और बता दें कि बाकी जो मैच हैं उनके लिए भी आप तैयारी कीजिए इंतजार कीजिए. ब्राजील वर्सेस नॉर्वे संडे का ये मैच होगा संडे रात 12 बजे कल संडे को रात 12 बजे ये मैच आप देख पाएंगे बिटवीन ब्राजील एंड नॉर्वे. ब्राजील का जो ला सेलेसाओ है अब तक अपना फन दिखा नहीं पाए हैं प्रोबेबली अब लास्ट 16 में आकर कुछ विश्वास वापस आया होगा कॉन्फिडेंस लेवल इज बैक. सो ब्राजील नॉर्वे कल संडे की रात 12 बजे एंड मंडे 6 जुलाई बता दें आपको कि मंडे 6 जुलाई सुबह 4 बजे या मंडे 6 जुलाई सुबह 4 बजे इट्स गोइंग टू बी मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड जो मोरिशन फुटबॉल प्रेमियों का चहेता देश है चहेती टीम है. सो मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड मंडे की सुबह 4 बजे और मंडे रात 12 बजे यू विल हैव पोर्चुगल वर्सेस स्पेन ये सारे मैच खेले जाएंगे. देन ट्यूसडे यू विल बी हैविंग यूएसए वर्सेस बेल्जियम. ट्यूसडे को ही अर्जेंटीना का मुकाबला इजिप्ट से और स्विट्जरलैंड खेलेगा कोलंबिया के विरुद्ध. अब तक इतने सारे मैच जो हैं फिक्सचर्स तैयार हो गए हैं और आज फ्रॉम थर्सडे 9 जुलाई क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है. सो इट्स हैपनिंग इन फीफा वर्ल्ड कप 2026. आज दो मैच कनाडा मोरक्को रात 9 बजे अभी से लेकर एग्जैक्टली 28 मिनट बाद 28 मिनट बाद एग्जैक्टली 9 बजाएंगे. सो कनाडा मोरक्को एंड पराग्वे फ्रांस सुबह 1 बजे 5499-1294. बता दें आपको कि एक खबर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया इट्स 117 रन बना चुकी है इंग्लैंड की टीम विद 3 विकेट्स डाउन और अभी इंग्लैंड को चाहिए 74 रन्स टू विन फ्रॉम 7.2 ओवर्स विद 7 विकेट्स रिमेनिंग.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: दिल दिया तो दर्द लेना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। कल जो तीन मैच खेले गए और आज सुबह जो एक तीसरा मैच समाप्त हुआ, एक दो बातें उनके बारे में। सबसे पहले तो बता दें कि हर दिल जो प्यार करता है वो गाना अक्सर नहीं गाता है, और गाना का गाना बजाना बंद हुआ आज सुबह जब कोलंबिया ने उसे 1-0 से हराया। एंड गाना डिड नॉट डिजर्व टू बी इन द नेक्स्ट राउंड। कोलंबिया का महाकुंभ आरंभ, कोलंबिया 1 गाना 0, गोल कर्टेसी ऑफ जॉन एरियास खेल के 13वें मिनट पर ही, और इसमें लुइस डियाज के 2 गोल मना कर दिए गए। एंड फाइनली जो जीता वही सिकंदर। सो कोलंबिया प्लेइंग अगेंस्ट किसके खिलाफ, स्विट्जरलैंड के खिलाफ वो खेलेगा, कोलंबिया वर्सेस स्विट्जरलैंड अगला जो मैच होगा। एंड इससे पहले कल आज सुबह 2 बजे कह सकते हैं जो दूसरा मैच खेला गया था उसमें अर्जेंटीना और केप वर्द के बीच दिल टूट गया तोड़ दिया अर्जेंटीना ने केप वर्द और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का दिल तोड़ दिया। के वर्दे बिग हार्ट, ब्रेव हार्ट कह सकते हैं, खासतौर पे गोलकीपर वोजिन्या ने कम से कम 8 महत्वपूर्ण सेव किए। एक बार फिर वो बना मैन ऑफ द मैच, हालांकि अर्जेंटीना वन द मैच बाय 3-2। लियोनेल मेसी ने अपना 7वां गोल स्कोर किया इस वर्ल्ड कप में। ही इज द मैन ऑफ द मैच, ही इज द गोट, greatest of all time। एंड लिसांड्रो मार्टिनेज का एक और गोल 2-1 से आगे, डेरोय जुआते का इक्वलाइजर, सिडने कब्राल ने 130वें मिनट पर सेकंड इक्वलाइजिंग गोल स्कोर किया। यहां पर मैच 2-2 एक्स्ट्रा टाइम में और अर्जेंटीना अकबका गया था, लेकिन कुछ मिनट बाद 111वें मिनट पर डीनी बोजेस का एक ओन गोल, एंड दैट वाज द विनिंग गोल

0: Argentina. It's finally Argentina 3, Cape Verde 2. पर great going, खुशी के आंसू कह सकते हैं कि वर्दे खुशी खुशी चला गया और आया और चला गया, लेकिन अपनी छाप छोड़ गया है वर्ल्ड फुटबॉल में. होपफुली चार साल बाद फिर मिलेंगे. के वर्दे केवल 5 लाख की जनसंख्या, 500,000 पॉपुलेशन, और कितना बड़ा दिल, ब्रेव हार्ट, ग्रेट हार्ट. और कल रात जो मैच खेला गया उसमें इजिप्ट ने फाइनली ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट आउट के बाद 4-2 से हराया. 1-1 स्कोर, वन फ्रॉम Enas Ashour, Egypt ki or se, own goal from Mohamed Hani for Australia, and extra time ke baad 1-1 still. Penalty shootout mein jaakar Egypt ki jeet hui 4-2 se, with a panenka from Mohamed Salah, and Egypt aage badh gaya hai. For the first time Egypt is last 16 round mein pahuncha hai, so great going. And abhi raat 9 baje, abhi se lekar 15 minute baad Morocco का मुकाबला होगा कनाडा से. कनाडा जो को-होस्ट कंट्री है, और पूरी ताकत के साथ, पूरी जनता के साथ कनाडा आएगा. मोरक्को इज अ ग्रेट टीम. अभी क्रिकेट में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, सम डेवलपमेंट इन द स्कोर. 5 विकेट डाउन, 133 रन. इंग्लैंड नीड 54 रन्स टू विन. अभी के लिए वो 137 रन बना चुकी है. 54 रन्स टू विन फ्रॉम 4.3 ओवर्स विद 5 विकेट्स remaining.
1: Jhankar Beats.
2: RM2 Radio Musti.
1: Jhankar Beats.

हर साल बाद ही आता है, इसलिए एवरीथिंग कैन वेट. सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं, बल्कि फुटबॉल देख लिया करो. इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 रात 9 बजे मोरक्को वर्सेस कनाडा लाइव ऑन एमबीसी 11.

0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: झंकार बीट्स
2: लास्ट फॉर द रोड। बता दें कि फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की ब्रिटिश ग्रैंड प्री में किमी एंटोनेली ने पोल पोजीशन ले

लिया है, कल रेस वही शुरू करेगा। शार्लेट क्लेयर सेकंड पोजीशन, हैमिल्टन लेविस हैमिल्टन थर्ड पोजीशन पे, जॉर्ज रसेल ने चौथा स्थान लिया। शाम हो गई, रात भी हो चुकी है और समा भी अच्छा है। कनाडा वर्सेस मोरक्को लाइव ऑन एमबीसी 11 रात 9 बजे से अभी से लेकर 5 मिनट बाद। फिर सुबह 1 बजे फ्रांस वर्सेस पराग्वे, जुड़ने और चुनने के लिए शुक्रिया। कल सुबह 7:30 बजे शॉप 7:30 AM एग्जैक्ट रेंडेवू ऑन रेडियो मस्ती विद मोर न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज। तब तक के लिए हमारी ओर से शुभ रात्रि, सबाल खैर, मिलते रहिए, बाय बाय।

हेलो दोस्तों, मैं वेदिता लेट नाइट ग्रूव्स रेडियो मस्ती पर आपका स्वागत करती हूँ। दिन भर की टेंशन को थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, क्योंकि अब वक्त है बॉलीवुड की सुपरहिट रेमिक्स ट्रैक्स की, और ये हम लेकर आए हैं खास आपके उस प्रोग्राम में जिसका नाम है लेट नाइट ग्रूव्स।

एक उधर अरे किधर दोनों की फितरत है जान कौन सी सारी चला हो जाती है बस ये देखना है।

मैं वेदिता आप सबों का स्वागत करती हूँ लेट नाइट ग्रूव्स प्रोग्राम में। वैसे रात चाहे कितनी भी गहरी हो जाए, म्यूजिक कभी नहीं सोता। मैं हूँ वेदिता और लेट नाइट ग्रूव मैं बस हाजिर हूँ आपके लिए लेकर कुछ बॉलीवुड रिमिक्स गाने। रेडी हो जाइए हमारे साथ ग्रूव करने के लिए।

हाँ जी, तो रेडियो मस्ती पर साथ दे रहे हैं आप, और अगर आप इस वक्त स्टीयरिंग व्हील के पीछे हैं तो ये गाना स्पेशली आपके लिए। ड्राइव सेफ, स्माइल वाइड, और रेडियो मस्ती को अपना ट्रैवल पार्टनर बनाते रहिए। मैं हूँ वेदिता, अगला गाना पेश है आप सबों के नाम।

तो जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको हमारे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे। दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है लेकिन एक अच्छा गाना मूड जरूर चेंज कर देता है, तो ऐसा करते हैं अगले गाने के साथ तरह मूड चेंज कर लें।

पुरानी यादें और नए बीट्स, बॉलीवुड रिमिक्सेस की यही तो खास बात है। मैं हूँ वेदिता और आप रेडियो मस्ती पर सुन रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम यानी कि लेट नाइट क्रूज।

चलिए दोस्तों, ये अगला गाना उन सब लिसनर्स के नाम जो इस टाइम पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो मस्ती को अपना म्यूजिक पार्टनर बना के बैठे हुए हैं और हमारे साथ हमारे गीतों के साथ ग्रूव कर रहे हैं।

वेलकम टू रेडियो मस्ती, वेलकम टू लेट नाइट ग्रूव्स वेदिता के साथ। बस मूड आपका अच्छा होना चाहिए, जब मूड अच्छा होता है ना तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। यू बिलीव इट, राइट?

वीकेंड का मूड द हो या वीकडे की लेट नाइट चिल रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ। भाई हमारे जितने भी फुट टैपिंग बॉलीवुड रिमिक्स के गाने हैं वो सब आपके लिए पेश कर रहे हैं ताकि आपका मूड ठीक हो, आप जो है ना इसको एंजॉय करें

दोस्तों म्यूजिक का सफर तो चलता रहेगा, बीट्स बजती रहेंगी और आपकी मुस्कान बनी रहेगी। मैं विनीता चाने के लिए आपसे कहूंगी बाय बाय, आपसे मुलाकात करूंगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। हमारा लेट नाइट

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते